0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं

0: नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur to Jharsuguda, 4th line, Katni to Pendra Road, 4th line, and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bengarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Umalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs. Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. These routes cover 11,000 kilometers railway networks and four-lining of 2,000 kilometers has been completed. These approved projects for four-lining are related to the high-density railway networks. Prime Minister Narendra Modi has said that the cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the 5 railway projects worth over 10,000 crore rupees will foster better

ठीक 6:15 ते तुसी सर्वन करोंगे प्रोग्राम अमृत वेला। 7 दा समा रहेगा प्रोग्राम सजरी सवेर दा, जिस तहत अज लेके आवांगे सिलसिला शुरलियां। 8 हिंदी विच खबरां समाचार प्रभात, 8:15 ते अंग्रेजी विच खबरां मॉर्निंग न्यूज सुनोंगे तुसी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। 8:30 पंजाबी विच खबरां होणगियां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। 8:40 ते लैके आवांगे प्रोग्राम महक पंजाब दी, अज दा सिलसिला होएगा सूफियाना संगीत। 9 विविध भारती दे प्रसारण रिले किए जाएंगे, जिस तहत 9 प्रोग्राम चित्र लोग सुनोंगे ते 9:30 प्रोग्राम आज के फनकार। 10 दा टाइम होएगा प्रोग्राम गीत पिटारा दा, जिस तहत अज सुनोंगे सदाबहार पंजाबी गीत। 11 हिंदी विच खबरां आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों सुनोंगे ते 11:05 ते रिले करांगे आकाशवाणी FM रेनबो दिल्ली दे प्रसारण।

12 बजे हिंदी विच खबरां ते 12:05 ते सुनोगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। 12:10 ते तुहाडे लई लैके आवांगे प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे, जिस दे विच अज साडे मेहमान होणगे श्री बखतौर ढिल्लों ऐ ते उहनां दे नाल होणगे परविंदरजीत सिंह। मेज़बानी की जाएगी बलजीत शर्मा, दलवीर सिंह ते

ममता अरोड़ा पासों 1:10 ते प्रादेशिक खबरां रिले करांगे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों ते 1:15 लेके आवांगे प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी। 2:00 अंग्रेजी विच खबरां, 2:15 ते हिंदी विच खबरां तुसी सुनोगे आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। 2:30 NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग दी लड़ी नंबर 1369 सुनोगे। 3:00 विविध भारती मुंबई दे प्रसारण रिले किते जाएंगे, जिस तहत 3:00 प्रोग्राम सखी सहेली होएगा, 4:00 होएगा प्रोग्राम हैलो फरमाइश।

प्रोग्राम अमृत वेला लेके हाजिर हाँ मैं दीपा छाबड़ा। मेरे वालों सारे ही श्रोतियां नूं प्यार ते सत्कार भरी नमस्कार। ते आओ प्रोग्राम दे तहत पहला शब्द सरवण करदे हां भाई अमरजीत सिंह रागी ते उहनां दे रागी जत्थे पासों गायन कीता होया।

बीते कल का गम छोड़कर आज पर भरोसा करना सीखो। ठोकरें तो राह की हकीकत है, अब खुद ही संभलना सीखो। रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह पर यकीन करना सीखो। हर पल नई उम्मीदें जगाकर जिंदगी को गले लगाना सीखो। जिंदगी को गले लगाना सीखो। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल ते, गुड मॉर्निंग दे नाल आ गई हां जी। मैं कौन जी, दीपा छाबड़ा, लेके आई हां तुहाडे लई प्रोग्राम सजरी सवेर। जी बिल्कुल, तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम सजरी सवेर, क्योंकि तुहाडी शुरुआत हुंदी है दिन दी इस प्रोग्राम दे नाल। ते उम्मीद है थोड़ा दिन इस प्रोग्राम दे नाल मैं बहुत खूबसूरत बना दूंगी, क्योंकि आज इस प्रोग्राम दे विच बहुत कुछ है तुहाडे लई। की है जी? बिल्कुल दसांगे तुहानू। जी हफ्तावारी सिलसिला शुरलिया अज दा होएगा जी, क्योंकि ये सिलसिला तुहाडा खून वधांदा है, तुहानू हसांदा है, ते तुहानू कुछ ना कुछ वधिया जिहा सुनेहा भी

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: दोस्तों, कदे कदे एक नाम इंसान दी पूरी जिंदगी दी कहानी लिख दिंदा है। अजेही एक कहानी तुसी सुनोगे प्रोग्राम हड बीतियां जग बीतियां तहत राजियां की।

0: मिति 11 सितंबर दिन शुक्रवार समा दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम दे वाचक आकांक्षा अरोड़ा निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा
1: महंगाई महंगाई इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे
3: सवाल ओही जो लोकां दे दिला विच ने जवाब ओही जो सच नू सामने लियान खबरां दे पिछे दी खबर शख्सियत दे पिछे दी कहानी अते समाज नाल जुड़े अहम मुद्दे ते बेबाक गलबात जी श्रोतियो आकाशवाणी बठिंडा दा मकबूल प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे अते इस वार साडे स्टूडियो विच मौजूद होणगे श्री बख्तौर ढिल्लों प्रेजिडेंट बठिंडा प्रेस क्लब अते श्री परविंदर जीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मेंबर बठिंडा प्रेस क्लब अते इन्ना नाल गलबात करनगे दलबीर सिंह ममता अरोड़ा अते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी जिथे पत्रकारी नाल जुड़े तजर्बे समाजिक मुद्दे अते लोकां नाल संबंधित अहम मसलियां ते होवेगी खुली अते सार्थक गलबात श्रोतो तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकदे हो 0164-2240-331 डायल करके या फिर स्टूडियो दे व्हाट्सएप नंबर राही जेड़ा है 77173-73146 ता फिर सुनना ना भूलना मिति 10 सितंबर दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हाल दसांगे
4: जी प्रोग्राम सजी सवेर मैं थोड़े नाल दीपा छाबड़ा समा 7:22 दा हो चुके है कहंदे मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं थे बिल्कुल जी मंजिल चाहिए है ता करो ता फिर निकलना पैना है ना ते फिलहाल हुन समा है जी प्रोग्राम शुरलियां दा ते शुरलियां तुहाडे लई लेके आ रहे ने बीबो ते डॉली ते ना तुहाडे जानकारी लई दस देईए कि बीबो है जी साडी माफ करना जी बीबो है संदीप शेरगिल बबली है ममता अरोड़ा ते डॉली है जी सीमा मेहरा

0: बबली सिस।
1: हाँ हाँ की हो गया?
0: अब मेरी एक गल जवाब दो मेनू।
1: बोलो।
0: आ सवेरे बीबो सिस खड़े सी, मैं उन्हें वाल देखिया, मैं हसी, ओ हसे ही नहीं।
1: अच्छा ना बीबो नहीं हसी, ओ तो बिना गल तो हसदी है, और हर गल पिच ही, ही, ही, ही ला देंदी है, जेड़ा ओ तो ना हसन वाली गल होवे तां वी हासा आ जांदा है।
2: होर सुन ले, कल अपने दंदा दी तारीफ भी करी जावे ते नाले गाना भी बोली जावे, तेनू पता केड़ा आ वाला।

ना इशारे नी लगे अखियां ते कदी करी ना इशारे नी हाय तेनू तकियां लोकां नू गश

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: जी जारी है प्रोग्राम सज्जी सवेर, तुहाडी रेडियो दोस्त दीपा छाबड़ा दे नाल। ते हुण वेला है अखबारी सुरखियां तुहाडे नाल मैं सांझियां कर लवां। ते मेरे हाथ दे विच पंजाबी ट्रिब्यून दा अखबार भी है, दैनिक जागरण भी है, पर सब तो पहली जिहड़ी सुरखी है ओह मैं लैणा चाहवांगी पंजाबी ट्रिब्यून दे सफा नंबर 10 तों। जिहड़ी पहली सुरखी है जी, अंतरराष्ट्रीय दो रोज़ा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शनिचरवार तों भू राजसी झटकियां दरमियान अन्न अते ऊर्जा सुरक्षा ते रहेगा जोर। भारत की मेज़बानी दे विच शनिचरवार तो शुरू होने वाले दो रोज़ा ब्रिक्स सम्मेलन की खिच का मुख्य केंद्र भोजन, ऊर्जा, सेहत, आफत प्रबंधन अते नाजुक सप्लाई चेन विच सामूहिक लचकता नूं वधाउणा होएगा, ते तां कि इस समूह नूं वंडे हुए भू सियासी माहौल दे विच प्रभावशाली सहारा बनाया जा सके।

नाली सुर्खी लगी जी। नेपाल के लिए लगातार मदद भेज रहा है भारत। विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित नेपाल के लिए भारत लगातार मदद भेज रहा है। इस हिमालयी देश की सहायता के लिए भारत ने बुधवार को एक और खेप भेजी, जिसमें

35 टन राहत सामग्री और उपकरण हैं जिन्हें C-17 परिवहन विमान से नेपाल भेजा गया। इधर नेपाल में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है।

राष्ट्रीय सुर्खियां दे विच सुर्खी लगे जी, उज्जैन में खड़े हनुमान की अडिगता का विज्ञान करेगा परीक्षण, मंदिर हटने के बाद भी प्रतिमा यथा स्थान पर, विशेषज्ञ तय करेंगे सुरक्षित विस्थापन संभव है या नहीं। उज्जैन तो एक खबर लगी है। सिंहस्थ की तैयारियों के बीच उज्जैन के छतरी चौक स्थित खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा के विस्थापन की संभावना अब तकनीकी विशेषज्ञ तय करेंगे। मंदिर हटाए जाने के बाद भी प्रतिमा ज्यों की त्यों खड़ी है। मार्ग चौड़ीकरण के लिए मंदिर का ढांचा हटाया जा चुका है। अब प्रशासन प्रतिमा के भार, आधार, गहराई और आसपास की संरचना की तकनीकी जांच कराएगा। जांच के बाद ही तय होगा कि प्रतिमा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है या उसे यथास्थान संरक्षित रखना ही उचित होगा।

दैनिक जागरण से सुर्खी लगी जी, अब लेट नहीं होंगी ट्रेनें, 7 रेलवे रूट होंगे, 4 लाइन वाले। नई दिल्ली तो खबर शाया हुई है, देश के व्यस्ततम रेल मार्गों पर अब ट्रेनें लेट नहीं होंगी। इन रूटों पर ट्रेनों की बढ़ती संख्या एवं माल ढुलाई के दबाव को देखते हुए रेलवे अपनी क्षमता में व्यापक विस्तार करने जा रहा है। देश के 7 हाई डेंसिटी रेल कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से 4 लेन बनाने की तैयारी है। जाहिर है कि इससे ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। 11,000 किलोमीटर लंबे इन 7 कॉरिडोर पर रेलवे के कुल ट्रैफिक के लगभग 40% हिस्से का संचालन होता है। इन कॉरिडोर में दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी रूट शामिल हैं। ट्रेनें बढ़ाने, आवागमन बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने दी स्वीकृति। इन कॉरिडोर में दिल्ली मुंबई व दिल्ली हावड़ा रूट हैं शामिल। कैबिनेट ने बुधवार को 9 राज्यों में 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के लिए 20,804 करोड़ रुपए मंजूर किए। इनसे रेलवे नेटवर्क में कुल 1196 किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रैक क्षमता विकसित होगी। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर होंगे 4 लेन। सरकार के इस व्यापक क्षमता विस्तार कार्यक्रम में दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई रेल मार्ग शामिल है। इन मार्गों पर यात्री ट्रेनों के अलावा कोयला, लोह अयस्क, सीमेंट, इस्पात, खाद्यान्न और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की भी भारी ढुलाई होती है। मालवा पन्ने तो अगली सुर्खी लेने हैं जी। ठेका अध्यापकों वालों कालेजां अगे मुजाहरे, सेवावां रेगुलर करन दी मंग, संघर्ष तेज करन दी चेतावनी। ये खबर मानसा तो छाया हुई है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे बांसा स्थित माता सुंदरी यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज दे कंट्रैक्ट आधारित अध्यापकों ने कॉलेज बंद करके मुजाहरा किया। ते नाल ही ऐसे सफे ते खबर लगे जी, किसान फसली नुकसान दे मुआवजे नू तरसे। ए बठिंडा तो खबर छाई हुई है। अद्धी दर्जन पिंडा दे किसानां नू 5 महीनियां तो बाद भी नहीं मिलिया मुआवजा। ते नाल ही मेडिकल स्टोरां ते छापे, खरीद बिल ना होण ते 3 किस्मां दीआं दवाईआं जब्त। ए होईआं जी मानसा दे विच। ते नाल ही अगली खबर है जी, मोगा विच स्वाइन फ्लू दी दस्तक। ते स्रोतियों तुसी सावधान रहना है ते बचना है स्वाइन फ्लू तो, ते सफाई रखनी है। ते नाल ही फूड सेफ्टी विभाग जुर्मानिया दी वसूली लई होया सख्त। ये खबर फिरोजपुर तो लगी है। ते अगली खबर है जी, फरीदकोट जांदे किसान पुलिस ने मंडी कलां दे विच रोके।

आखिरी सुर्खी लेने हैं जी, HPCL की बायो रिफाइनरी अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद, 90% काम पूरा, पराली से बनेगा एथेनॉल, खरीफ सीजन में 50,000 मीट्रिक टन धान अवशेष जुटाने की तैयारी। ते घड़ी दियां सुइयां मैनू इजाजत नहीं दे रही कि मैं होर अखबारी सुर्खियां तुहाडे नाल सांझी करां। ते इस दे नाल ही असी धन्नवाद करदे ने साडी तकनीकी टीम दा, ते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा, ते हुण मैनू दीपा छाबड़ा नूं प्रोग्राम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
5: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते

0: तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू।

जी दोस्तों बिल्कुल अगले पल दा अगले सा दा अगले दम दा बिल्कुल भरोसा नहीं है, फिर तुसी हर पल नू क्यों नहीं शुक्र मनांदे, क्यों नहीं रब नू याद करदे, अपने हर सा नू रब दे ना करना, जिंदगी नू पॉजिटिवली लेना, खुश होके हंडाउना, यही तां जिंदगी दा जड़ा राज है। ते फिलहाल महक पंजाब दी अज तुहाडे लई लेके आए सूफियाना संगीत। ते सूफियाना मैं भी थोड़ी जी होई वईयां, ते मैं बिल्कुल तुहानू पता है जी मैं हाँ जी दीपा छाबड़ा, ते सूफियाना संगीत तुहाडे लई लेके आई हां जिसके तहत पहला गीत तुहानू सुनवा रहे हैं आसा सिंह मस्ताना, ते नाल उन्हां दे रहणगे सुरेंद्र कौर। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आओ करदे हां जी तुहाडी नज़र।

आकाशवाणी एफएम बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज से समा इस वेले 8:59 का ठीक 9 बजे तो लेके 10 बजे तक रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण।

0: कॉकटेल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का म्यूजिक।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: Rica, ooh, stara, rica, stara, rira, kikaru.

गुलराज सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उंगली। मनोज यादव ने इसे लिखा। गुलराज सिंह का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

ये जवानी है दीवानी, ये था फिल्म का नाम। श्रीराम और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रीतम ने संगीत दिया, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

0: प्यार।
1: महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए।

हाँ, जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई, और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता, सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म

पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहला रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: सवाल ओही जो लोकां दे दिला विच ने, जवाब ओही जो सच नू सामने लियाउन। खबरां दे पिछे दी खबर, शख्सियत दे पिछे दी कहानी, अते समाज नाल जुड़े अहम मुद्दयां ते बेबाक गलबात। जी श्रोतियो, आकाशवाणी बठिंडा दा मकबूल प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे, अते इस वार साडे स्टूडियो विच मौजूद होणगे श्री बखतौर ढिल्लों, प्रेजिडेंट बठिंडा प्रेस क्लब, अते श्री परविंदर जीत सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट मेंबर बठिंडा प्रेस क्लब। अते इन्हां नाल गलबात करनगे दलबीर सिंह, ममता अरोड़ा अते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी, जिथे पत्रकारी नाल जुड़े तजर्बे, समाजिक मुद्दे अते लोकां नाल संबंधित अहम मसलियां ते होवेगी खुली अते सार्थक गलबात। श्रोतो, तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकते हो 0164-2240-331 डायल करके, या फिर स्टूडियो दे व्हाट्सएप नंबर राही जेड़ा है 77173-73146। ता फिर सुनना ना भूलना मिति 10 सितंबर दोपहर 12:10 ते प्रोग्राम मुश्किल दसो हाल दसांगे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: जी प्रोग्राम चल रहा है, गीत पिटारा समा 10:13 का हो चुका है। कहिंदे जी बड़े कीमती ने पल फिकरां दे विच रोल ना, बड़े कीमती ने पल फिकरां दे विच रोल ना, इस पैसे दा की करना जे खुशियां कोल ना। ते बिल्कुल जी, पैसों दा कोई लेना देना नहीं है खुशियां दे नाल, खुशियां तां तुहाडे अंदर ने, बस उन्हां नूं पछाणन दी लोड़ है।
1: ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਈਆਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਏ ਇਹ ਹੁਕਮ।

0: सोनिया के संग डेले मिला के अब कल दे बेच वरना क्या जादू प्यार किया थे डरना क्या जादू प्यार किया थे डरना क्या ओए तदी दी थी कहनी
1: आया की
0: ओए हुक्म।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: प्रोग्राम संबंधी सूचना। आज शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर दा साडा विषय रहेगा छाती अते सांस दीयां बीमारियां, कारण, लक्षण ते इलाज। इस विषय ते जानकारी देन लई साडे स्टूडियो विच हाजिर होणगे डॉक्टर अंचल जैन अते इन्हां नाल गलबात करनगे सुनीता सोनी। जिन्हां श्रोतियां ने इस विषय बारे कोई भी गलबात करनी होवे, ओह साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते कॉल कर सकदे ने। सो सुनना ना भूलना अज शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सर ने बडियाल हॉस्पिटल बीबी वाला रोड बठिंडा।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: सतिकाल दोस्तों, मैं हाँ हरजीत हरमन ते तुसी सुन रहे हो मालवी दी शान ते स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते।
4: जी आकाशवाणी FM बठिंडा ते की चल रहा जी? चल रहा जी तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम गीत पिटारा, ते तुसी अज सुन रहे हो पंजाबी फिल्मी गीत। समा भी तुहानू नाल नाल दसी जाने, समा हो चुका जी 10:24 हो ही चुके ने, ते अगला गीत तुहानू बिल्कुल सुनवावांगे, पर उस तो पहला फिर दीपा शायरी नहीं करोगी तो फिर की करोगी, है ना? जिस दिन सादगी शिंगार हो जाएगी, जिस दिन सादगी शिंगार हो जाएगी, उसे दिन शीशे दी भी हार हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगला गीत तुहानू सुनवाने जी जुबेदा खानम जी की आवाज़ दे विच, फिल्म का नाम है मुखड़ा।

जी ए चली कौन सी ऐसी जी आशा भोसले जड़ी गीत दे विच कह रही सी कि मैं तो चली हाँ पर दीपा छाबड़ा चली। चलो मान लेने थोड़ी जी चली तो मैं भी हाँ क्योंकि मैनू भी थोड़े नाल मस्ती करन नाल ते मजाक करन नाल बहुत ही वधिया लगता है ते प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा आशा भोसले जी का जिहड़ा तुसी गीत सुनिया उस फिल्म जीजा जी विचों लिता गया सी ते गीत दे बोल लिखे सन नरेश पाल ने। समा हो चुका है 10:30 का ते अगला गीत तुहानू सुनवा दिंदे आ किकली फिल्म दे विचों। आवाज़ है सुलक्षणा पंडित दी बोल लिखे ने बेकर अमृतसरी ने ते गीत नू संगीत नाल सजाया है जी हरबंस ने।

दोस्तों 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार समा शाम 5 बजे गुरदीप गिल ते बलजीत शर्मा जी प्रोग्राम पिंडां वाले ते शहरां वाले दे अंतर्गत आप जी दी खिदमत दे विच लैके हाजिर हो रहे ने प्रोग्राम पिंडां वाले ते शहरां वाले विशा चित्त दा भरोसा भाग दूजा।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: प्रसारण समा दोबारा नोट कर लो दोस्तो, शाम 5 बजे, मिति 11 सितंबर 2026, प्रोग्राम रहेगा साडा पिंडां आले ते शहरां आले।
1: ओ

छुपा कर रखना पड़ता है अपने पसंदीदा शख्स को। खुशियों पर जमाने की नज़र बहुत लगती है, पर मैनू यकीन है साढ़े ते तुहाड़े प्यार नू कदे भी नज़र नहीं लगेगी। तुसी आकाशवाणी FM बठिंडा नू ऐसे तरह प्यार करते रहोगे। ते फिलहाल प्रोग्राम दा आखिरी गीत तुहाड़ी नज़र करन लगी है, जिस नू गाया है मोहिंदर कपूर ने। फिल्म है पटवारी, गीत दे बोल लिखे ने राजेश मलिक ने, ते गीत नू संगीत नाल सजाया जी सरदूल कवात्रा ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाए।

0: आएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
4: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
2: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कौर पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धर्मपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल जो होता है आपके मतलब का, और अगर उसका आप आंसर सही देते हैं तो आप बन सकते हैं आज बॉलीवुड सरताज। ये दिस एंड लॉट्स मोर, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। और करीना आजकल क्या बात कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, किस तरह का ट्रेंड और किस तरह की मानसिकता रखते हैं बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स। दिस एंड लॉट्स मोर, जुड़े रहें आकाशवाणी के संग, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली आसपास। इसके अलावा ढेरों फ्रीक्वेंसीज पर आप चाहें तो आप हमारा ऐप न्यूज ऑन एयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नहीं चलेगा कोई बहाना सुन ना पाए बॉलीवुड ट्रेल्स, और आपने जो सुनाया गाना ये नहीं कह पाएंगे आप ना ना ना ना, चाहे आप अपने घर पे हो या फिर एट योर मामास एंड नानास। सुनते रहिए आकाशवाणी बॉलीवुड ट्रेल्स, आपकी आवाज दिल के पास।

जी हाँ, करीना कपूर आजकल ये कह रही हैं कि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ये ट्रेंड्स के ऊपर चलती है। जैसे अगर कोई एक फिल्म है या फिर एक जॉनरा है जो काम कर जाता है तो बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी लाइन लगा लेते हैं। एंड स्पेशली शी इज टॉकिंग अबाउट द मूवी एनिमल। एनिमल फिल्म जब आई और रणबीर कपूर ने उसमें बड़ा अच्छा काम किया। बहुत वायलेंट मूवी है, कुछ लोगों ने इसकी बहुत सी जगह पर प्लेटफॉर्म्स पे ये बात कही कि इतनी वायलेंस से दिखाने की क्या जरूरत है, या फिर वो पैट्रियार्कल सोच जो है उसको ये मजबूत करती है। तो इस तरह की चीजें आज के जमाने में कैसे चलेंगी, लेकिन इस फिल्म ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। तो फिर उसी लीक पे बहुत सारे लोग जो हैं वायलेंट फिल्में बनाने लगे और उसके बाद एक तरह से लाइन सी लग गई। धुरंधर भी उसके अंदर एक वहां पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। दो इट्स अबाउट वो प्यार के लिए वायलेंट था, यहाँ कुछ और तरह की बात दिखाई गई। जहां जो देश की बात आती है वहां पे अगर वायलेंस हो तो उसे शायद आप थोड़ा जायज भी कह सकते हैं। लेकिन अब करीना की इस बात से हम काफी हद तक इत्तफाक रखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में हमेशा से ही ये बात रही है कि जो चल गया, जो बिक गया, उसी के पीछे लोग पड़ जाते हैं, उसे फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे इतर, उस सबसे हटके एक मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, लास्ट मंथ राधा, हनुमान अंश। अब उसकी बहुत जगह तारीफें हो रही हैं, और अगर हम कहें बिजनेस सेंस तो उसने धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है आरओआई के मामले में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस एंड लॉट्स मोर, बहुत सारी बातें कहेंगे आपके साथ। बॉलीवुड ट्रेल्स में सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

जी हम बात कर रहे थे ROI की। अब यहाँ कोई इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है बॉलीवुड की क्लास। लेकिन दोस्त, आपके एंटरटेनमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स को कितना पड़ता है, करना पड़ता है कितना प्रयास, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि बात बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, नहीं है ज्यादा खास। 2 करोड़ के कीमत में बनी फिल्म ने उड़ाया सबका उपहास, बनी है खास, किया है 170 करोड़ का बिजनेस। तो इन ROI टर्म्स, यानी 2 करोड़ रुपए लगा के 170 करोड़ रुपए का अगर बिजनेस कोई करती है, तो धुरंधर के कई हजार करोड़ भी पीछे रह जाते हैं। अब आप मैथ्स कर लीजिएगा, पूरी क्लास में यहाँ आपके साथ नहीं लूंगा, क्योंकि आज है थर्सडे और हम आपकी फिल्मी प्रोग्राम के अंदर फिल्मों की बातें तो करते ही हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स इकोनॉमिक्स भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी मूड होता है भाई, क्या करें, मूड है, मूड है। अच्छा, द पॉइंट ये है कि हम आपको बनाने जा रहे हैं बॉलीवुड सरताज। तो उसका प्यारा सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा है, सुन लीजिए। रानी मुखर्जी जो है, उनकी एक मूवी आई थी मिसेस चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे। उसके अंदर जो किरदार रानी मुखर्जी ने प्ले किया था, उस किरदार का नाम बताएं और हो सकता है आप बन जाएं आज बॉलीवुड सरताज और आपके सर पे आ जाए बॉलीवुड का ताज। 9868107070 पर कीजिए अपना मैसेज हमें, ये है व्हाट्सएप नंबर। सो व्हाट्सएप करने के लिए 9868107070। छेती पे जो किथे हो मिस्टर, बेशक हो दादा या दादी या फिर पापा या पुत्र, नंबर रहेगा 9868107070। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, कार्तिक की आवाज में। आई एम इन लव।

0: रिया, आपने सुन लिया है सवाल बॉलीवुड सरताज का और मेरे पास ढेर सारे जवाब आने चालू हो गए हैं। बहुत से जवाब हैं जो सही हैं और बहुत इक्का दुक्का हैं, दे आर नॉट रियली ऑन द डॉट, यानी टारगेट पे नहीं है, मिस कर गए। लेकिन क्योंकि रानी मुखर्जी की बात हो रही है, इनसे जुड़ी एक और खबर है, बताएंगे, थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आएंगे, आपका हिम्मत चाहिए। सुनते रहिए आकाशवाणी का ये कार्यक्रम जिसे आप कहते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और हम भी इसे इसी नाम से बुलाते हैं।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आज लेट हो गए।
3: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं,

0: हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

जी आप सही जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप बहुत सारी बातें भी हमें बताते जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे माइंड से भी स्किप कर जाती हैं। जैसे भी एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि भाई रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। यस, यू गॉट द राइट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपका नाम हो सकता है मैं अभी के अभी बता दूँ साथ के साथ। अच्छा, डॉली ने ये मैसेज हमें लिख के भेजा है, कहती हैं सुना है कि आपने बिल्कुल सही सुना है। तो हमारा सवाल एक बार फिर से है कि रानी मुखर्जी ने जो किरदार प्ले किया था इन द मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उस किरदार का नाम क्या था, ये बताइए हमें 9868107070 पर। और हो सकता है कि आप आज बन जाएं बॉलीवुड सरताज, उसी फिल्म से आपके लिए गाना शुभ हो शुभ हो ऑन द चैनल दैट इज ऑल्सो शुभ हो शुभ हो, मतलब सुबह सुबह नहीं है, मतलब शुभ चैनल से आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से ये आवाज जिसे आप प्यार से कह सकते हैं। चले जाने दीजिए, कुछ भी कहिए, प्यार से कहिए, इनकार से कहिए या इकरार से कहिए, मैं हूं आपके साथ रंजन, सुनते रहें आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए पूरी दुनिया भर में। फिर नहीं करेंगे आप कोई शिकायत, क्योंकि फिर हम नहीं देंगे आपको अपारी हमारे इस परस्पर प्यार में रियायत, क्योंकि फिर कोई बहाना नहीं बचेगा ना। न्यूज ऑन एयर ऐप को कीजिए डाउनलोड। और आज है खास दिन, ना सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, बहुत से लोगों का आज जन्मदिन होगा, लेकिन आज है अनुराग कश्यप का भी जन्मदिन। 10 सितंबर को वो इस दुनिया में आए थे, और उसके बाद जिस तरह से उनके विधाता ने एक स्क्रिप्ट लिखी उनके जीवन की,

0: छोटे से ही उन्होंने अपना यू नो स्कूलिंग वगैरह करी। कॉलेज उन्होंने हंसराज कॉलेज दिल्ली से किया, उसके अलावा देहरादून और ग्वालियर से उनकी पढ़ाई रही स्कूल के दौरान। और फिर उन्हें ये समझ आया कॉलेज के दिनों में कुछ एक फिल्म फेस्टिवल को देखते हुए कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। बड़े गुमसुम और खोए हुए थे जैसे एक आम टीनेजर होता है उस दौर में। और फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं मैं एक्टर बन जाऊं, तो ये मुंबई गए, काम नहीं मिला, फिर स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ गए, कुछ कहानियां लिखते रहे, किताबें पढ़ते रहे। और वैसे बड़े बड़बोले हैं, किसी बात पे बड़ी बेबाक अपनी बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। दो दफ़ा शादी की और दो दफ़ा ही साथ छोड़ दिया गया। और उसके बाद आजकल ताज़ी हवाओं में गोवा में ये अपने घर में रहते हैं, मुंबई से दूर हैं, भीड़ भाड़ को दूर दूर रहते हैं, कुछ मुंबई को इनको यू नो एक ब्रेक दे रहे हैं। लेकिन हाँ, वेरी मच इज़ वेरी मच देयर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। बहुत से इन्होंने किरदार निभाए हैं, बहुत तरह के हैट्स पहने हैं आई वुड रादर से, चाहे फिल्म प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, स्क्रीन राइटर हो, और एज एन एक्टर ही क्यों ना हो, देर से ही सही इन्हें एज एन एक्टर भी काम मिला है। इनकी कुछ लिखी हुई अच्छी और कुछ डायरेक्ट हुई फिल्मों में से कुछ एक नाम मैं ले सकता हूँ। सत्या के लिए उन्होंने एज अ को राइटर काम किया, फिर इनकी एक मूवी पांच जो कभी नहीं थिएटर में रिलीज हो पाई, ब्लैक फ्राइडे काफी क्रिटिकली एक्लेम रही। उसके अलावा नो स्मोकिंग, देवदास, गुलाल, एंड अगर हाल ही की बात करें तो बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया। गैंग्स ऑफ वसेपुर एक अपने आप में एक लीक से हट के मूवी, और अपनी यू नो एक उसने एक सॉर्ट ऑफ अपने लिए एक नाम कमाया। और ऐसी बहुत सी मूवीज हैं और ओटीटी पे भी ये काफी हद तक सक्रिय हैं। सो अनुराग कश्यप, आपके लिए आज जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आकाशवाणी रेनबो की तरफ से। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, क्योंकि क्रिएटिव लोगों को कुछ ऐसा रहता है कि जहां उनकी सोच होती है वो ज्यादा ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, अब यूं ही सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया।

गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर To listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स. मैं हूं आपके साथ रंजन. और हमारा सवाल एक बार फिर से पूछते हैं क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है. थोड़ी देर में किसी एक को हमने बनाना है बॉलीवुड का सरताज. तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुखर्जी ने जो किरदार निभाया था उस किरदार का नाम बताइए और बन जाइए बॉलीवुड सरताज. 9868107070 पर कीजिए व्हाट्सएप. 98 68 10 70 70 जुड़ रहे हैं हमारे साथ.

0: यहाँ प्यार होता होता कई बार है और हमको भी कई बार प्रयास करना पड़ता है। क्या हो जाता है कि आपको हम नंबर देते हैं, नंबर देने के बाद आपको हम बनाना चाहते हैं बॉलीवुड सरताज, लेकिन आप फोन नहीं उठाते हैं। मैंने तीन कॉलर्स को इस समय, तीन श्रोताओं को, तीन लिसनर्स को फोन किया, पहले वाले ने फोन नहीं उठाया, दूसरे वाले का एंगेज था एंड थर्ड वन यू गॉट लकी माय डियर फ्रेंड विनीत। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: विनीत जी, आपको पता है आज आप दो लोगों को पंक्ति से पिछाड़ के आगे निकल के आई है आपकी कॉल, पता है?
1: जी जी सर। अच्छा, तो आपको पहले ही बात हुई है सर।
0: नहीं नहीं, ये तो फिर देखिए मेरी खुशनसीबी है। क्या करते हैं विनीत आप? बदायूं उत्तर प्रदेश। हाँ जी हाँ, बदायूं उत्तर प्रदेश से। क्या काम करते हैं आप?
1: सर मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, ऑब्जर्वेशन होम, बच्चों की जेल
0: है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या सरकारी जॉब है आपकी? नहीं, प्राइवेट है। कॉन्ट्रेक्चुअल हैं आप, कोई बात नहीं। ये बताइए, आपने सही जवाब दिया। क्या आपने फिल्म देखी है बाय द वे विनीत जी?
1: जी जी नहीं सर, नहीं।
0: नहीं देखी है? बड़ा गजब का काम किया है इसमें रानी मुखर्जी ने। नाम उनका क्या था आप ही बता दीजिए, फिल्म में किरदार जो निभाया था?
1: देविका भट्टाचार्य।
0: हाँ, देविका चटर्जी। तो आज आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज, आपको ढेरों शुभकामनाएं। और आज थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिएगा हमारी तरफ से।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। और देखिए, मैं यही कह रहा था कि जब आप हमें मैसेज करते हैं तो कोशिश करें कि मैसेज करने के बाद इस बात का इत्मीनान रखें कि आपको कॉल आ सकता है, इसीलिए फोन के पास रहें, फोन तुरंत उठाएं और बन जाएं बॉलीवुड सरताज जैसे बने विनीत आज। और ढेर सारी आपसे बातें करेंगे, लेकिन इस सॉन्ग के बाद अब ज्यादा समय नहीं है क्योंकि हिमानी स्टूडियो में आ गई है विद प्ले इट कूल। जाते जाते आपसे कहूंगा थोड़ी सी बात, बट आफ्टर दिस सॉन्ग।

जी हाँ, जैसे लहर बहती है, ना जाने वो क्या कहती है। अनंत काल से समुद्र में उठती गिरती लहरें कुछ एक धुन सुनाती हैं, अपनी बात कहती हैं, किनारे पे आती हैं, टूट जाती हैं, फिर एक नई रवानगी के साथ बनती हैं, फिर वही क्रम दोहराती हैं। कुछ समझ पा रहे हैं भाई? जाने का समय हो गया मेरा, आपसे फिर मिलूंगा, क्योंकि आपको वैसे बड़े सेफ हैंड्स में छोड़ के जाऊंगा, हिमानी मोनालिसा दत्ता के साथ फ्लाइट स्कूल में। फिलहाल रंजन को दीजिए यहाँ इजाजत। आपको बता दें, दृश्यम 3 का ट्रेलर कल रिलीज हुआ है और उसके अंदर जयदीप अहलावत एक नए किरदार में आए हैं, पुलिस SP के रोल में। कई लोगों को दृश्यम बहुत पसंद आई, बहुत जल्द आप ये भी देख पाएंगे, आई थिंक नेक्स्ट मंथ ओनली। तो फिर कीजिए उसका इंतजार, रंजन को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट।

0: है 367 किलोमीटर 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit, markets, and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India has focused on empowering women financially, socially, and through education, skills, and an improved quality of life, with the objective of making women drivers of the country's growth.
3: 100 million women in rural India, in the villages, are members of 9 million self-help groups who get together to experiment, to work on an idea. Women who earn about 100,000 Indian rupees, which is probably barely $1,000, but which means a lot for a woman

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: दोस्तों 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार समा शाम 5 बजे गुरदीप गिल ते बलजीत शर्मा जी प्रोग्राम पिंडां वाले ते शहरां वाले दे अंतर्गत आप जी दी खिदमत दे विच लैके हाजिर हो रहे ने प्रोग्राम पिंडां वाले ते शहरां वाले विशा चित दा भरोसा भाग दूजा।

प्रसारण समा दोबारा नोट कर लो दोस्तों, शाम 5 बजे, मिति 11 सितंबर 2026, प्रोग्राम रहेगा साडा पिंडां आले ते शहरां आले।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

प्रसारण समा दोबारा नोट कर लो दोस्तों, शाम 5 बजे, मिति 11 सितंबर 2026, प्रोग्राम रहेगा साडा पिंडां आले ते शहरां आले।

0: जी श्रोतियों, प्रोग्राम चल रहा है घर परिवार ते। घर परिवार दे विच समा तुहानू दसदी 12:58 दा ते अगले कॉलर नाल अगली भैन दे नाल गल करते हैं। हैलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोलदे हो?
1: सर जी, नमस्कार। अस्सी मैं हरप्रीत बोल रही।
0: तो रेडियो तुहाडे कोल चल रहे? थोड़े
1: हाँ जी ठीक
0: दूर हो जाओ,
1: है
0: जब
1: जी।
0: बंद
1: अच्छा
0: कर दो एक बारी,
1: जी,
0: फिर
1: बंद
0: अपनी
1: कर दिया।
0: वधिया क्लियर आवाज गल हो जाएगी।
1: हाँ जी हाँ जी, बंद करता। हाँ जी,
0: हाँ जी, हुण अपना नाम दसो।
1: हरप्रीत कौर। हाँ
0: हरप्रीत
1: हाँ
0: कौर।
1: जी,
0: किथे रहने तुसी?
1: अस्सी नथाने दो।
0: नथाने तो बोल रहे हैं तुसी,
1: हाँ
0: ते
1: जी हाँ
0: आकाशवाणी
1: जी,
0: बठिंडा दे प्रोग्राम सुनदे हो?
1: रोज हर रोज मेनू फोन मिलाउंदी नु। अज घटोघट 2 महीने हो गए।
0: 2 महीने हो गए?
1: हाँ
0: 2 महीने पहले लग गया सी?
1: ना ना, लगे ही नहीं। ये
0: अच्छा
1: पहला मेनू फोन दे नंबर दा नहीं सी पता। फिर मैं
0: अच्छा
1: सुनी गई सुनी गई, फिर मैं फोन दा नंबर ली गया। हाँ
0: अच्छा
1: जी, मिलाई गई मिलाई गई, अज
0: अज
1: मिली।
0: मिल गया। अच्छा,
1: हाँ
0: तुसी किसे प्रोग्राम च नहीं मिलाउंदे होर?
1: हाँ जी, नहीं मिलाया सी। होर भी आ जेड़ा तुहाडा आ
0: अच्छा, गल
1: जेड़ा,
0: होई भी है तुहाडी, यानी इस प्रोग्राम च पहली बार लगी है तुहाडे कोल?
1: गल किसे नाल भी नहीं हुई, फोन ही नहीं मिलिया।
0: अच्छा, फोन ही नहीं मिलिया, ट्राई करदे सी, फोन ही नहीं
1: हाँ
0: मिलिया।
1: जी ट्राई जरूर कर दी। हाँ
0: चलो,
1: जी
0: अज
1: मेरा,
0: तुहाडा फोन मिल गया, मुबारका तुहानू बहुत बहुत।
1: हाँ
0: ये भी बहुत
1: जी
0: वड्डी उपलब्धि है
1: हाँ
0: आकाशवाणी
1: जी
0: बठिंडा नाल जुड़न लई, है ना?
1: हाँ जी हाँ
0: बहुत
1: जी
0: सारे श्रोते ट्राई करते हैं, बहुत मुश्किल नाल कॉल मिलती
1: बहुत।
0: है।
1: हाँ जी बहुत ज्यादा, मैं सारे प्रोग्राम ही सुनती हूँ बह के। तो
0: अच्छा, ते सब
1: मेरा
0: नालों
1: बेटा
0: पसंदीदा प्रोग्राम केड़ा तोड़ा?
1: सारे ना, यही घर परिवार जेड़ा, ये भी बड़ा वधिया लगता है मेनू। सारे ही
0: अच्छा।
1: गाने भी सुन के, गल्लां बातां दे नाल भी जदों करदे आ। पिछला विस्ता कल जदों आया सी,
0: हाँ जी
1: बड़ा मतलब वधिया लगिया सारा ही। सही
0: ठीक है जी।
1: गल्लां एहो जिहियां सुनन नू मिलदियां, बहुत वधिया लगदियां, सिक्ख्या भी मिलदी है सारिया तो तुहाडे तो। बाकी ये भी प्रोग्राम सुनदी है जदों ये मुश्किल वाला, जदों हाल हाल मुश्किल
0: मुश्किल
1: दे
0: दसो हाल
1: हाल।
0: दसांगे। हाँ जी,
1: हाँ जी सारा प्रोग्राम ही सुनीदा, बच्चे भी
0: सुन,
1: सुनते हैं कई बारी तो।
0: ठीक है, वधिया वधिया लगदा जदों साडे श्रोते जदों ये कहंदे इन्ना प्यार करदे रेडियो नूं, तो बहुत वधिया लगदा कि हले भी शिद्दत
1: हाँ
0: नाल प्रोग्राम सुने जांदे है ना।
1: जी हाँ जी, बहुत
0: चलो,
1: वधिया
0: यानी कि
1: लगता।
0: प्रोग्राम घर परिवार तुहाडा फेवरेट है।
1: हाँ जी बहुत
0: भैणां लई
1: वधिया।
0: तां वैसे मैनूं लगदा आम तौर ते भैणां, क्योंकि
1: हाँ
0: देखो गल्लां इहदे च भैणां नाल जदों हुंदियां, ते जिहड़े
1: हाँ
0: प्रोग्राम दे विच गल्लां भैणां नाल होण जां भैणां दे रिलेटड, घर परिवार रिलेटड गल्लां होण, तां ओह ज्यादा प्रोग्राम भैणां नूं वधिया लगदा है ना।
1: वधिया लगता। हाँ जी हाँ जी, बहुत
0: अच्छा,
1: वधिया लगता,
0: ते हुण
1: बहुत।
0: मैनूं ये दसो घर च कौन कौन ने होर?
1: मेरे बेटा एक बस नूह आई है, तीन
0: अच्छा
1: पोतियां ने, एक पोता है मेरे को। हाँ
0: ठीक है,
1: वधिया घर परिवार सारा चली जाता
0: चल रौनकां
1: वधिया,
0: लगियां हुई करे है,
1: पूरियां पूरियां जी।
0: पूरियां सारा
1: पहला
0: दिन जी लग्या रहिंदा ना बच्चे नाल। अच्छा,
1: हाँ जी हाँ जी, पहला छोटे हुंदिया दा भी इन्हां दे पापा दी डेथ हो गई थी। तो हाँ जी मैं बस पाठ करके अपने बच्चे पाले सी।
0: चलो
1: बहुत
0: बहुत वड्डी है ना, ये भी एक औरत लई बच्चे
1: हाँ जी,
0: पालना है ना, बहुत वड्डी
1: पढ़दा
0: जिम्मेवारी
1: काका।
0: हुंदी है जिहड़ी तुसीं वधिया तरीके नाल निभाई।
1: हाँ मेरा काका 6वीं च पढ़दा सी,
0: अच्छा
1: दो छोटे छोटे सी। फिर एक
0: अच्छा
1: काका मेरा पूरा हो गया सी, हुण
0: अच्छा
1: एक एक ही है मेरा बेटा। दो
0: ओके।
1: बेटियां ने, हुण तो अपने घरे मौजां करदे आ सारे। आपो जल्दी
0: हाँ, वो ब्याहतियां होनियां बेटियां?
1: हाँ जी, वो एक सिंगापुर चल गई है बसी,
0: अच्छा
1: ओदे बेटा बेटी है, ओदे भी अगो दोता दोती, ते एक दोवे भैणा इको घरे आ। हाँ जी
0: अच्छा
1: चंडीगढ़ दे कोल है। हाँ जी जीर कोल।
0: ठीक है,
1: हाँ जी
0: चलो वधिया फिर, यानी
1: ते
0: कि सारे बच्चे अपने अपने कम्मा ते सेट
1: हाँ जी
0: ने,
1: सेट,
0: ब्याहे है ना, पूरा परिवार सेट है।
1: वो मालक ने सेट करते।
0: चलो
1: हाँ
0: देखो,
1: जी
0: आपां रब ते जो डोरा छड़ दिया ना।

0: फिर वो सब कुछ सही कर देता
1: सब कुछ सही करता,
0: है ना।
1: बड़ा मान बढ़िया करता है, सारा कुछ सेट था। हाँ जी
0: हाँ चलो बढ़िया, खुश वधिया लगता है जी, गल सुन के खुशी भी हुंदी है ना। नहीं
1: हाँ
0: तो कई
1: जी
0: बार जिवें तुसीं कह रहे हो बच्चे छोटे सीगे, तुहाडे पति देव एक्सपायर हो गए, तां उदों मन नहीं डोल जांदा कि बच्चे तां बहुत छोटे है हले पढ़ रहे है, किवें मैनेज होऊगा है ना। एक औरत दे अज दे समय च चलो कुड़ियां पढ़ियां लिखियां, मिलना तां तुहाडे समय च तां घट पढ़ा।
1: नहीं, मैं तो सारी अच्छी पढ़ी सी।
0: हाँ
1: हाँ
0: ते
1: जी
0: उस टाइम फिर तुसीं तुहाडा
1: परिवार
0: इक जरिया जिहड़ा कमाई दा वो की सीगा?
1: पाठ करना, मैं जिवें घर दे विच पाठ नहीं, सहज पाठ रख
0: अच्छा
1: लिया,
0: अच्छा
1: अखंड
0: अच्छा ठीक है
1: पाठ
0: जी,
1: दी रोल लाउनी, अखंड पाठ रख दिया, स्पीकर च रोल लाउनी।
0: वाह जी वाह, क्या बात है, कितना वधिया फल मिलिया तुहानू है ना ऐसे दा।
1: हाँ जी ग्रंथी भी मतलब
0: हाँ
1: ड्यूटी भी
0: जी
1: इस तरह।
0: वाह जी वाह, क्या बात है,
1: हाँ जी इस तरह निभाया सारा।
0: चलो बहुत वधिया जी।
1: हेलो
0: और
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ जी हाँ जी, गल हो रही है अपनी, हाँ जी करो, की कह रहे सी?
1: मैं क्या सी, मालिक ने वधिया टाइम कर दिया, चलो ये अपने अपने कर्म होंगे जी,
0: बिल्कुल
1: कर्म।
0: जी, कर्म चंगे करांगे तो फल भी चंगा ही मिलूगा
1: हाँ बस चलो, मालिक अगे तो लाके बच्चों
0: जी।
1: जी एडी समत बख्शी है, इतनी इज्जत करते हैं सारे, वधिया।
0: सब नालों वड्डी कमाई यही है, बच्चे साडे पैरां ते हो जांदे, माँ प्यो दी इज्जत करना अज दे टाइम दे विच है ना।
1: ना मेरा बेटा भी पैरां थले हाथ दिंदा है, इन्ना वधिया। हाँ जी
0: बहुत
1: बहुत।
0: खुशकिस्मत हो तुसी बच्चे
1: हाँ जी हाँ जी,
0: है ना,
1: अजकल दे
0: ऐस
1: बच्चे
0: अज दे
1: तो
0: समय दे विच जे ऐदा हो रहा था है ना।
1: पुछदे नहीं, मैं बहुत घर वेखे आ। हाँ जी माँ बाप नु कोई पुछदा नहीं, पर मेरा बेटा तो बहुत वधिया, शुक्र है मालिक दा,
0: हाँ जी बिल्कुल
1: इन्ना
0: उस
1: बार। हाँ जी और हाँ वधिया जिहा कोई गीत सुना दो एक।
0: अपा गीत वधिया चली जांदे अपने कोल सारे, फिर भी
1: हाँ
0: क्योंकि हुन अपने कोल समा भी थोड़ा हैगा, ते बाकी सारे दिन दे विच फरमाइशी गीत चलते रहंदे हैगे है ना, ते मैनूं तां एवें सी जिहड़ा गीत चल रहा हैगा ओह अच्छा चल रहा सीगा, उही आपां कंटिन्यू कर लैने आ,
1: ठीक है
0: तुसीं की
1: जी,
0: करदे जे है ना।
1: हाँ जी
0: ठीक है
1: ठीक
0: जी,
1: है,
0: ते ऐदां ही आकाशवाणी बठिंडा नाल जुड़े रहियो, कॉल करने के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है जी,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: जी।
1: धन्यवाद, मालिक भली करे। ठीक है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं जगजीवन सिंह तों प्रादेशिक खबरां सुणो। पंजाब सरकार ने नौजवानों नूं हुनरमंद बनाउण लई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII नाल मिल के काम करन दा सद्दा दित्ता है। इसका उद्देश्य फसली रहिंद खूंद दे स्थाई प्रबंधन नूं उत्साहित करना, ज्ञान ते तकनोलॉजी दे आदान प्रदान राही बागवानी दी मजबूती अते सूबे विच उद्योगिक विकास नूं नवीं बुलंदियां ते ले जाणा है। बीते दिनी CII ते वफद नाल मुलाकात दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि स्रोतों की सजी वरतों जलवायु परिवर्तन नाल जिठण अते साफ सुथरी तकनोलॉजी ते जोर दिता जाएगा। उन्हां मालवा खेत्र खास करके संगरूर अते बरनाला विच शुरू कीतियां पहलकदमियां दे नाल नाल लुधियाणा विच प्रस्तावित मल्टी स्केल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अते जलंधर विच एक अत्याधुनिक लैबोरेटरी वाला सेंटर आफ एक्सलेंस फॉर टैक्निकल टैक्सटाइल्स तैयार करने बारे भी गलबात की। मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग बारे अपने एक्स अकाउंट से जानकारी सांझी की। भारतीय फौज की वजर कोर ने असल उत्तर की जंग नूं याद करदिया उन्हां बहादुर भारतीय सैनिकों नूं श्रद्धांजलि भेंट की, जिन्हां ने 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के इस फैसलाकुन मुकाबले विच उदुत्ती बहादुरी, रणनीतिक सूझबूझ के अटुट हौसले नाल पाकिस्तान के शक्तिशाली बख्तरबंद हमले नूं फैसलाकुन ढंग नाल नाकाम कर दिता सी। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 8 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕੁਆਟਰ ਮਾਸਟਰ ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਧਾਰਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ੌਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ

प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी सुन रहे तमाम श्रोतियों नूं सीमा मेहरा वल्लों प्यार भरी नमस्कार जी। श्रोतियों डायल करो साडे स्टूडियो दा नंबर 0164-242-3031 ए नंबर डायल करके जुड़ जाणा आकाशवाणी FM बठिंडा दे नाल ते सुन लैणा जी अपनी पसंद दा हिंदी फिल्मी गीत।

0: प्रसारण समा दोबारा नोट कर लो दोस्तो, शाम 5 बजे, मिति 11 सितंबर 2026, प्रोग्राम रहेगा साडा पिंडां आले ते शहरां आले।
1: ओ

0: essential supplies. Hundreds of houses have been damaged, while nearly 700 rural roads remain underwater, affecting road connectivity. Road Construction Minister Engineer Kumar Shailendra has asked officials to keep a close watch on the roads and repair them as soon as the water recedes. The Education Department is also making arrangements to continue the studies of children in flood-affected areas. Meanwhile, the situation remains concern in Baltara, in Khagadia and Kursela in Katihar, where the Kosi is flowing about 1.5 meters above the danger mark. Teams of the Water Resources Department and District Administration are keeping a close watch on the situation. Nidhi Shri for Akashwani News, Patna.
1: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

0: गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है।

प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलु संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंधकम से मरगथम कुमार

0: से सत्यभामा और मधुरंधकम से मरगथम कुमारविल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंधकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितम्बर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितम्बर को होगी और 19 सितम्बर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,377 हो गई है। 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनिता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने

0: में होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिदार, सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 1.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ। ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੰਗ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ 1369 ਸੁਣੋਗੇ।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालू से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा

0: का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वही मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओ, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओ, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय

0: हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
1: कमली और सोमारू चले घास ले।

0: पास घास, थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो

0: खाने लायक बनो।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
2: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
0: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
5: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों

0: पड़ता है। सोचिए जरा, बताइए तो।
1: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं, यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
0: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची।

0: जी, पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोतियों हुणे तुसी सुन रहे सी प्रायोजित प्रोग्राम उमंग आकाशवाणी एफएम बठिंडा एफएम बैंड 106.1 मेगाहर्ट्ज़ ते 2:59 ते 56 सेकंड दा समा हो चुका है। रिले कर रहे हैं विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। 3 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम सखी सहेली, 4 बजे दा समा रहेगा प्रोग्राम हैलो फरमाइश दा, ते शामी प्रोग्राम 5 बजे किसान वाणी लैके फिर तो थोड़ी खिदमत दे विच हाजिर होवांगे।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों की और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम भी हो तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको, सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक।
1: आज हमारे क्या क्या विषय हैं?
2: विषय सीधे विषय पे आते हैं
1: जी, बिल्कुल।
2: तो आज हम विषय लेकर आए हैं घर की सफाई, क्योंकि त्योहारों का मौसम है मंजरी जी। तो ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों का मौसम होता है तो साफ सफाई ये तो लगा ही रहता है। तो किस तरीके से हम घर की सफाई में लगते हैं और आसानी से सब लोग मान जाते हैं सदस्य घर की सफाई करने के लिए, या फिर नोक झोंक थोड़ी बहुत होती है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बहुत
2: और
1: अच्छा
2: आप
1: सा
2: लोग
1: विषय
2: भी,
1: है ना।
2: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे ना कि वो लोग भी हमें बताएं कि उनके घर में जब साफ सफाई होती है तो सारे लोग अपने आप अपना परिश्रम करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर कुछ कहना पड़ता है, नोक झोंक होती है, रूठना मनाना चलता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ उपयोगी टिप्स में बातें होंगे कि जब बनानी हो नई रेसिपी तो इसके अनुभव भी आप लिखें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है और या क्या तैयारियां करती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे कुछ कहना में है कि बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें
2: जो अक्सर देखने में आता है
1: आता क्या, हम लोग खुद

0: करते
1: तो चलो
0: ना,
1: हमारे सभी साथी छोटी-छोटी सी यादों को ताजा
0: बिल्कुल,
1: करेंगे,
0: कि
1: है ना।
0: आपके आपका ऐसे किस इंसान को जानते हैं या किसको जानते हैं, हो सकता है आपको पड़ोसी ही हो, कि
1: बिल्कुल।
0: जो 5 मिनट कहते हैं बस सब हम जा ही रहे हैं, लेकिन फिर घंटों चलती रहती हैं वो बातें, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत जोधैया बाई बैगा, जो कि कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
1: और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गहन विषय है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं एक गीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में और आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा है जिस पर बात करना आसान नहीं लेकिन बात करना बेहद जरूरी है। ये दिवस है आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या शब्द ही बहुत दुखद है और इसलिए इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जब भी कभी ऐसी दिमाग में किसी के भी ये बात आती है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर ले तो उनको सोचना चाहिए कि आपका जीवन जो मिला है जीने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार विचार मंथन करें फिर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, अपनी समस्याएं जो है वो किसी और को बता भी सकते हैं।
3: बिल्कुल। और इस दिवस को जागरूकता दिवस बनाने की शुरुआत हुई साल 2003 में और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की गई थी। और इस दिन का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करना और जरूरत के समय मदद लेने के महत्व को समझाना कि ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे अगर आप किसी की मदद ले लेंगे, बल्कि मदद लेने से क्या होता है ना कि हमारी जो समस्या है जो हम उसको उस समय हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के में दे दे।
2: बिल्कुल आरती। और कभी कभी जीवन में परेशानियां इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है और ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आपस में बातचीत की जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो उसकी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हो चाहे कोई भी हो व्यक्ति आपके साथ का हो, हाँ मित्र भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिले, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूंगा, है ना।
3: बिल्कुल। और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान जरूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना तो वही बड़ी बात जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है तो बहुत मायने रखती है।
2: बिल्कुल सही बात है, ऐसे में साथ बहुत जरूरी होता है किसी का भी। और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता परिवार के सदस्य शिक्षक मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें। और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कुछ सरकारी व निशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है।
3: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदलना, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित है और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली। जोधैया बाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
3: बिल्कुल, और जोधैया बाई, जिन्हें लोग जोधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज

0: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना माना नाम है। एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जोधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
1: बिल्कुल। और जब जोधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ, उस समय जोधैया बाई के दो मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जोधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
0: बिल्कुल। और बेटी के जन्म के साथ ही जोधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। तीन बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
1: और पीठ पर मासूम बच्ची को बांधकर जोधैया बाई गाय भैंस बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बिन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका
0: बहुत
1: दिन था।
0: ज्यादा बिल्कुल। और संघर्ष से जूझ रही जोधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा, जिसमें जोधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी माँ जोधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जोधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जोधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और ये लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से
1: जी
0: कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जोधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती हैं।
1: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जोधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाया। बाद में लकड़ी और सूखे कुम्भड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
0: बिल्कुल। और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जोधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे।
1: और उनकी बनाई पेंटिंग्स को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई। जब वर्ष 2022 में जोधैया बाई को राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान मिला था, तब स्वर्गीय आशीष स्वामी की तस्वीर के सामने बैठकर जोधैया बाई काफी देर तक रोती रही थी।
0: बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया था,
1: जी
0: उस जगह तक पहुंचाया था। फिर वर्ष 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में जोधैया बाई बैगा की उनके पैतृक गांव लोरहा उमरिया में निधन हो गया। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हुनर और सफलता के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो जहां पर वो रह रही थी तो आसपास की जो चीजें उपलब्ध थी, जैसे तरुई बताया है उन्होंने, है ना, कुम्हड़ा है, तो इन चीजों पे वो चित्र बना रही थी। तो एक कहते हैं हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही
0: बिल्कुल
1: आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी चीजें उन्होंने बनाई हैं उसमें।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक बहाने की तरह से ली जा
1: बिल्कुल
0: सकती
1: सही
0: हैं,
1: बात,
0: क्योंकि अगर हमारे अंदर एक करने का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते
1: भी
0: हैं।
1: हम सोचते हैं ना कि पहले इतने सारे ब्रश खरीद के लाएंगे या हमारे पास पूरे रंगों का डिब्बा होना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो रंग भी हैं तो आप उससे भी अपनी कला को
0: बिल्कुल
1: शुरू कर सकते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: देखिए, उन्होंने प्रकृति से ही कला को लिया,
1: जी
0: प्रकृति से ही रंगों को लिया और प्रकृति के सामान पे ही उसको उसका उपयोग किया।
1: प्रकृति में तो कितने सारे रंग हैं और
0: बिल्कुल
1: कितनी सारी कला है। हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा हम ये पत्ती भी बना लें, ये फूल भी।

0: समझदारी समझा जाता है वहां धीरे धीरे नोक झोंक पनपती है, इसलिए समझदारी इसी में है कि सफाई को ड्यूटी नहीं साझेदारी बनाया जाए। थोड़ी मदद, थोड़ी तारीफ और थोड़ा समय पर किया गया काम घर को भी साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है। क्या बात आपने कही है ना।
1: बिल्कुल। एक और हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलियामड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है। इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
0: बिल्कुल, सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए जिससे एक एकता बने। और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: तो आरती तस्वीर को इतनी अच्छी होती है ना, लगता है कि उसको सीने से लगा के रख ले, है
1: बिल्कुल,
0: ना। लेकिन जब बात आती है कि घर में साफ सफाई की बात आती है, तो
1: तो
0: बस
1: हम
0: लगता है कि
1: सारी तस्वीरों को तो नहीं रख सकते ना सीने से लगा के।
0: सही बात है। और जब घर में साफ सफाई की बात आती है, तो लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, ये बहुत आसानी से हमें बता देंगे कि मतलब कहाँ से सफाई की जाए। तो हमारे साथी का संदेश हम उठा लेते हैं, लिखते हैं कि घर की साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, वो रिश्तों का आईना है। जहाँ साझेदारी होती है, वहां काम बढ़ जाता है और बोझ हल्का लगता है। लेकिन जहां इसे एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और आरती कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अगला संदेश क्या कहता है आरती, बताओ जरा।
1: अब हमारे एक श्रोता सभाई हैं जो मेरे साथी हैं, जो कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम से बनता है। एक साफ सुथरा घर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सफाई को लेकर आपस में नोकझोंक करने के बजाय इसे एक खुशनुमा साझेदारी में बदले। जब पूरा परिवार मिलकर हाथ बढ़ाएगा तो घर का कोना कोना तो चमकेगा ही, साथ ही आपसी रिश्तों में प्यार की चमक भी बढ़ जाएगी।
0: क्या बात आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखकर भेजी हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई हो या रोजमर्रा के छोटे बड़े काम, कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर घर में नोकझोंक हो जाती है, कभी भाई बहन में, कभी पति पत्नी में, तो कभी परिवार के किसी और सदस्य के बीच। और तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया, या मैं ही सब क्यों करूं, जैसी बातें सुनाई दे जाती है। लेकिन हर नोकझोंक मन मुटाव नहीं होती, घर की साफ सफाई में आपसी सहयोग, समझदारी और प्रेम से काम आप और थोड़ी सी नोकझोंक में मुस्कान जोड़ दें और मैं की जगह हम को महत्व दें। भाई ऐसी अगर बातें होती है ना, तो बेचारे जो हमारे सामान होते हैं ना, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कब हमारे पास आएंगे, कब हमको पूछेंगे, है ना। तो भाई ये चीज है कि आप मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ और आपस में हाथ बटाएं, है ना।
1: और एक साथ हमें कितना समय भी, सोचिए कितना समय भी बिताने को मिलता है साथ में। हम लोग काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हो सकता है वहां पे गाने चला के थोड़ी देर के डांस भी कर लें
0: क्या
1: गुनगुना भी लें, बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: आरती तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है कि गाने बजा लें, अपना सुने बढ़िया गाने और मन करे तो डांस करें। लेकिन ये नहीं कि आपने लेके झाड़ू चालू हो गया डांस करना, तो
1: थोड़ी देर चलता है
0: इधर उधर फैल गई गंदगी, वो भी ना करें। चलो अगला क्या संदेश है हमारे साथी
1: जो लिखते हैं कि घर की सफाई हमेशा समझदारी और आपसी तालमेल से होनी चाहिए, क्योंकि नोकझोंक से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है और काम का बोझ कम नहीं होता। जब घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं तो सफाई एक बोझ बनने के बजाय एक खुशनुमा पारिवारिक गतिविधि बन जाती है। पर कितना भी समझदारी अपना लो, नोकझोंक तो होना ही है। बिना नोकझोंक हुए, चाहे वो बचपन में भाई बहन के साथ हो या ससुराल में पति पत्नी हो, जब तक ये ना हो सफाई में मजा ही नहीं आता। ये बात तो सही है,
0: बिल्कुल सही है। और एक कहावत लिखते हैं हमारे साथी एक है कि सुंदर और स्वच्छ घर में ही खुशियों का वास होता है, लेकिन जब इसी घर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर परिवारों में दो ही मोड़ लेती है, या तो ये बहस और नोकझोंक की वजह बन जाती है, या फिर आपसी मेलजोल और साझेदारी का एक जरिया। तो भाई हम तो सफाई के मामले में ये कह सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन हो उस दिन आप एक बैग ले लीजिए और बस जो चीज आपको हर कमरे में जाइए, जो चीज आपको लग रही कि हटा सकते हैं तो उनको उसमें रखते जाइए, और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं है, बहुत टाइम से रखी हुई है। तो इस

0: से आप उनको हटा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो और आप थोड़ा थक गए हो, ये नहीं कि लगातार काम ही करते रहिए, आपस में जाइए, एक चाय बना लाइए, पत्नी को पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, अगर वो झगड़ा होते होते रूठ गई है तो उन्हें मना भी लीजिए, है ना। और
1: बिल्कुल।
0: मनाना है तो भाई ये गाना भी सुना देते हैं, अगर पत्नी रूठ जाए तो वो पत्नी के लिए, पति के लिए गा ले, और पति रूठ जाए तो पत्नी गा ले, तो ये गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: तो आरती, हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथ

0: लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है, और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियां बहनें सारा समेटती रहती है, उनके दोनों हाथ चलते ही रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी जरूरी है। आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं, वहां पर सफाई रखिए, और अगर जहां पर खाना खाते हैं टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए
1: बिल्कुल।
0: सभी को।
1: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि नो घर की सफाई नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं। तब तो आपके अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
0: हाँ सही बात है, फोन चला रहे हो काम
1: वो भी
0: करके
1: उसका
0: और कई बार ऐसा मुझसे निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए हैं, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो
1: हाँ
0: वो चीजें भी कभी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोक झोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है, मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़ खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह इन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए। तो ये चीज तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोक जो घर में होती है सफाई के समय। तो
1: और साथ ही हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई नोकझोंक या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती हैं और ड्यूटी पर धर्म पत्नी मुझे मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती हैं। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती हैं और कहती हैं कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूं, भाई चाय मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम।
0: मेरे कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दें, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना।
1: बिल्कुल
0: और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई नोकझोंक या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जहाँ जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियां बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं, फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही
1: बिल्कुल,
0: होनी पड़ती, नहीं
1: और थोड़ा
0: आप
1: बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता
0: करना
1: है।
0: ही पड़ता है, वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक
1: जो
0: रविवार तो आपको
1: गहन
0: जुटना
1: जो सफाई
0: पड़ेगा,
1: होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी
0: खुद
1: पड़ती
0: ही
1: है।
0: करनी पड़ती है ना।
1: जी
0: तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ।
2: अरे

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी
0: बिल्कुल।
1: कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है। मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि भक्ति के रस में डूब के अगर आप एक रसेदार व्यंजन बना रहे हैं
3: बिल्कुल,
2: तो उसका स्वाद ही अलग होगा।
3: वो हमारे जो मन की सोच होती है ना, वो हमारे खाने में भी आ जाती है।
2: बिल्कुल आ जाती है। और भाई, जब हम खाना वाना खा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और या कोई घर पे आ गया तो बातें करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला कितना बोल रहा है। तो जब किस्से शुरू होते हैं ना, तो उनका अंत ही नहीं होता, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जब खाते करते उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं तो भी दरवाजे पे खड़े होकर के घंटों बातें चलती है। और कई बार सोच भी रहे हैं कि भाई अच्छा आप चलें, अरे रुकिए भाभी जी ये किस्सा और ये भाई साहब ऐसी बात, तो ये सब चलती रहती है।
3: बिल्कुल। और मंजरी, अच्छा ये चीज देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि अच्छा वो आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़ी देर बैठ जाइए, नहीं नहीं बहुत हो गया, अरे 5 मिनट बैठ जाइए ना, नहीं नहीं बहुत हो गया, ज्यादा देर हम बैठ नहीं पाएंगे, हमें बहुत काम है, घर पे सारे काम पड़े हुए हैं, अब बैठेंगे तो फिर बहुत काम हमारे पीछे रह जाएंगे।
2: हाँ, अभी फोन भी आता होगा किसी का ना, ऐसी
3: और ऐसा कहने के बाद भी एक घंटा निकल जाता है।
2: कई बार जिसके साथ आप बातें करें ना, वो ये कहता है अरे छोड़िए आइए एक एक कप चाय और हो जाए, मतलब थोड़ा और बैठ लीजिए। तो उनको भी लगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने तो मान लो सही में कहा या संकोच बस कह तो दिया, लेकिन सामने बोला हाँ चलिए बैठ लेता हूँ एक कप चाय पी लेता, तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लंबे बातें खिंच गई है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना।

0: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि एक मिनट से चलते 5 मिनट तक की बातचीत की सीमा घंटों तक पहुंचाए जाने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अव्वल नंबर आएगा। उनकी बातचीत में घर से लेकर मोहल्ले तक के इतने सारे विषय जुड़े होते हैं कि बातें खत्म होने में घंटा भर समय भी कम पड़ता है। फिर ये बातें फोन पर हो रही हो या फिर आमने सामने।
1: भाई देखिए, इसमें दोनों लोग की बात करते हैं, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं तो
0: बिल्कुल
1: करती करती हैं, वो तो फेमस है
0: हाँ
1: लेकिन हमारे साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं। महिलाएं तो चलो अड़ोस पड़ोस की खबरें लेकर के उनको पूरी खबर रहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, इधर क्या
0: पूछते
1: चल
0: भी है
1: रहा
0: फिर सकाचक क्या बातें हुई।
1: है और कई बार बहुत जानकारी भी मिल जाती है कि भाई इतने दिनों के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो सपोज आपने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का, उसी दौरान तो दो घर खाली रहेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि भाई बगल वाला 15 दिन के लिए इस तारीख से जा रहा है, तो चलो हम थोड़े दिनों बाद चले जाते हैं। तो
0: हाँ
1: कभी
0: ये तो
1: कभी
0: है।
1: इस चीज का भी फायदा होता है, तो बात जरूर करिए, लेकिन हाँ भाई बहुत ज्यादा देर ना करके थोड़ी देर करिए। हमारे साथी क्या लिखते हैं कि 5 मिनट बनाम 1 घंटा, कुछ लोगों की नहीं बहुत लोगों की आदत है। मेरी एक परिचित घंटा भर फोन पर बात कर लेती है और तब बोलती है, अरे तुम तो आती ही नहीं, आओगे तब मिलकर अच्छे से बात करेंगे, फोन पर कितना बात करें। पड़ोस की चाची सास चचिया सास घंटों घर में बैठकर बात कर लेंगी, पर जब आप उन्हें गेट तक छोड़ने जाएंगे तो वहां भी खड़े खड़े आधा घंटा बात करेंगे। उनकी इस हरकत से मेरी सासू माँ कभी चिढ़ जाती थी, गेट पर खड़ा कर क्या बात करना, घर में ही आधे घंटा और बात कर लिया करो। अब कैसे कहा जाए कि आप अब जाइए भाई साहब, जब जाए तभी तो आदमी विदा ले उनसे,
0: बिल्कुल
1: लेकिन पीछे से घर वाले जरूर परेशान होते हैं कि भाई तुम फिर वहां खड़ी बातें कर रहे हो या अड़ोस पड़ोस से बातें करने लग जाओ। तो ऐसी ऐसे सीन हमेशा देखने को मिल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन क्या करें भाई, चल गई बातें तो चल गई है
0: चली
1: ना।
0: चली जा रही है। और मैं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई होने को तो ऐसा भी होता है, जो लोग नौकरी पेशा नहीं है उनके पास समय होता है, ये लोग आपस में ऐसा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसे लोग किसी नौकरी पेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो ऐसे में वो बात करे या फिर नौकरी पर जाए, वो तब भी जब सामने वाला अपना कोई कोई अपना ही हो तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको बुरा लग सकता है कि
1: बिल्कुल
0: अब हमें जानना है निकलना है काम पर।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि चाहे मोबाइल पर बातचीत हो या लैंडलाइन पर, मैं तो शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत मेरी धर्म पत्नी की भी है। और एक लिखते हैं कि हम 6-7 सहेलियां पार्क के गेट पर आते जाते, जब तक कि सुबह सभी बहुत बिजी रहती है, फिर भी खड़े खड़े बात करते रहे, फिर चलते हैं कहकर फिर कोई नई बात शुरू हो जाती है और 5 मिनट की बात 1 घंटे तक की हो जाती है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि हमें घंटों की निरर्थक बहसों और फालतू की गपशप को अलविदा कहना चाहिए, इसके बजाय 5 मिनट की सार्थक बातचीत को अपनाना चाहिए, और जो जो हमारे समय की इज्जत करे, हमें कुछ सिखाए और जीवन को एक कदम आगे बढ़ाए।
1: और हमें एक गीत सुन लेना चाहिए।

0: भाई देखो, हमारी जो सखियों ने लिखे हैं कि उपयोगी टिप्स में लिखा है कि रेसिपी में लिखी सभी सामग्रियां, मसाले, सब्जियां, तेल आदि पहले इसे निकाल कर काउंटर पर रख लें। चॉपिंग पहले कर लें, सब्जियों को काटना, प्यूरी बनाना या सूखा मसाला पीसना, ये सारे काम गैस चालू करने से पहले ही पूरी तरह से कर लें। बदलाव से बचे, पहली बार में सामग्री को किसी दूसरी चीज से बदलने की कोशिश ना करें, जो लिखा है वही इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी जो हमें एक रेसिपी लिखकर भेज रही हैं कि जैसे कि पिज्जा रोटी है तो रोटी चाट और आप बचे हुए रोटी से आप सैंडविच भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बेहद स्वाद लगते हैं। इसी तरह आपको बचे हुए चावल से नई रेसिपी बनाने की टिप्स देती हूँ। चावल के पकौड़े, चावल को आप फ्री करके करके खा सकते हैं और फ्राइड राइस भी बना सकते हैं उसको, और फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं और बेहद स्वादिष्ट लगते हैं।
0: और हम गीत

0: बार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अंशी पाठ।
2: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती बेचारा।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप ही की बातें हैं, आपकी ही पसंद है, आप ही की यादें हैं और आप ही की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैम, सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महाबोध उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं?
1: जी मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी मैम अभी तो खाली है, बस आपका सीजन चल रहा है अभी।
0: अच्छा
1: जी अभी गांव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेते हैं।
0: जैसे क्या काम कर रहे हैं गांव में? कौन सा गांव है आपका?
1: जी मेरे गांव का नाम कीरतपुरा।
0: कीरतपुरा।
1: जी
0: अच्छा, कैसा है आपका गांव? अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको?
1: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे ही तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा
1: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
0: अच्छा ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं।
1: जी मैम वहाँ पर उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे पे, गर्मी के सीजन पर उनको इतना पसीना निकलता है।
0: अच्छा अच्छा
1: मेरी आपसे 2 महीने पहले बातचीत हुई थी।
0: अच्छा कब हुई थी?
1: जी मैम 22 जून को हुई थी आपसे।
0: अच्छा आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख?
1: नहीं मैम तारीख याद है, तो आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
0: बहुत सुंदर। किस तरह के कार्यक्रम सुनते हो विविध भारती में? कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: जी आपका इस सखी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है, यानी आपको साइंस पसंद है।
1: जी मैम।
0: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है ना, ज्ञान विज्ञान को
1: जी जी
0: लेकर।
1: मैम।
0: और सखी सहेली
1: जी
0: में
1: मैम।
0: आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा?
1: जी मैम हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती पर, तो हम तो बचपन से ही सखी सहेली सुन रहे हैं, और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से ही मिले लेनी चाहिए।
0: हाँ ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना।
1: जी
0: तो कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने? जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
1: जी मैम खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
0: खाना खाना आता है बस, है ना?
1: जी मैम।
0: हाँ, और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज पानी ज्यादा डाल दिया, आज तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी,
1: नहीं
0: ऐसा?
1: मैम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है?
1: जी मैम फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार।

0: करें।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो फरमाई।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल
0: हाँ जी जी बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: रहे हो? मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगारे बात कर रही हूँ दीदी। 3 महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को। 3 महीने से आपके साथ ही बात हुई हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगारे
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: मुझे गाना सुनना है दीदी। आप कैसे हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करे दीदी का। मेरी बेटी आई थी कल, तो उन राखी बांधने के लिए तो मेहमान का खाना बनाया दीदी। जो आए थे अपनी मेरी मम्मी पन आई थी। हाँ
0: अरे वाह,
1: बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने। थक
0: थक गई फिर।
1: गई। आज मेरा भैया पन आए थे।
0: अच्छा, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो? विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी हम तो रेडियो सुनते ना दीदी। हेलो फरमाइश सुनते हो दीदी?
0: अच्छा,
1: हाँ चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ।
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती।
1: चालू रहता है सुबह हमारे अमरावती केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ
0: हाँ
1: और 11 बजे से हमारा विविध भारती चालू रहती है।
0: अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी मेहमान के लिए।
0: पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: आओ दीदी खाने को। आओ
0: हाँ, अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना पूरन पोली खाने मुझे।
1: ना आओ ना, अभी अमरावती आएगी ना हमारे घर आना दीदी।
0: पक्का पक्का, बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं, मेरे को तो थकान रोज इतनी रखती दीदी। रोज मैं काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोता पोती है
0: हाँ,
1: उनको इससे ले जाना, छोड़ना, लाना, ये सब मैं करती हूँ दीदी।
0: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ तो।

0: जाती दीदी। हाँ
1: हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
0: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी,
1: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
0: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: दिल में कैसा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
1: हेलो।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, न कोई फरियाद, न कोई नुमाइश की, जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश की।
1: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
2: मंदाकिनी जी से।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
2: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं।
2: जी जी।
1: क्या कर रही हैं इन दिनों?
2: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
1: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
2: धनी बैग का काम है।
1: बैग का?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
2: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
1: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
2: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके तुझे से, फिर राजा रंग का, फिरकी वाली, बहुत सारे गाने मैडम उनके तो
1: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
2: घर का नाम बबलू है मैडम।
1: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
2: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
1: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में, आपके माता पिता खिलौने लाके देते थे आपको?
2: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
1: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए?
2: वो गाड़ी आती थी 4 पहिए की प्लास्टिक की।

0: वो और बंदूक आती थी वो।
1: लड़के लोगों के पास बंदूक नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जभी तो हमने जानना चाहा।
0: चाबी की मोटर आती थी ना जो उसको चलाते थे अपन।
1: हाँ,
0: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी।
1: उसको देखकर तो मजा आता
0: बचपन की यादें में कहीं बोला नहीं सकता मैं।
1: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों की बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे, आपके बच्चे हैं क्या, लाके देते हैं उनको खिलौने लाके देते हैं?
0: शादी नहीं मेरी।
1: अरे आपकी तो शादी नहीं हुई। चलिए तो आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए बच्चे हो जाए तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
0: जी, सही है।
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए।
0: फिल्म का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके कब चंदनिया गर्मा गरी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: का जानू मैं सजनिया, का जानू, का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। कैसे
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
0: हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को, प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए। इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने की टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, कि खाना अलग अलग जो किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन हैं, तभी आपको वो पसंद है।
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ। सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ
1: मैडम।
0: कैसे
1: जैसे कि
0: बटाते हैं?
1: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू। ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है।

0: और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ।
1: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
0: मैडम जी ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
1: सही बात है ना। और जिनको खाने का शौक होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना।
0: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ। मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना,
1: हाँ
0: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं। क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है, पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन हैं उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन है, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए है ना, स्ट्रीट फूड चाहिए। तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
0: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकाल जाती है, शाही सवारी,
1: अच्छा हाँ
0: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है। बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
1: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
0: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब नहीं 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए हैं।
1: बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
0: जी जी मैडम,
1: जी तो बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
1: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में। चलिए,
0: जी मैडम।
1: आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी,
0: अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, 1 घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ मतलब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग हैं, जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: इस बात ठीक है, जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने,
0: आपने पत्र लिखा मनचाहे गीत में।
1: बिल्कुल छुट्टियाँ बहुत जारी है, लेकिन इसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने 1 ही दिन कर दिया, ये आप 2 दिन ही किया जाए, क्योंकि
0: चलिए, तो आप प्रिंटिंग
1: इसमें
0: प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्शन देते हैं, जैसे मतलब हमारे पास 2-3 कारीगर है, और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो। फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है, ये
0: हाँ, ये सभी
1: सब
0: कार्यक्रम आपको
1: कार्यक्रम।
0: पसंद हैं, बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो बताइए, आज
1: ये
0: कौन सा
1: मेरा
0: गीत
1: गीत
0: सुनवाएं?
1: आज गीत है, ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, जो के जय किशन साहब की पुण्यतिथि है,
0: जी,
1: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वो अलग ही सुनवा दीजिए, और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
0: चलिए, तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: झूमता माँ

0: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
1: दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
0: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम। जी
1: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहां तक याद
0: मैडम
1: आ रहा है।
0: बिल्कुल, 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
1: चलिए, तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा
0: जी
1: हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका
0: बहुत ही बढ़िया
1: शहर?
0: है मैडम,
1: आपका शहर बताइए
0: बहुत ही
1: उदयपुर।
0: बढ़िया एकदम मैडम।
1: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
0: बारिश अभी हुई नहीं है 1 महीने से, कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है
1: बिल्कुल सही
0: अभी,
1: कहा।
0: और आसार है, झीले अभी खाली है। जी
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती। लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने।
0: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम, फिर
1: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना।
0: भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
1: हाँ, खैर, घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है?
0: जी अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन, महाकाल की नगरी,
1: अच्छा।
0: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया, बड़ा ही अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
1: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके, जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने?
0: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुंचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ, है ना।
0: अभी वापिस से मानस बन रहा है इसी महीने में।
1: चलिए, तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे। कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
0: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है, फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है खोए।

0: हेलो।
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान है। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं?
1: मंदाकिनी मैडम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जला कर तो देखो, मोहब्बत की समा तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिला कर तो देखो।

0: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरे मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है, जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतनी खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूं मैम।
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: अपनी जगह जो है बदायूं, इसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन इसके बारे में क्योंकि हम कभी आए नहीं हैं, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर।
1: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है जो दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहां पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
0: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो
1: जी मैम
0: काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्तजन आते
1: बिल्कुल
0: होंगे इस
1: मैम, यहाँ पर
0: विश्वास के
1: टूरिस्ट
0: साथ।
1: मैं जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं, जो श्रद्धालु ज्यादा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
0: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहां तक पहुंचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े
1: जी
0: हुए?
1: जी मैम, मैं वहां पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
0: खैर चलिए, इतना फायदा
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
1: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते
0: हाँ
1: हैं, क्योंकि
0: हाँ
1: उनकी जो दुखद समस्या है वो सुनाने के लिए गुरुजी को
0: जी
1: रहते हैं।
0: जी वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और वहां लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
1: वैसे तो मैम मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
0: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी
1: मैम,
0: बात है।
1: हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लव गुनगुन शुभ अमेरी वाय सरता।
0: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए अब कौन सा गाना
1: मैम
0: सुनेंगे।
1: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, और इसमें बेहतरीन से नगमा तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: तेरी

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो,
1: नमस्कार। जी
0: नमस्कार। हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से,
1: जी जी मैम, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से। मैं
0: भोपाल से। राम बाबू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी, भैया, भाभी, परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो, कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना।
1: जी,
0: तो
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जिस प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में, और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए आपसे, मतलब बात करी ना उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ अभी।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए। बोले का है, मतलब वहां का डाल दीजिए। जी, वहां डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैम ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको। बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती तो। हाँ जी जी जी बिल्कुल। उनने दोनों मैम ने, मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा था, उन दोनों ने लिया एड्रेस। बोले हम भी डालेंगे पत्र,
0: क्या
1: हम भी बहुत
0: बात है।
1: सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम। बोले ठीक है। हाँ
0: उन्होंने ऐसे कहा जो
1: जी
0: पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं। हाँ
1: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं, और
1: जी
0: जिंदगी
1: जी
0: बन गई है विविध भारती आपकी, है ना।
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे, जब से रेडियो चालू हुआ, जब से हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है। हाँ
0: अरे
1: जी।
0: अच्छा, आपने
1: और हमारा
0: अपने
1: बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की कोई
1: जी
0: बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए तो वो नहीं है, शांत हो गए थे। अपने
0: अच्छा, आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: ये ड्राई क्लीन का, लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है। आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है। जी
0: चलिए, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और
0: आइए
1: मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
1: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड से।
0: हाँ जी देगलूर।
1: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष
0: तो हम
1: जी?
0: अभी हाँ जी अच्छे हैं मैम।
1: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या
0: तो
1: करते हैं आप?
0: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे हैं तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो
1: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है। पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
0: बिल्कुल जी, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
1: अच्छा,
0: गाँव वाले
1: कंपाउंडर की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
0: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
1: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है, बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे, उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना? बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गाज सब लगाना ही पड़ता है ना?
0: बिल्कुल सही बात है। तो
1: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है।
0: हमें पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
1: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना? और जब अंतिम दिन उन्होंने
0: बिल्कुल
1: जब
0: जी बिल्कुल
1: कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
0: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें ये सब करना पड़ता है हमें।
1: हाँ
0: हाँ बराबर पहचाने। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम और जब अच्छे होते जाते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है हमें। तो
1: लेकिन उसका इलाज करते
0: मैं
1: समय कठोर
0: हाँ
1: बनना पड़ता है ना?
0: बिल्कुल बनना तो पड़ता है मैम।
1: जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: हाँ जी मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: तो ये
1: पसंद का
0: गीत
1: गीत।
0: हाँ जी ये गीत सुना गया। धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: हेलो फरमाइश। ये हाँ, रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। कई
0: अच्छा, स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली पलो परमाइश, हा, इतना मनोरंजन, यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है। कई
0: क्या बात है कितना
1: आप देखिए, हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम आखिर ग्रुप में ऐसा काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सखी सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है। कई
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदाकिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है। जो कि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। चाहिए।
0: चलिए, अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ, चाहिए आपकी बात, आपकी आवाज, यानी हमारा रिजित भारती। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए, हमको भी समझो कुछ होता होने नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा। हमें इसकी खुशी हो रही है कि जिसकी हद नहीं। हाँ
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही
1: जी
0: दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ जी हाँ, भाई इसकी
0: अच्छा जी,
1: प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति मैं लेने चाहिए।
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नए मंजिले ये नए रास्ते कांटों से है इसे बचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं?
1: जाते
0: परभणी
1: हैं
0: में रहते हैं?
1: परभणी। जी हाँ, परभणी में रहते हैं
0: तो अपने शहर के
1: और
0: बारे में थोड़ा
1: हम
0: बताइए हमें। परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी अच्छे नागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है जहाँ का उर्स के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं। और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है। चाहे वो परवने हजरत तुराबुल शाह दरगाह का उर्स यानी मेला,
0: बिल्कुल
1: ये हर
0: बिल्कुल।
1: 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परवने
0: हाँ
1: शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है। सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का
1: और
0: गीत।
1: वैसे बहुत धन्यवाद।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंकुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघविंद्र सिंह नेगी।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: नमस्कार, किसान वीरो ते भैनों, वीरपाल कौर धालीवाल वालों तुहाडा अज दे प्रोग्राम किसान वाणी विच हार्दिक स्वागत है। साडे अज दे इस प्रोग्राम विच गल्लबात दा विशा रहेगा सितंबर महीने विच लगण वाले फलदार बूटियां दी सांभ संभाल ते नुक्ती। अते इस विषय ते साडे नाल गल्लबात करनगे श्री जिला श्री मुक्तसर साहिब दे सफल ते अगां वधु नर्सरी पालक राजेश शर्मा, जो कि रवायती खेती तो हट के अगां वधु ते नवेकली सोच नाल वध मुनाफा कमा रहे हन, ते उन्हां नाल मुलाकाती ने कुलविंदर औलख। तां आओ सुनदे हां सिद्धी गल्लबात।
5: आकाशवाणी एफएम बठिंडा, एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते मैं हाजिर हां कुलविंदर औलख। मेरे वालों सारे किसान वीरां ते किसान भैरां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। किसान वीरो, अज दे प्रोग्राम किसान वाणी दे विच असीं जानकारी देनी है तुहानूं सितंबर महीने दे विच लगण वाले फलदार बूटे ते उन्हां दी सांभ संभाल दे बारे। इस विषय दे उपर गल्लबात करन दे लई मैं खास मुलाकात करन पहुंचा होया जिला श्री मुक्तसर साहिब श्री महेश नर्सरी चलाउण वाले नौजवान किसान भरा राजेश कुमार होरां पास। आओ सब तो पहला असी इन्हां दा अपने आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रोग्राम किसान वाणी दे विच स्वागत करदे हां, ते बाद विच सितंबर महीने दे विच केड़े बूटे असी ला सकदे हां ते उन्हां तों वधिया असी किवें फल लैणा, ओह आउण वाले समें दे विच चंगी गुणवत्ता दे आधार ते फल दे सकण, तां असी उहदी सांभ संभाल किवें करनी है, इस तमाम नुक्ते उन्हां दे पासों असी लवांगे। तां राजेश जी, सब तों पहला तुहाडा स्वागत आ साडे प्रोग्राम किसान वाणी दे विच।
6: सर, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदे आं, थैंक यू जी, तुसीं साडे कोल जे जानकारी लैण लई पहुंचे हो, धन्नवाद करदे आं।
5: तां राजेश जी, सब तों पहलां इह दस्सो तुसीं वी जिहड़े सितंबर महीने दे विच लगण वाले फलदार बूटे आ जी, असीं किहड़े किहड़े बूटे फलदार सितंबर महीने दे विच असीं ला सकदे आं।
6: सर, तुहानूं असीं डिटेल दे विच दस्सदे आं, जदों सावण यानी कि अगस्त महीना शुरू हो जांदा उदों बूटे लगाउण दा सही मौसम आ जांदा, क्योंकि उदों मानसून शुरू हो जांदा ते हवा दे विच नमी आ जांदी है ते जो बूटे लगाउण दा सही समां आ जांदा। जिस तरह सावण लंघदा जांदा जां अगस्त महीना लंघदा जांदा, जिस तरह सर्द मौसम आवेगा, ज्यादा सर्द आ जाएगा उदों जो बूटे दी ग्रोथ है ओह घट जाएगी। जिस तरह हुण गर्मी है, हुण तुसीं देख सकदे हो कि जो सितंबर महीना चल रहा हुण तकरीबन एक महीना थोड़ा जा गर्मी है, तो हुण तुसीं बूटे लगा सकदे हो, ते जिवें जिवें सर्दी वधेगी उवें मैं जो तुसीं प्लांट लगाउण दा समां तां लग बणिया रहेगा, पर जो बूटियां दी ग्रोथ है ओह थोड़ी जी घट जाएगी।
5: तां किहड़े किहड़े फलदार बूटे आ जी, उहनां दा नां लै के जरूर दस्सो सानूं वी इहनां दा हुण जे असीं लावांगे ढुकवां समां वधिया ग्रोथ करनगे, वधिया चलणगे।
6: हांजी, बूटे आ जी, बूटे तुसीं कोई वी ला सकदे, क्योंकि हुण फलां वाले बूटे आ जी। हुण साडी नर्सरी असीं चला रहे हां ते सानू खुद महसूस हो रहा कि पहले नालों लोकां दी बहुत अवेयरनेस वधी है, बहुत लोग जो फ्रूट आले बूटे है लगाना शुरू कर दिता उन्होंने, ते जो भी फ्रूट आले बूटे है वह लगा सकते हो तुसीं कोई, क्योंकि सारे बूटे इको कैटागरी दे, पर जे खास कर जे कुछ बूटियां दी गल की जाए वह जंगली बूटे होंगे, जिस तरह असीं गल करिए जिवें नींबू का बूटा जी, अमरूद का बूटा जी, किन्नू का बूटा, ते यह कुछ क बूटे होंगे जो जंगली वरायटी दे विच आ जाते हैं, ये ज्यादातर 99% हो जाते हैं जी, बहुत घट चांस होंगे कि बूटे मरते हैं, ये वधिया ग्रोथ कर जाते हैं। जिस तरह नींबू तुसीं लगा सकते हो, अमरूद का बूटा लगा सकते हो, अंब का बूटा लगा सकते हो, किन्नू का बूटा लगा सकते हो, मौसमी का बूटा लगा सकते हो, जो खट्टियां वरायटियां नींबू, किन्नू, मौसमी, माल्टा, संतरा, ये जो खट्टियां वरायटियां ये अपने पंजाब दे विच बहुत वधिया इन्हां दा रिजल्ट है, ये लगा सकते हो तुसीं
5: जी। तो भाई जी, तुसीं तां बड़ा तजर्बा तुहाडा, बड़े पुराने हो तुसीं इस लाइन दे विच, तां इस वेले अपनी नर्सरी दे विच मैं देख रहा भी आसे पासे बहुत जिहड़ियां ओह वरायटियां वख वख फलदार बूटियां दीआं

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।

0: चलने में भी दिक्कत हो रही है, अपने से साथ वालों से वो थोड़ा धीरे चलता है, बैठे बैठे भी सांस फूलता है।
1: जी जी
0: इसके कारण जो होते हैं, जैसे मरीज धूम्रपान कर रहा है
1: हाँ
0: या फिर कुछ अडल्ट ऑनसेट भी होता है, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब कारण हो सकते हैं। अस्थमा जो है वो एलर्जिक होता है, जैसे साथ में कभी कभी मरीज को नाक से पानी बहना,
1: जी
0: छींके आना, आंखें जल जाना, या फिर घर में किसी को हो, जैसे माँ को है, दादी को है, तो हेरिडिटरी जेनेटिक भी हो सकता है।
1: जी
0: और पॉल्यूशन इतना ज्यादा कॉमन है, उसके चलते भी अस्थमा ट्रिकर कर सकता है। अस्थमा जो है वो ट्रिटेबल, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं इन दोनों ही बीमारियों को। जैसे आपको साए साए सीटी जैसी आवाज आ रही है, मरीज बहुत बार मेरे पास ओपीडी में आता है, बोलता है डॉक्टर साहब छाती से ना साए साए की आवाज आ रही है, छाती बहुत भारी भारी लग रही है, और
1: जी
0: कुछ नहीं है मेरे को, बस भारी लग रही है। फिर बोलते हैं कि अरे भारी लग रही है मतलब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है,
1: कंसल्ट
0: प्लीज
1: कर
0: आप, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप डिले मत करो, क्योंकि पेशेंट कोई भी बीमारी हो, अगर आप सही टाइम पे आएंगे तो किसी भी बीमारी का सही से इलाज हो सकता है, और छाती की बीमारी के लिए छाती के डॉक्टर के पास ही आना चाहिए।
1: जी। मैम एक कॉलर साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, अपन ना गल कर लिए। हेलो
0: हाँ, सत
1: सत श्रीकाल जी,
0: श्रीकाल
1: कौन बोल रही है तो कित्थों
0: जी,
1: बोल रहे
0: मैं
1: हो?
0: मिठू सिंह। हाँ जी, मिठू सिंह बोल रहा जी, मेरा नाम पिंड शेखपुरा जी,
1: हाँ जी, की
0: नंदी
1: सवाल
0: देते
1: करना है जी?
0: बठिंडा। हाँ
1: डॉक्टर
0: जी,
1: साहब बैठे हैं, करो सवाल।
0: सत श्री अकाल डॉक्टर
1: सत
0: साहब।
1: श्रीकाल।
0: ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਉਲਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ,
0: ਹਾਂ,
1: ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ।
0: ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਫੜੋ ਮੇ ਹਵਾ ਭਰ ਗਈ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਈ ਹੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੁਆ ਥਾ?
0: ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀ,
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
0: ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
0: ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਪਾਇਪ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ।
1: अच्छा अच्छा हाँ,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: उसके लिए
0: हाँ
1: मैं एक आपको सलाह दूंगी, आपको एक बार है
0: जी,
1: ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, फूंक की जांच, उससे पता चलेगा कि कितनी कैपेसिटी है, क्या दिक्कत है, और एक एक्सरे करवाना चाहिए
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: डॉक्टर से कंसल्ट करके, ठीक है, छाती के डॉक्टर से।
0: ठीक है जी।
1: हाँ डॉक्टर साहब, जारी रखते हैं अपने इस प्रोग्राम नु ते। दसो, मैं अगला क्वेश्चन थोड़े तो पुट कर रही हूँ कि फेफड़िया दी गंभीर बीमारियां विच निमोनिया ते टीबी भी शामिल है, ठीक है, ते इन्हां दे शुरुआती लक्षण केड़े केड़े हुंदे हन, ते केड़े लक्षणां नु बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिदा, इहदे बारे दसो।
0: जैसे मरीज का वेट लॉस होना है ना, खाना नहीं खा पा रहा है सही से, एपेटाइट एकदम कम हो गई है, पहले जैसे 4 रोटी खा रहा था अब 2 ही रोटी खा रहा है, फिर या फिर खांसी में खून आना, बलगम आना, मरीज बहुत बोल रहा है कि हम मुझे शाम को हल्का सा बुखार रहता है, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं, आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए, छाती के डॉक्टर चेस्ट फिजिशियन को आके दिखाइए।
1: जी अगला सवाल है जी, बदलदा मौसम जिवें धूड़ हो गया, धुआं हो गया, अते होर प्रदूषण जिवें, है ना, सब सानू पता लगता है, ते लोकां नू सांह दी एलर्जी हो जाती है, ये समस्या बहुत वेखण नू मिलती है अजकल लोकां विच, ते इस तो बचण लई लोक रोजाना केड़े केड़े सावधानियां वरतन जिन्हां नाल ये थोड़ा बहुत रिलीफ मिले उन्हां नू?
0: सबसे पहले तो खुले वातावरण, सुबह सुबह वॉक करना चाहिए,
1: जी
0: वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप प्यूरिफायर, घर में आप प्यूरिफायर भी लगा सकते हैं, जैसे अपन अपना जो शहर है यहाँ पे प्रदूषण रहता है, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो आप ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं, आप बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, जैसे पीक टाइम जो होता है ट्रैवलिंग का या कुछ भी गाड़ी वगैरह का, वो दोपहर का शाम का होता है, तो उस समय थोड़ा सांस वाले मरीजों को अवॉइड करना चाहिए, खुली जगह में जाना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस में मरीज को नहीं जाना चाहिए।
1: एक कॉलर साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, आपां गल करदे हां। हैलो,
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
2: ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ
2: ਹਾਂਜੀ,
1: ਹੈ ਤੁਸੀਂ?
2: ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਰ।
0: ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ।
2: ਮੈਡਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ,
0: ਹਾਂ
1: ਜੀ,
2: ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛਾਤੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਲਗਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ।
0: इसके लिए आपको एक बार कंसल्ट करना

0: पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं पता चल सकता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। छाती को सुनना भी पड़ता है कि क्या आवाज, सीटी जैसी कुछ आ रही है, कुछ और है, कोई
1: चलो एक
0: दिक्कत तो
1: सवाल हो
0: नहीं।
1: रहा है जी मेरा, ये मैं इनके रेडियो पर सुन लूंगा कि जो इनके लंबा सांस लेना है, भी लंबा सांस लेने से क्या फायदे हैं?
0: लंबा सांस लेने से क्या होता है कि हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया होती है ना,
1: ठीक है
0: तो उससे लंग्स खुलने में आसानी रहती है।
1: मैडम, मैं एक एक मिनट सांस इनको रोक लेता हूँ।
0: जी डॉक्टर साहिबा, मतलब एक गल होर पूछूंगी। जो तुसीं एक वर्ड यूज किया सीगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, है ना, एक तो इसकी फुल फॉर्म सानू क्लियर करके दसो भी ये चीज की है, ते एक जेडे टेस्ट है वो केड़े टेस्ट करवाने चाहिए ने ते कदों कराने चाहिए है, ये भी दसो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है वो लंग कैपेसिटी बताता है अपनी
1: जी
0: फेफड़ों की। जैसे मरीज बोलता है कि है ना मेरी कैपेसिटी कितनी है, क्या है, तो उसके बेसिस पे गाइडलाइंस होती है। उसके बेसिस माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एस्मा और सीओपीडी जो बीमारियां मेनली है उनके लिए देखा जाता है।
1: जी
0: तो इसका जो होता है स्पायरोमेट्री एक होता है, जैसे स्पायरोमेट्री हो गया, डीएलसी हो गया, बॉडी प्लेथोमोग्राफी हो गया, बट मेनली जो है इसमें स्पायरोमेट्री आता है जो आपको करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि लंग कैपेसिटी कितनी है और कितने मतलब प्रतिशत आपके फेफड़े काम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं थोड़ा ये पूछूंगी कि एक टीवी रोग बारे बहुत सुनिया है ना, एक हवा जा बनिया हुआ है भी टीवी रोग है गया, मतलब आम लोगों च हो जाता है तो उस तो दूर रहना शुरू कर देंगे लोग, है ना, तो ये बारे पता किमें लगता है, ये लक्षण की होंगे है ये बारे भी दसो।
0: जैसे टीबी दो तरह का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी।
1: जी
0: पल्मोनरी मतलब छाती का,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: बाकी छाती को छोड़ के जो होता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है।
1: ओके okay.
0: जैसे खांसी, सूखी खांसी आना, लंबे समय से आना, 2 हफ्ते से ज्यादा आना, वजन कम होना, जैसे हल्का सा बुखार रहना, कमजोरी रहना, भूख एकदम कम लगना, वजन बहुत ज्यादा ही कम हो जाना, ये सब टीबी के लक्षण है। और कभी कभी मरीज खून भी आता है खांसी में उसको, या पेट का अगर अपन टीबी बोलेंगे तो मरीज को पेट में दर्द हो रहा है, कुछ पच नहीं रहा है, दस्त हो रहे हैं, ये सब कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए समय पर आना बहुत जरूरी है, जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि टीबी भी बहुत तरह के होता है, छोटा टीबी, बड़ा टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट, ड्रग सेंसिटिव टीबी।
1: ओके अगला सवाल पूछूं तो पहले एक स्रोते ना गल कर लेने हैं। हेलो सत
0: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो तो कितों बोल रहे हो?
1: पुच्चो कला तो मिठू सिंह बोल रहा है जी।
0: पुच्चो कला तो मिठू सिंह जी बोल रहे हो, की सवाल है मिठू सिंह जी दसो।
1: मतलब थोड़े देर तो ना पता नहीं सा, मतलब सारी पुरानी गल है, पुराना सा ते हुण इह ना सा जी घट तो घट भी 8-7 सालां उत्तों नहीं पै गया जोर। पहला तो जवानी का जोर सी, तुरे फिरे, हुण जब ज्यादा तो सा मतलब हो जाता जी, छाती जाम हो जाती है, बलगन हो जाती है, बिछलानिया मारती है छाती, है जी।
0: हाँ
1: फिर
0: जी
1: दवाई दवाई लैके बस टाइम टपाने, कोई होर
0: जी जी
1: पक्का
0: जी
1: इलाज
0: जी
1: हुंदा जी।
0: जी डॉक्टर साहब दो जी जवाब। इसको ऐसी जो बीमारी होती है ये ऐसे नहीं बता सकते हैं कि क्या कारण है क्या नहीं, क्योंकि इसका पूरा निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है।
1: इतना जी मैं दाखिल भी रहा, मतलब टेस्ट टूस्ट उन्होंने कोई छड़े नहीं, कोई टेस्ट बीमारी नहीं होती, मतलब नुकस नहीं आता, कला ही इनू फंगत बोलते हैं जी। हाँ जी
0: इन्हां नूं बलगम दी शिकायत है ते
1: हाँ जी,
0: खांसी
1: फंगत
0: लगातार
1: पहला
0: आंदी है डॉक्टर साहब, वो दसो।
1: मेनू फंगत हो गई सी जी, फंगत की
0: हाँ
1: बोल
0: जी
1: रहे हो?
0: तो इसके
1: हाँ जी
0: लिए तो एक बार मतलब ऐसे इस पे नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं, आपको एक
1: हाँ
0: बार
1: जी, किथे
0: दिखाना ही पड़ेगा।
1: जी? हुने लाया रेडियो में, बडियाल
0: बड़ियाल हॉस्पिटल।
1: हॉस्पिटल जी,
0: हाँ
1: ठीक
0: जी बडियाल हॉस्पिटल बठिंडा।
1: है जी। कहे तो कहे
0: मैं वहां पे 10 से 3 बैठती हूँ, और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो 24/7 रहती है, हमारी पूरी टीम है।
1: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी थोड़ा फोन मिलाने दे ले जी। डॉक्टर साहब अगला सवाल है जी, मतलब जिवें कई व्यक्ति कई लोगों नूं लगातार खांसी, फिर सांह फूलना, फिर सीने विच जकड़न, बलगम भी आउंदी है, ते थोड़ा जा काम करन नाल थकावट भी महसूस हो जाती है, ते उन्हां नूं मतलब सोचदे रहंदे उन्हां नूं कदों डॉक्टर कोल जाना चाहिदा है।
0: जैसे मरीज को है ना कभी कभी वेट करता है कि है ना आज
1: हाँ जी
0: गया
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: थोड़ा सा नहीं, आज
1: जी
0: ही तो फूला है,
1: जी
0: फिर अगली सर्दी वापस हो गया उसको, फिर अगले पराली के सीजन में उसको वापस हो
1: हाँ
0: रहा है, उसका
1: जी
0: दम घुटने लग गया। इतना
1: जी
0: वेट नहीं करना है, एटलीस्ट सेकेंड विजिट तक तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लेना है ताकि आपकी बीमारी कंट्रोल हो सके।

0: जी, जिवें साडे इलाकें च तां आम जी गल है मैम भी धूड़ मिट्टी, वाहनां दा धुआं, पराली जां होर किस्म दा धुआं नाल साह ते सेहत नूं बहुत प्रभावित हुंदी है इह चीज़ां, है ना। उहदे नाल साह औखा आंदा हैगा ते आम लोग अपने फेफड़िआं नूं धुएं ते प्रदूषण तों बचाउण लई की कर सकदे हैं, इहदे बारे भी दस्सो प्लीज़।
1: धुएं के प्रदूषण, और उसके लिए देखो सबसे पहले तो ये आजकल पेड़ वेड़ काट देते हैं, पेड़ लगाओ,
0: जी
1: है ना। और दूसरा ये है, जितना हो सके पैदल चलो, साइकिल यूज करो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो, इलेक्ट्रिक कार्स यूज करो, मतलब इससे पोल्यूशन कम होगा।
0: जी
1: मेनली हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। और साथ में जो सांस वाले बीमारी वाले मरीज हैं, उनको जैसे मास्क लगा के जाना चाहिए कहीं जा रहे हैं तो क्राउडेड प्लेस में। और दूसरा, आप ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं, प्यूरिफायर लगा सकते हैं, ठीक है।
0: जी डॉक्टर साहब जी सलाह दे रहे हैं, प्लीज कृपा करके उन्होंने बहुत ध्यान नाल सुनो। ते एक कॉलर साढ़े नाल जुड़ चुके ने, करते हैं गल उन्हां नाल। ठीक है जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल ही पूछ लेने हैं जी थोड़े तो। सेहतमंद फेफड़े लिए कहिंदे कसरत, सैर, सही खुराक ते सरगर्म जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण हुंदी है, ते किन्नी क महत्वपूर्ण हुंदी है इहदे बारे तुसीं दस्सो कि रोजाना सैर या कसरत करन नाल साह दी समर्था बेहतर हुंदी है और किवें मदद करदी है इह चीज़।
1: हाँ, हमेशा कसरत, जैसे सांस के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करते
0: जी
1: हैं, गुब्बारा फुलाना, इससे लंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है। लेकिन ये सारे मरीज नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक ही होते हैं वो करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे आप जा रहे हो सैर करोगे तो आपकी लंग कैपेसिटी से आपका फिजिकल भी ठीक होगा, आपकी बॉडी को स्टैमिना मिलेगा, और आपको पता तो चलेगा कि मैं कितना वॉक करता था पहले और अब कितना करता
0: जी
1: हूँ,
0: जी जी
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: जैसे अभी पहले 100 मीटर करता था, फिर मैं 20 मीटर कर रहा हूं, तो इससे आप कैसे बता पाओगे डॉक्टर को, नहीं मैं तो ठीक चल रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, मेरे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो 3-4 किलोमीटर चल लेता हूँ। अगर आप 3-4 किलोमीटर चल पा रहे हैं तो इट्स गुड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल रहा है और हो रहा है, तो हो सकता है ये हार्ट डिजीज के कारण भी हो सकता है और लंग डिजीज के कारण भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप स्पेशलिस्ट जो होते हैं, लंग स्पेशलिस्ट हुए, कार्डिक वाले हुए, उनको दिखाएं और पता करें कि हार्ट के कारण है या लंग्स के कारण है। ये चीज हमेशा मरीज को ध्यान रखनी चाहिए। अभी जैसे ये पराली का सीजन आएगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, बहुत
0: जी
1: ज्यादा दिक्कत होगी सांस की,
0: जी
1: और एक फफूंदी की बीमारी बहुत ज्यादा है पंजाब में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, खेती, गाय भैंस
0: जी
1: एक्सपोजर, कैटल एक्सपोजर है, एबीपी, फंगल निमोनिया बहुत कॉमन है। तो उसी के लिए मैं बोलना चाहूंगी, दवाई टाइम पे लो, पहले तो टेस्ट होना बहुत जरूरी है सही टाइम पे और सही तरह से, तभी जाके मरीज दवाई लेगा और वो सही होगा।
0: जी गलबात एवं जारी रखते हाँ, ते उस तो पहला सुनते हाँ कुछ संदेश।
2: छाती अते साह दीआं तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, साह चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज, बड़ियाल हस्पताल, नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: छाती अते साह दीआं तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, साह चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज, बड़ियाल हस्पताल, नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: हाँ जी श्रोत्या, फिर तो श्रोत्यो फिर तो जुड़ते हाँ कि आप इस प्रोग्राम से सवाल पूछते हैं अगला डॉक्टर साहब तो। डॉक्टर साहब, मेरे मदर नू भी ना बीए साह की प्रॉब्लम है, तो जो कुछ भी खाते है जिमें कोई चीकना खाते है या कुछ खट्टा खाते है तो उन्होंने उदो ही मतलब दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं ये पूछना चाहती भी वह कैप्सूल लेंदे है एक जो सह वाला होंगे है ना, भी वह लेंदे है कि वह लेना बेनीफिट है या ये बार बार क्यों हो जाता है?
4: देखो जो सांस आप जो बोल रहे हैं कि उनको डकारें आती हैं खट्टी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वो एसिडिटी जो होता है रिफ्लक्स, हाँ हाँ। वो ट्रिगर करता है इस चीज को, सांस को। तो कभी कभी क्या होता है जो सांस संबंधित बीमारी थी, हो सकता है शायद उनको हल्की खांसी भी आती होगी,
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: तो वो एसिडिटी के चलते हो रहा है, हाँ, तो
3: छाती जाम ही हो जाती है, मतलब
4: उनको एसिडिटी का भी है, GERD करके, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी है। तो इसके लिए क्या होता है, उनको एक तो खाना जो है, मतलब मैं सभी श्रोताओं को भी बोलना चाहूंगी, खाना ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, है ना। ब्रेकफास्ट से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, हम जो भी एक्सपोजर है वो हम इतना नहीं ले पाते हैं और बीमारियों का। और दूसरा ये है कि मिर्च मसाले कम खाने चाहिए ऐसे मरीजों को, स्पाइसी कम खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सांस की बीमारी से ग्रसित है, साथ में उनको एसिडिटी और ट्रिगर कर रहा है, तो इससे बीमारी बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि खाना बीच बीच में फ्रिक्वेंटली ना खा के मील्स छोटी करें, और रात में खाना ना खाएं, बेड पे जाते ही नहीं सोना है, एटलीस्ट खाने और बेड में सोने का डिफरेंस जो है 45 मिनट्स का होना ही चाहिए।
3: लेट नाइट खाना नहीं चाहिए। परहेज कितना चीजें रखना चाहिए?
4: परहेज मिर्च मसाले मत खाओ, और रात में लेट नाइट खाना मत खाओ,
3: हाँ जी।
4: चाय कम पियो, चाय के बहुत शौकीन है अपन,
3: दो टाइम पींदे हैं चाय,
4: हाँ, तो चाय के साथ फिर कुछ नाश्ता ले लो हल्का, ठीक है।
3: ठीक है, एक कॉलर साडा जुड़ चुके, पहले उन्होंने गल कर दिया। हेलो,
5: हेलो,
3: हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोलते हो, कितों बोलते हो?
5: रायपुर तो बोलते हैं मैडम।
3: हाँ जी, पूछो सवाल, की पूछना? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
5: हेलो,
4: हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल।
5: रायपुर तो बोल रहे हैं,
4: हाँ हाँ हाँ, बोलिए।
5: हाँ जी, हाँ जी, वो छाती दर्द ना प्रॉब्लम जी थी मारी जी डैडी नो।
4: क्या दिक्कत हो रही है?
5: हाँ जी, वो माड़ा मोटा बस जान के भी थोड़ा जा टेस्ट ECG कराया सी गा सी, इको। हाँ जी, हाँ जी, इको दे विच ना थोड़ा फेफड़े कमजोरी जी, वीकनेस जी आई हैगी प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उदा करके ना थोड़ा जा भी जान के भी साह जा चढ़ जांदा हैगा कई वारी।
4: उम्र क्या है?
5: उम्र तो 75 साल है जी।
4: अच्छा अच्छा, हाँ जी, और पहले कभी जैसे हार्ट के छल्ले डले हो ऐसा कुछ हुआ है? बीड़ी धूम्रपान कुछ लेते थे?
5: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, अमृतशक हुआ है।
4: अच्छा, अमृतशक, ठीक है।
5: हाँ जी, हाँ जी, उसको तो 30 साल हो गए अमृतशक हुए।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार आपको दिखाना चाहिए जो छाती, हाँ के स्पेशल

0: होते हैं ना, लंग स्पेशलिस्ट, उनको भी दिखाना चाहिए ताकि रूल आउट हो सके कि हार्ट का है या
1: नहीं,
0: लंग्स
1: हार्ट
0: का
1: का
0: है।
1: और कोई नहीं है मैडम। हाँ
0: हाँ तो फिर लंग्स वाले को दिखाना चाहिए एक बार, है ना।
1: ठीक है मैडम। हार्ट की तो इको कराई हुई है हमने, 3-4 दिन पहले कराया था, उसमें तो कुछ नहीं आया, हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बढ़िया धड़कन वगैरह जो नाड़ी वगैरह सब सही है, पर फेफड़ों में प्रॉब्लम जरूर है, फेफड़े थोड़े वीकनेस हुए हैं ज्यादा, उसके कारण जब ज्यादा थोड़ा वॉकिंग वगैरह करते हैं उसके बाद ना जो है अपना फेफड़े हैं वो दिल पे दबा पाते हैं, जब दिल पे दबा पाते हैं उसको थोड़ी दौरे जैसी शिकायत बन जाती है, जैसे दौरा नहीं होता है, जैसे हार्ट अटैक का दौरा हो गया
0: हाँ जी
1: और
0: हाँ
1: भी कई
0: जी
1: तरह के दौरे होंगे।
0: जी जी जी अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी, उस तरह
0: अच्छा
1: की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, अभी कभी कभी आती है, नॉर्मली है भी ऐसे नहीं है भी, रोज आती है कभी कभी, जैसे हफ्ता बाद या 10 दिन बाद या 1 मंथली।
0: जी
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: हाँ डॉक्टर साहब, दस्तों तो सेना दा की हैगा। देखो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार आपके आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने एक कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर को तो दिखा ही लिया है ना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: हाँ
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: एक बार लंग स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, छाती
1: हाँ
0: के
1: जी
0: डॉक्टर को, ताकि पता चले कि कितना कैपेसिटी है, क्या है। एज के चलते भी थोड़ा होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है ना। तो
1: छाती वाले
0: आप
1: डॉक्टर को दिखाना चाहिए है? ठीक
0: हाँ एक बार दिखाना चाहिए।
1: है मैडम, ठीक है ओके।
0: एक क्वेश्चन होर मेरे माइंड च आ रहा है कि तुसी जेड़े मतलब टेस्ट दस रहे हो है ना मरीजा नु, भी आ टेस्ट कराना छाती दा, है ना। टेस्ट एक बार थोड़ा जा डिटेल च दसोगे भी केड़े केड़े टेस्ट होंगे है गे। जैसे देखो मरीज बोलता है कि ना मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ, बहुत कॉमन है। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, मरीज कभी कभी सोचता है कोई नहीं मैं तो ऐसे हल्का सा गिरा हूं, या रेस्ट कर लेता है। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है पसलियां भी टूट जाती हैं, फेफड़ों में हवा भर जाना। हवा भर जाना तो मतलब एक्सरे से अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है और आपका दिक्कत है तो आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए। छाती में अगर पानी भर जाता है, पानी कैसे रंग का है, कब ट्यूब डलनी चाहिए, कब पानी अल्ट्रासाउंड गाइडेड निकलना चाहिए, वो सब जी होता है। और साथ में हमको खून टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे फंगल के लिए, इन्फेक्शन के लिए करवाना चाहिए, एलर्जी पैनल करवाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करवाने चाहिए। और मेन लंग कैपेसिटी के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, बलगम कैसे रंग का है, बलगम बैक्टीरियल, मतलब जैसे इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, किस चीज का है। ब्रोंकोस्कोपी दूरबीन से भी फेफड़ों की जांच
1: जी जी
0: होती है
1: जी
0: कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लंबे समय से दूरबीन से भी जांच कर सकते हैं। जैसे मरीज कभी कभी क्या होता है कि हाँ भाई कुछ नहीं है बट उसका खांसी ही ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ करवा चुका है। तो आगे भी बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत टेक्निक इतना डेवलप हो चुका है कि हम इम्पल्स ऑसिलोमेट्री वगैरह करवा सकते हैं, हम ILD के लिए रूल आउट करें, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है
1: डॉक्टर साहब एक होर गल है, जिवें मैं थोनू कहा सी वी मेरे खुद दे मदर इनहेलर लैंदे हैगे, है ना। ते इह मतलब इनहेलर आम हरेक डॉक्टर मतलब रिकमेंड कर दिंदा हैगा, भी सलाह दे दिंदा भी इह चीज लो अगर थोनू साह दी दिक्कत आ रही है। ते दिन विच किन्नी वारी लै सकदे हैं, इहदी भी कुछ ओ हुंदी हैगी है।
0: देखो, ऐसा है कि हर डॉक्टर तो इनहेलर एडवाइस नहीं करेगा, जब दिक्कत होगी तो ही एडवाइस होता है ना।
1: जी
0: एकदम से अपफ्रंट कोई भी इनहेलर नहीं लेता। दूसरा मैंने नोटिस किया है, पेशेंट बहुत स्टिग्मा रहता है, बहुत डर रहता है, अरे हमें तो इनहेलर की आदत हो जाएगी। जब हम रोटी भी तो खा रहे हैं ना रोज, वो ही हमारा, अगर उससे हम ठीक हो रहे हैं तो हमें क्यों नहीं लेना, लेना
1: जी
0: चाहिए। और डोज जो है वो डिपेंड करती है कि कितनी सीवियरिटी है और कब लेना चाहिए, आपने कौन सा पाउडर वाला फॉर्म लिया है, कौन सी दवाई ली है, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कोई 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे एक्ट करती है, कोई किसी की कैपेसिटी देख के हम बताते हैं कि पाउडर वाला DPI लेना है, कैप्सूल वाला या पंप वाला लेना है, या फिर नेबुलाइजर लेना है। वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट का क्या स्टेटस है, लंग कैपेसिटी क्या है।
1: जी डॉक्टर साहब एक कॉलर साढ़े जुड़ चुके हैं, उन्होंने ना गल कर दिया। हेलो
2: सत श्रीकाल जी। मैम
1: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे थे, कितों बोल रहे हो।
2: जगदेव सिंह बोल रहे हैं अकलिया कला तो।
1: हाँ जी जगदेव सिंह जी, सवाल पूछो डॉक्टर साहब नु, की करना है।
2: हाँ जी नमस्ते मैम जी।
0: नमस्ते
2: दीदी मेरे ना मैनू 3-4 दिन हो गए जी, बुखार हो जाता गा रोज शाम नू जी, ते एक ना थोड़ा जा छाती भी जकड़न चाह जी, ते तुरदे फिरदे ना मेरा सांस चढ़ता रहता गा जी, मैं सुनो ओहदे बारे पता करना सी मैम। साडे घरे ना पहला भी हैगी है शिकायत जी, माता नूं है मेरे सांह दी।
0: जब आपको पहले भी शिकायत हुआ है और वापस से भी शिकायत हुआ है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, चेस्ट
2: नहीं मैम,
0: स्पेशलिस्ट
2: मैनू
0: को।
2: मैनू दा फर्स्ट टाइम हुई है जी, मेरी माता जी नूं है जी।
0: अच्छा

0: आपको फर्स्ट
1: हाँ जी,
0: टाइम हुआ है, अगर 4 दिन हो
1: हाँ
0: गए
1: जी,
0: आराम नहीं हो रहा है तो आपको
1: हाँ
0: दिखाना
1: जी,
0: चाहिए डॉक्टर।
1: हाँ मैम मेरी ना हड भन्नी नहीं रहती है, या छाती के विचों ना आवाज जी आती रहती है, जकड़न रहती है,
0: ये तो आपको
1: ते
0: दिखाना ही पड़ेगा,
1: सुन
0: तभी
1: मिल
0: हम बता
1: सकते मैम
0: सकते
1: असि?
0: हैं कि क्या है क्या नहीं।
2: हाँ जी जरूर मिल सकते हैं डॉक्टर साहब नु तुसी। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल है जी, भी जिवें जिहड़े पेशेंट नु सांह दी दिक्कत हैगी है ना, सेम यही अपना चल रहा हैगा क्वेश्चन भी, ते एदे वास्ते कोई एक्सरसाइज भी कर सकदा हैगा जिदे नाल उनु रिलीफ मिले, हुंदी है
0: जैसे
2: एक्सरसाइज?
0: सीओपीडी पेशेंट्स में पर्स लिप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये कॉमनली एडवाइस किया जाता है बाय फिजियोथेरेपिस्ट। इससे क्या होता है, फेफड़ों को आराम मिलता है, क्योंकि वो पेशेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी बेचारे सांस नहीं ले पाते हैं, बैठे
2: जी
0: बैठे भी सांस फूलता है, लेटते हैं तो बहुत ज़्यादा फूलता है, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ILD रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जो होती है, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज, उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि जैसे अलग अलग तरह की हम मसल स्ट्रेंथनिंग भी होती है उसमें, वो सब भी करवाते हैं पेशेंट को। दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दवाई टाइम पे लो, एक्सरसाइज करो, सब ठीक होगा। बहुत बीमारियां ऐसी है जो क्योर हो सकती हैं, मतलब ठीक है आगे प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन ILD ऐसी है, अगर एक बार प्रोग्रेस हो गई इंटरस्टीशियल लंग डिजीज तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है, मरीज ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, तो सही समय पर इलाज होना बहुत जरूरी
2: यदि कोई खास स्टेज भी होंगी है डॉक्टर साहब,
0: है।
2: या
0: हाँ
2: किसी भी स्टेज हो सकता है, या कोई यह जा कारण या लक्षण जिहड़ा भी सर जिस तो असीं बहुत ज्यादा अपनी सावधानी वरतीए?
0: जैसे मरीज है ना, पहली बार सांस फूला कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार मरीज ने फिर भी दवाई नहीं ली तो क्या होगा? पेशेंट COPD वाला पेशेंट जो है वो Type 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जाएगा, या Type 2 रेस्पिरेटरी मतलब CO2 रिटेन होने लग गया है, तो उसके चलते पेशेंट एकदम सांस एकदम फूलने लग जाएगा मरीज का, पेशेंट को ऐसे लगेगा कि किसी ने मुझे पकड़ रखा है, छाती एकदम भारी हो गई है, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, तो उसके लिए मरीज कभी कभी ऑक्सीजन ड्रॉप होने लग जाता है, मरीज वेंटिलेटर पर भी जा सकता है, इसीलिए दवाई बहुत जरूरी है, टाइमली लेना है, नहीं तो और बार ऐसा होता है कि ना अच्छा कोई नहीं, मैं तो पहली बार ही आया हूं वेंटिलेटर पे, नहीं, अगर जैसे जैसे आप इंक्रीज होती है तो आपकी मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगी, अगर आप वेंटिलेटर पे हैं तो इट्स सेल्फ मोर्टेलिटी इंक्रीज हो चुकी है।
2: एक एज बारे होर दसो, तुम्हें एक क्वेश्चन भी पुट के दस भी, कोई एज भी होंगी हैगी भी सानू ये पता लगे भी इस एज तो बाद ज्यादा वध जाती है ये चीज?
0: ज़्यादा बढ़ने का तो देखो ऐसा है कि टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप टाइमली दवाई ले रहे हो या आपने सही टाइम पे डायग्नोसिस करवा लिया है तो नहीं कंट्रोल रहता है, अगर आप दवाई आज ले रहे हो फिर कल 1 महीने बाद चलो आज मेरा सांस फूल गया ले ली, तो उसमें क्या होता है कि मतलब दवाई काम ही नहीं कर पाएगी ना, जैसे आज कर लिया उस टाइम पे आपको इन्हें शुरू के दिनों में तो आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा कि अरे मैं तो एक ही बार लिया मैं ठीक हो गया, लेकिन जब बार बार होने लग जाएगा तो हो सकता है आपको IV इंट्रावीनस मेडिकेशन की भी नीड पड़ने लग जाए, आपका हॉस्पिटल विजिट इंक्रीज हो जाए, उन सबसे बचने के लिए
2: जी
0: प्रॉपर चेस्ट फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं उनसे आप कंसल्ट करो और दिखाओ।
2: जी मतलब कोई भी एज होवे, चाहे वो किसी नू स्टार्टिंग एज चो होवे या किसी नू कोई बुजुर्ग हैगा, उन्हों आपदी प्रॉपर तरीके नाल आपदी देखभाल भी करनी पौगी, उन्हों आपदी सावधानियां भी वरतनियां पैणगियां, और समय दे समय नाल डॉक्टर नाल सलाह भी करनी पौगी। ठीक है जी, कॉलर साडे नाल जुड़ चुके हैं, उन्होंने गल करते हैं। हैलो,
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਦੀ।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
3: ਬੇਗੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
2: ਬੇਗੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ।
3: ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ।
2: ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ?
3: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਖੀਆਂ ਜੀ,
2: ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਮੈਮ?
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦੱਸੋ।
0: ਇਸਕਾ ਇਲਾਜ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ और क्या दिक्कत है और कब से है, तो एक बार आके आपको चेस्ट फिजिशियन पल्मोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा।
2: ठीक है जी, हुण डॉक्टर साहब चलते चलते एक होर सवाल पूछदी हां थोनू मैं, कि अज भी बहुत सारे मतलब जिहड़ा हुण स्रोतियां नू फेफड़ां दे बारे तुसीं दस्सिया हैगा है ना, ते तंदरुस्त रहण लई कुछ इह जिहियां जरूरी गल्लां दस्सो सानू, शेयर करो, स्रोतियां नू भी दस्सो ते सानू भी दस्सो, कि जिहड़ियां साडे अज दे जीवन विच अज दी जीवन शैली विच बहुत जरूरी हन ते हरेक व्यक्ति नू इह अपने रोजाना जीवन शैली विच अपनानियां चाहीदियां।
0: सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस फ्री रहना, हर

0: बोल देता है अरे स्ट्रेस फ्री रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, उसके लिए मेडिटेशन करो, अपने आप को बिजी रखो, स्क्रीन टाइम कम करो, है ना। स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें स्ट्रेस से भी होती है। दूसरा, पेशेंट आजकल क्या होता है, लोग है ना बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। पहले के लोग देखो कितना काम करते थे, अब मतलब इतना वर्क का वो हो गया कि नहीं, बस काम करो और अपना रेस्ट करो। आपको वॉक करना चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए, और हमेशा टाइमली अपना चेकअप करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन आ चुके हैं, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जैसे अभी फ्लू का सीजन है, तो फ्लू के लिए आई विल सजेस्ट कि ठीक है सीजन है अभी, लेकिन वैक्सीनेशन भी तो आ चुका है ओल्ड एज में, किडनी पेशेंट्स में, हार्ट पेशेंट में, COPD, लंग के पेशेंट्स में, इनमें तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अडल्ट वैक्सीनेशन भी है, बच्चों को भी तो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, है ना। तो ये सब बहुत जरूरी है। जैसे किसी को सांस की दिक्कत है, नहीं, आंसू चलो मेडिकल स्टोर गए और मेडिकल स्टोर से एक गोली ले आए, मेरे को तो गोली से आराम हो जाता है, बिना दवा, चलो दवा से आराम हो जाएगा, लेकिन वो दवा सही है, सही टाइम पे काम करना वो इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी बीमारी को ना बढ़ाए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी सभी श्रोताओं से एक विनती है कि सही टाइम पे सही डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। छाती का डॉक्टर है तो छाती को दिखाओ, हार्ट का डॉक्टर है तो हार्ट को दिखाओ, हार्ट वाले को दिखाओ, किडनी की दिक्कत है तो किडनी वाले को दिखाओ। आजकल क्यों इतना अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, फिर एकदम लैंड अप होते हैं हम अलग सिचुएशन में, वहां पे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है टाइमली डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।
1: जी डॉक्टर आंचल जैन, तुसी अपना कीमती समा दे के साडे श्रोतियां नूं सांह सेहत दे फेफड़िया दे नाल जुड़ियां बीमारियां बारे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दित्ती। इस लई तुहाडा दिलों बहुत बहुत धन्नवाद।
0: मैं भी सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और सुना और हमसे बहुत सवाल किए, जवाब किए। मैं नेक्स्ट मंडे को फिर से उपलब्ध होंगी आपके सवाल के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।
1: जी, जाते जाते सुनते हैं एक प्यारा जा गीत।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी

0: आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए, हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में एक सेहतमंद, सुरक्षित ते नशा मुक्त शहर बनाने लई समुचे समाज की मुहिम का सदा दिता। पंजाब ते यूएई दरमियान व्यापारक निवेश ते सनती भाईवाली नूं होर मजबूत करन लई शाहरा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल नाल रणनीतिक गलबात। पंजाब के साबका मंत्री भगत चुन्नी लाल का आज पूरे सरकारी सन्माना नाल अंतम संस्कार कर दिता गया है। माई भारत पंजाब ने आज सूबे भर के 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों नू myBharat.gov.in पोर्टल से रजिस्टर करन अते विकसित भारत क्विज नू करन दी अपील की थी। ते भारत आज चीन दे मोकी विखे पाकिस्तान नू 9-0 नाल हरा के औरतां दे जूनियर हॉकी एशिया कप दे सेमीफाइनल विच पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब के राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ नूं एक सेहतमंद, सुरक्षित ते नशा मुक्त शहर बनाने लई एक निरंतर रहनयोग समुचे समाज की मुहिम का सदा दिता। उन्होंने नशा तस्करां नूं चेतावनी दिती कि वह गैर कानूनी व्यापार छड्ड देण जां तेज कार्रवाई का सामना करन। इस दे नाल ही उन्होंने जोर देके कहा कि नशाखोरी नाल जूझ रहे व्यक्तियों नाल हमदर्दी नाल पेश आना चाहिए अते नशियां दी लत तों बाहर आउण, सिख्या ते रुजगार वल उन्हां दी यात्रा विच उन्हां दी मदद कीती जानी चाहीदी है। ओ नगर निगम चंडीगढ़ वालों कराए गए एक नशा मुक्त जागरूकता प्रोग्राम नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने स्वय सहायता समूह SHGs वालों समाज संचालित नशा जागरूकता मुहिम अते चंडीगढ़ व्यापार मंडल दी 3 महीनों दी नशा मुक्त जागरूकता मुहिम नूं शहर दे बाजारां विच शुरू कीता। इस मौके उन्हां कहा,
3: चंडीगढ़ से इसकी ऐसी शुरुआत करें, यहाँ सब लोगों को भी साथ लें, सब समाजों को साथ में लें, सब धर्म गुरु को साथ में लें, सारे विश्वविद्यालय स्कूल है, एसोसिएशन है, प्रशासन है, सब मिल करके एक ऐसा अभियान हम शुरू करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सितंबर 30 तक चंडीगढ़ में कम से कम नशा न बिक पाए। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है जिसको हम धरती पर उतारने के लिए जो भी संभव हो सकता है प्रशासन से, पुलिस से, यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर के अभियान करेंगे ताकि कम से कम देश के सामने एक उदाहरण पेश कर सके। यदि प्रयत्न करें तो सफलता मिलेगी।
2: श्री कटारिया ने जोर देके कहा कि नशे विरुद्ध बचाव की पहली ढाल परिवार है, जदों कि स्कूलों ते अध्यापकों नूं बच्चियां नूं सेहतमंद अते उद्देश पूर्ण जीवन वल सेध देनी चाहीदी है। उन्होंने विशेष तौर ते मुहिम नूं जमीनी पद्धर ते ले जाण अते प्रभावित परिवारां नूं सलाह, इलाज ते मुड़ वसेबा नाल जोड़न विच सहज सहायता समूहां दी भूमिका दी शलाघा कीती। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मेयर श्री सौरभ जोशी ने भी नशा तस्करां विरुद्ध सख्त शब्दां च कहा कि नशे दे सौदागरां दे घरां ते बुलडोजर चलवाए जाणे चाहीदे ने। उन्हां ने श्री कटारिया नूं अजिही कारवाई लई इजाजत देण दी बेनती कीती अते चंडीगढ़ प्रशासन दे संबंधित अधिकारियां नूं कानून अनुसार इस संबंध विच जरूरी कदम चुक्कण दे निर्देश दित्ते। पंजाब की यूएई निवेश पहुंच नूं अगले पड़ाव ते लिजांदिआं सूबे दे व्यापार ते सनअत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने पंजाब ते यूएई दरमियान व्यापारक निवेश अते सनअती भाईवाली नूं होर मजबूत करन लई शारजा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल IBPC नाल रणनीतिक गलबात कीती। ये गलबात कारोबार तो कारोबार B2B संबंधां नूं मजबूत करन अते एक संगठित ढांचा स्थापित करन ते केंद्रित सी तां जो पंजाब अते शारजा दे उद्यमियां नूं भाईवाल लब्भण, सांझे उद्यम लाउण, बरामद वधाउण अते लंबे समें दे आपसी लाभकारी व्यापारक संबंध स्थापित करन विच मदद मिल सके। गलबात बारे श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस दे नतीजे वजों इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल अते इनवेस्ट पंजाब सनअत तो सनअत तालमेल नूं तेज करन लई सहमत होए।

0: सरकार दौरान कैबिनेट मंत्री रहे श्री भगत ने उस समय दी प्रकाश सिंह बादल सरकार में स्थानक सरकार मेडिकल सिक्ख्या जंगलात जंगली जीव और किरत विभाग के मंत्री वजो जिम्मेवारी निभाई। उन्होंने 3 बार 1997 2007 और 2012 में जलंधर पश्चिमी विधानसभा हल्के की नुमाइंदगी की। उन्होंने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर वजो भी सेवा निभाई। उन्होंने पुत्र महेंद्र भगत इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री ने। पंजाब सरकार वल्लों सोग वजों छुट्टी का ऐलान किया गया। पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवा ने भी श्री भगत चुन्नी लाल के देहांत से डूंगा दुख जाहिर किया है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNews जलंधर। माई भारत पंजाब ने अज राज भर के 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों माई भारत .gov.in पोर्टल से रजिस्टर करन अते विकसित भारत क्विज नूं करन दी अपील की थी। एक क्विज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का शुरुआती पड़ाए अते 30 सितंबर 2026 तक खुला है। प्रेस क्लब चंडीगढ़ विखे मीडिया नूं जानकारी देंदे हुए माई भारत पंजाब के स्टेट डायरेक्टर इंचार्ज श्रीमती रशमीत कौर ने कहा कि यह क्विज 5 पड़ा वाली पूरी तरह योग्यता आधारित यात्रा लिए प्रवेश बिंदु है जो चुने हुए नौजवानों वालों जनवरी 2027 विच नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री दे सामने विकसित भारत लिए अपने विचार पेश करन दे नाल खत्म होंदी है। पंजाब के समाजिक सुरक्षा स्त्री ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्या है कि विभाग वालों स्माइल स्कीम अधीन अमृतसर पटियाला लुधियाना ते जलंधर विच बेघर अते भिख्या विच शामिल व्यक्तियों दे बचा अते मुड़ वसेवे लई विशेष उपराले किए जा रहे ने। इस तहत अमृतसर विच मार्च 2026 तो चल रहे सर्वेक्षण दौरान हुण तक 422 भिख्या विच शामिल व्यक्तियों की पछाण की जा चुकी है। इन्हां विचों 32 व्यक्तियों का सफल मुड़ वसेवा किया गया है। पटियाला विच भी 168 व्यक्तियों की पछाण करके उन्हां दे मुड़ वसेबे लई कार्रवाई जारी है, जबकि सितंबर के दूजे हफ्ते दौरान लुधियाणा और जलंधर विच भी सर्वेखण शुरू किया जा रहा है। पंजाब के खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिया ने सूबे नूं नशा मुक्त करने लिए चलाई जा रही युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत अज बठिंडा विखे जिला पदरी समीक्षा मीटिंग की अगवाई की थी। मीटिंग दौरान जिला बठिंडा के सारे विधानसभा हल्कों के नशा मुक्ति मोर्चा के अहदेदार पुलिस और सिविल प्रशासन अधिकारियों ने नशिया खिलाफ की जा रही कार्रवाई बारे विचार सांझे किए। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश करदे दो AK-47 राइफल 3 मैगजीन 50 जिंदा कारतूस समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। इस बारे जानकारी देंद्या पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पछाण कर ली गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अते हस्पताल GMCH चंडीगढ़ ते मनोविज्ञान विभाग ने गैर सरकारी संस्था परिवर्तन दे सहयोग नाल आज हस्पताल कैंपस विखे विश्व खुदकुशी रोकथाम दिवस मनाया। भारत और चीन दे मौके विखे पाकिस्तान नूं 19-0 नाल हरा के औरतां दे जूनियर हॉकी एशिया कप दे सेमीफाइनल विच पहुंच गया। भारत दी मर्दां दी जूनियर हॉकी टीम पहला ही जूनियर हॉकी एशिया कप दे सेमीफाइनल विच पहुंच चुकी है। आखिर च खास खबरां, पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ नूं सेहतमंद सुरक्षित ते नशा मुक्त शहर बनाने लई समुचे समाज की मुहिम का सद्दा दिता। पंजाब ते UAE दरम्यान व्यापारक निवेश ते सनअती भाईवाली नूं होर मजबूत करने लई शारा चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल नाल रणनीतिक गलबात। पंजाब के साबका मंत्री भगत चुन्नी लाल दास पूरे सरकारी सम्माना नाल अंतिम संस्कार किया गया। माई भारत पंजाब ने सूबे भर के 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों पोर्टल से रजिस्टर करने की अपील की थी। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਹੈ 6:30। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੁਵ ਵਾਣੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨੂਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵ ਵਾਣੀ।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: श्रोतियो अज दा एक खूबसूरत सफर हुण अपने अंत वल आ पहुंचिया है। अज असीं मानसिक सेहत तो लैके विचारां दी सांझ, औरतां दी सेहत, क्रिकेट अते मेकअप तक कई वख-वख विषयां ते गल्लबात कीती। उम्मीद है कि अज दीआं इन्हां गल्लां विचों कोई ना कोई गल तुहाडे नाल जरूर जुड़ी होवेगी अते शायद कोई नवीं सोच भी तुहाडे मन विच जन्मी होवेगी। ते हुण तुहाडे तो इजाजत लैण तो पहला मैं तुहाडे नाल कुछ सत्रां सांझियां करना चाहांगी। जिंदगी मिलीए तां हस के जी लै, दिल दी गल किसे खास नूं दस के जी लै, रख ना कोई शिकवा, नवे सुपने सजा के जी लै, रब दी इस रहमत नूं गल ला के जी लै। इन्ना ही खूबसूरत सत्रां दे नाल इक सोहनी जी उम्मीद दे नाल मैनूं नूरदीप कौर नूं दिओ आग्या। अपना ख्याल रखो, अपने आले दुआले दे लोकां दा वी ख्याल रखो, कुछ नवां सिखदे रहो अते अपने मुस्कुराहट नूं बनाई रखो। जय हिंद।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: सारे लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: आज तक इस योजना नाल 9,50,00,000 तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके ने। जे तुसी भी 18 तो 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभां की जानकारी ले अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: जी श्रोतियों, थोड़े सारे दा फोन कॉल्स ते आधारित इस प्रोग्राम नू मैं लेके हाजिर हाँ उपासना कौशिक ते थोड़ा सारे दा प्रोग्राम शाम सुहानी दे विच स्वागत कर दी हाँ। तुसी जुड़ सकते हो मेरे नाल 01624243131 ते मैनू

0: 0162 42 331 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਰੋਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
2: सुखदीप सिंह कर रहे जी, गरीब पग जी।
1: हाँ जी सुखदीप सिंह जी, थोड़ा प्रोग्राम शाम सुहानी दे विच बहुत बहुत स्वागत है जी।
2: तो
1: हाँ जी, गीत केड़ा सुनना पसंद करोंगे?
2: गुरदास मान दा जी मन के।
1: गुरदास मान दा मन के, ठीक है जी। थोड़ा मनपसंद गीत थोड़े रेडियो सेट ते हाजिर है।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: स्टूडियो दी ट्रिंग ट्रिंग वज चुकी है जी, साडे अगले सरोता भी एदे नाल ही साडे नाल जुड़ चुके ने। आओ देखते हैं कौन ने ते कित्थों ने। हेलो
3: हेलो जी, सत श्री अकाल मैडम।
2: सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
3: मैं बब्बी मेंबर गल करदा जी, ਧੁੰਬੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ।
2: हां जी बब्बी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
3: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।
2: हां जी हां जी, ਤੇ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜੀ?
3: ਗੀਤ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੈ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
3: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: 0164-240-3131 डायल करके साडे अगले कॉलर भी साडे नाल जुड़ चुके ने। आओ देखते हैं कौन ने ते कित्थों ने। हेलो
3: हेलो,
2: सत श्रीकाल जी, कौन गल कर रहे हो? कुलवंत कौर जी पुछो कला तो। हां जी, तुहाडा प्रोग्राम शाम सुहानी दे विच स्वागत है जी। गीत केड़ा सुनोगे?
3: गीत जी कोई भी सुना दो चल के।
2: मिस पूजा दा गाना तुसी मेनू कहा सीगा, ते थोड़ा मिस पूजा दा गाना मैं थोड़े रेडियो सेट ते थोड़ा मनपसंद गीत हाजिर कर दिया।
3: ठीक है जी।
2: हां जी, कॉल करने लई बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ओके।

सवाल ओही जो लोकां दे दिलां विच ने, जवाब ओही जो सच नू सामने लियाउन। खबरां दे पिछे दी खबर, शख्सियत दे पिछे दी कहानी अते समाज नाल जुड़े अहम मुद्दयां ते बेबाक गलबात।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में अंतरराष्ट्रीय पराड सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक सुरक्षित शांतिपूर्ण और निरंतर रहने योग्य पराड क्षेत्र का समर्थन करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते नवी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आएंगे। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ भारत के हवाबाजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। भारत पाकिस्तान हरा के महिला जूनियर एशिया कप हाकी के सैमीफाइनल पहुंच गया ते महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सैमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बंगलादेश नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक सुरक्षित शांतिपूर्ण और निरंतर रहने योग्य पुराड़ खेत्र का समर्थन करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलाड गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय कानून गलबात और बहुपक्षी सहयोग पर आधारित होनी चाहिए ने। प्रधानमंत्री आज पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुलाड सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन कर रहे सन। उन्होंने जोर देकर कहा कि विज्ञानक डेटा की वरतों पारदर्शिता और ईमानदारी की जानी चाहिए है जो सारी मनुखता के हित में होए। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आधारित है जिस अर्थ है एक धरती एक परिवार एक भविख और इस भावना हुण धरती तो परे पुलाड़ तक वधाउण की लोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पुलाड़ यात्रा इस दृष्टिकोण दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पुलाड़ ने सदियों तो मनुखी कल

0: ऑर्डर में रन बनाए और तब श्रीलंका वो मैच जीत पाई। भारत के लिए कितना थ्रेट देख रहे हैं आप?
1: देखिए, बांग्लादेश की जो स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग है, चाहे आप मारुफा कर लिए, रबिया कर, नाहिदा कर लीजिए, इनकी जो इन्होंने विकेट्स निकाली हैं, आज नॉर्मली जो कंपटीशन है बांग्लादेश की बॉलिंग और इंडियंस की बैटिंग का मेन सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा। और इसमें क्या है, इन्होंने जान टॉस जीत के, हमें पता, मुझे लग रहा था कि ये फील्डिंग ही करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग है अगर आप उनको बाद में चेस कराएंगे तो वो डेफिनेट है कि वो आप उनके लिए स्कोर कितना खड़ा करें वो टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। बेटर ये है कि आप उनको प्रेशर में डालिए। इनके जो इंडिया की बैटिंग है थोड़ा, आप जैसे आपने बताया कि बीच में स्मृति को छोड़ के ज्यादा लोगों भी फॉर्म, उनको चांस भी नहीं मिल पाया बैटिंग करने का, और वो पूरी फॉर्म में भी नहीं है, टच में नहीं है। और आज छह नंबर के बाद आपके पास सब ऑलराउंडर के बॉलर दिख रहे हैं, ये अच्छा चांस है इनके पास स्पिनर्स के पास। अगर ये विकेट्स निकालते हैं स्पिनर्स, हमारे बांग्लादेश के स्पिनर विकेट निकालते हैं, या मरूफा एक आध जैसे उनकी अभी हर मैच में उन्होंने जो पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं, तो एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलने जा रहा है आपको।
2: राइट, मोना आपके पास आती हूँ। शेफाली वर्मा और स्मृति के बाद जेमिमा रॉड्रिगेज एक ऐसा नाम है जो भारत को बहुत ज्यादा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, बट वो आज खेल नहीं रही है हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते। डू यू थिंक इट्स अ लॉस दैट इज गोइंग टू पिंच अस टुडे इन सच क्रूशियल मैच?
3: देखिए, जेमिमा रॉड्रिक्स की इंजरी की वजह से ही प्रतीका रावल का डेब्यू हुआ है और 3 इनिंग्स में 36 रन ही बना पाई है, उन पर काफी दारोमदार था। लेकिन पिछली बार जब मुकाबला हुआ, पिछली बार जब टूर्नामेंट हुआ था, भारत ने जीता था, जेमिमा टॉप रन गेटर रही थी उस टूर्नामेंट में। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर भारत को उनकी कमी यहाँ खल रही है, क्योंकि जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर पे रन बनने के बाद जो मिडिल ऑर्डर है, आप चाहे थाईलैंड के खिलाफ देख लीजिए, हरमनप्रीत कौर 5 रन, फुलमाली 13 रन, और रिचा खाता भी नहीं खोल पाई, तो मिडिल ऑर्डर में जमीमा की कमी निश्चित तौर पर यहाँ खल रही है टीम को।
0: जी हाँ, फर्स्ट बॉल 20 में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और क्या जानना चाहते हैं आप? जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी
4: अभी हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जीता है, लेकिन मेरा मानना उनकी उम्र हो चुकी है, अब तो उनको जाना है, तो क्यों ना उनके अंडर में किसी नए प्लेयर को कप्तान बना करके एक्सपीरियंस दिलवाया जाए, क्योंकि उनसे परफॉर्मेंस भी नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ स्पेशली उनकी बात करूँ तो बैटिंग बैटिंग में। और दूसरा एक सवाल ये है सर, जो ये IPL वगैरह होते हैं, इतने सारे लीग होते हैं, इनके जगह पर क्यों ना एक इंटरनेशनल क्रिकेट लीग बना दे, ICC के अंडर में हो, ये ICC करवाए और वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दिलवा दे दे और बाकी सारे लीगों की छुट्टी हो जाए तो अच्छा रहे।
0: बहुत सारे सुझाव रहते हैं क्रिकेट प्रेमियों के जहन में, लेकिन एक सवाल हरमन से जुड़ा था, नई कप्तान चाहते हैं।
1: देखिए, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, अपने मेंस में भी नए कप्तान बना के देखे हैं, तो बेटर है कि जितना अभी क्रिकेट बचा है उनमें काफी, चाहे वो जो एक्सपीरियंस है आप उसको यूटिलाइज कीजिए, इतने इतने सालों की इन्वेस्टमेंट कीजिए की है आप लोगों ने, तो उसको इतना जब वो पीक पे आ गई है, जब वो बिल्कुल आपके सामने सब कुछ परफॉर्म करके दे रही है, अब अभी जब टाइम आएगा अपने भी चले, अपने भी होगा। जैसे स्मृति भी आपने देखा बीच में कप्तानी, कई मैचेस में कप्तानी भी वाइस कैप्टन रही है, करी है, तो अभी उनमें काफ दम है। मुझे लगता है कि जे सिलेक्टर्स ने अभी तक जो भी डिसीजन लिया ठीक लिया अभी तक।
2: राइट, मुना आपके पास आती हो। अगेंस्ट बांग्लादेश अगर हम देखें तो वुमेन्स T20 इंटरनेशनल के अंदर भारत के आंकड़े हैं 21-3 इन फेवर ऑफ इंडिया, बहुत ओवरवेलमिंग आंकड़े हैं। एंड दूसरी चीज, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भी अगर हम देखते हैं एशिया कप के अंदर, तो भारतीय टीम ही वो इकलौती टीम है जिसने 2 बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया हुआ है। नाउ गिवन द फैक्ट दैट ये स्लो टर्निंग विकेट है, भारत टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी सारे पॉइंटर्स हैं, मतलब शुरुआत में हमारे दो एक पार्टनरशिप है जो हमें चाहिए, मिडिल ऑर्डर अस्थिर है, Do you still think that India can get their way away from Bangladesh in this game by putting on a commanding score on board today?
3: 100%, क्योंकि देखिए आपके पास एक इनफॉर्म बैटर है स्मृति, जो इनिंग वो खेल कर यहाँ आई है, निश्चित तौर पर उनका मनोबल काफी बड़ा होगा, और 69 रन दूर हैं वो T20 क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर बनने से, और पिछले भी मैच में वो मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। इसका मतलब है कि उनका बल्ला चल रहा है, शेफाली एक अच्छी इनिंग खेल चुकी है, ऋचा घोष से ड्यू है एक अच्छी पारी, और जैसे अभी हरमन की बात हम कर रहे थे, 5 रन और 10 रन बनाए उन्होंने, तो हरमन को यहाँ पर जरूर एक कप्तानी पारी मिडिल ऑर्डर में खेलनी होगी। प्रतिका रावल को साबित करना होगा कि जिस प्लेयर की रिप्लेस के तौर पर वो आई है वो चयनकर्ताओं का फैसला सही था, तो यहाँ भारतीय मध्यक्रम और शीर्ष क्रम के सामने चुनौती

0: कि उनको मारूफा का सामना करना है, तो यहाँ काफी कुछ स्टेक पर है, और मुझे लगता है कि इतना एक्सपीरियंस इस कोर ग्रुप, आप देखिए वही है, काफी समय से वही है, तो इतनी आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है और इतना एक्सपीरियंस भी है कि आपको यहाँ पर, यही तो मंच होते हैं परफॉर्म करने के लिए, यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे।
1: कार्यक्रम में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका।
2: हेलो, गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, बताएं क्या जानना चाहते हैं और कहां से बोल रहे हैं आप?
2: सर, मेरा नाम सुधांशु है और मैं लखनऊ के डॉक्टर सुकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्वास्थ्य विद्यालय से कॉल कर रहा हूँ।
1: जी
2: और सर, मैं प्रतिभाविक छात्र हूँ।
1: जी बताएं।
2: सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज किसी मसाना शतक मारेंगी और 175 कंपनी बनेंगी और भारतीय टीम एक अच्छे रन से जीतेगी। सर,
1: सबको उम्मीद है कि स्मृति दूसरा शतक लगाएं, वैसे भी रिकॉर्ड बुक में कई पन्ने वो जोड़ चुकी हैं पिछले मैच में। रविंद्र,
3: देखिए पहले जो मैचेस हुए हैं आप देखिए, हांगकांग और थाईलैंड वैसे नॉर्मली टीम ही थी। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खेलने का, और जो लेवल है, आप देखिए इनसे कंपीट करना मुझे लगता नहीं कि इनके अगेंस्ट जो 100 करके भी शायद उनको, 100 तो 100 ही होता है खैर, लेकिन इतनी खुशी मिल पाएगी। बेटर यह है जैसे बांग्लादेश और फाइनल्स में आप खेलते हैं, तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि जब अच्छी टीमों से खेलने जाते हैं तो वहां पर आपको तैयारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनके जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की, वहां पर डाउट पहले भी लगता है, कई मैचों में देखा मैंने। आप देखिए जो इनके चार जो बाहर बैठे होते हैं उसमें तीन बॉलर होते हैं और एक विकेट कीपर तो आपको रखना ही पड़ता है उसके लिए। आप दूसरी टीमों के जब इवन आप बांग्लादेश के भी देखेंगे, एक ऑलराउंडर है, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, ये हर वेरायटी है। यहाँ पे आपके पास कोई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपका कोई बैट्समैन कोई बैटर है आपको कोई फिट लगती है उसकी कोई इंजरी, पहले भी प्रतिका रावल को मेरे ख्याल से लगी थी, बाद में शेफाली को बुलाया था, कोई इस तरह था, कोई बैटर आपके पास 15 में होता ही नहीं है कि आप एक फील्ड हो जाए, आपको उनको खिलाना ही खिलाना है। तो आपको बेंच स्ट्रेंथ पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा इंडियंस को, कि आपके पास बाद में एक या दो एक बैटर होना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर फेल होता है तो उसके बदले कोई तो सब्जी इंजर्ड होता है कोई सब्स्टिट्यूट बुलाना पड़ा, ये नहीं कि हमें घर से फोन करके उसको बुलाना पड़ता है उसको।
4: राइट, बेंच स्ट्रेंथ क्रिएशन की बात हो रही है, फ्रॉम बैटर्स टू बॉलर्स की तरफ मैं थोड़ा सा चलूंगी। मोना, टुडे माइट बी अ गुड डे फॉर इंडियंस, स्पेशली अगर हम बात करें श्री चरणी के लिए, बिकॉज शी इज लिटरली स्टैंडिंग आउट देयर टू टेक 50 विकेट्स एक कैलेंडर ईयर के अंदर T20 इंटरनेशनल में। लेकिन अभी फिलहाल वो सिर्फ 2 विकेट शॉर्ट हैं पूनम यादव के उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए 2018 में जो उन्होंने बनाया था, विच वॉज कि उन्होंने 35 विकेट्स ले लिए थे। और आज आपको लगता है क्या वो दिन होगा जब श्री चरणी उस आंकड़े को पार कर जाएंगी?
0: देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि श्री चरणी बड़े मैचेस की प्लेयर हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन प्लेयर है और सामने कौन टीम है, वो बड़ी टीमों की ख्याति से डरती नहीं है। और सेमीफाइनल फाइनल मैच में आपको ऐसे ही निडर खिलाड़ियों की जरूरत होती है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। और बड़ी एक खास बात है, विशाखापट्टनम से आती हैं वो, और मेरी उनसे जब एक बार इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उनसे पूछा था कि उनकी ये फियरलेसनेस का क्या राज है, तो कहती मुझे जब मैं गेंदबाजी करती हूँ तो दिखता ही नहीं कि सामने कौन है, मुझे सिर्फ फोकस अपनी बॉलिंग पर रहता है। तो इतना ज्यादा उनका फोकस है, और जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैंने बताया ही आपको कि जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आई है, और उसके बाद से भारत को एक अच्छा खासा रेस्ट भी मिल गया है। तो बांग्लादेश की टीम जो है वो अभी खेल कर आई है, भारतीय टीम ने लास्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, तो मुझे लगता है रिफ्रेश होकर नई एनर्जी के साथ जो हमारी बॉलिंग यूनिट है, और खासकर आपने श्रीचरणी की बात की, यहाँ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
1: एशिया कप के ग्रुप स्टेज में अब तक 12 मैच खेले गए हैं और 12 में से 8 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, 9 बार टॉस जीतने वाली टीम के कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी है। रविंद्र जी, इस पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए हैं, सवाल यह है कि क्या पिच वैसी है, गेंद फंस कर आ रही है, स्पिनर्स फ्रेंडली पिच है, या फिर बैटर्स जो हैं वो शॉट सिलेक्शन के स्तर पर थोड़े कमजोर साबित हुए?
3: देखिए ये जो आपका लेवल, देखिए अब लेवल जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर इसको देखेंगे आप, तो यहाँ पे इंडिया जो एक नॉर्मल एक टीम है, जो वो भी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड अफ्रीका वगैरह खेलती है तो इंडिया वहां पर वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचना मुश्किल लगता है। ये जो लेवल है इसमें हांगकांग थाईलैंड ये चीजें हैं, इस लेवल पे मुझे आप बैटर्स को आप मुझे लगता नहीं कि इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये जो टीम हमारी स्मृति है, स्मृति ने अपने रन बनाए हैं, जो 2 रन बना रही है, और बाकी जो बैटर हैं जैसे उनको मौका मिलेगा मुझे लगता है वो भी रन बनाएंगी। मुझे लग ज्यादा इनमें क्योंकि जो बाकी जो बैटर्स हैं वो ऐसे लग नहीं रहे कि आपको ऑल ओवर फिर रन बना के देंगे आपको।
4: ओके, अगर हम बात करें मोना, इन भारतीय महिलाओं का जो एशिया कप के अंदर रिकॉर्ड अभी तक करा है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग एंड स्ट्रांग है। मतलब हम अगर देखें 7 times इस टूर्नामेंट को उठा चुके हैं, उसके साथ साथ हमने 3 times तो जब से T20 इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तब जीता हुआ है, 9 times हम फाइनल्स गए विच इज अ क्लीन

0: बॉयकॉट. सो ओवरऑल अगर हम बात करें टुडे स्पेशली फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम, डू यू सी अ प्लेस वेयर बांग्लादेश कुड कैच अस ऑफ गार्ड एंड गेट अ विन ऑन द साइड?
1: देखिए T20 अनप्रिडिक्टेबिलिटी का गेम है, सो हम कभी भी श्योर होके ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये जीतेगा और ये हारेगा. हमने देखा है कि अपसेट्स होते हैं इस फॉर्मेट में, तो अब लेकिन जो भी हम कयास लगाते हैं वो पिछले परफॉर्मेंसेस, टीम कंपोजिशन और इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड के आधार पे लगाते हैं, तो अभी तक फॉर्म, प्लेयर्स के एक्सपीरियंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी है. और जैसे रविंद्र सर ने कहा कि ये इंडियन बैटर्स और बांग्लादेश के बॉलर्स के बीच का मुकाबला है, और अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं भी हम 150 से ऊपर बनाते हैं, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में दो ही बार 150 रन से ज्यादा बने हैं, तो कहीं हम बनाते हैं तो बांग्लादेश की बल्लेबाजी उतनी मजबूत नहीं है जितनी अच्छी हमारी गेंदबाजी है, तो फिर हम वहां पर प्रेशर बना सकते हैं.
2: थोड़ी चर्चा भारती फूलमाली पर भी कर लेते हैं. बहुत पहले डेब्यू किया उन्होंने, बहुत मौके नहीं मिले, लेकिन जब मौके मिले तो शायद इस अवसर को बहुत कैश नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जमीमा चोटिल हैं जिस कारण प्लेइंग 11 में उनको जगह मिल रही है. क्या उन पर थोड़ा दबाव होगा?
3: बिल्कुल. देखिए, एक तो इस नॉर्मली क्या जो पहले चांस मिला 31 इयर्स के आसपास उनकी जो नॉर्मली है, जब बीच में उनको 10 मैच मिले में 80-90 रन ही, ज्यादा रन भी नहीं बना पाई. इस टीम में आपको आने के लिए, देखिए अब ये इस लेवल पे आने के लिए आपको कंपीट करना पड़ेगा, और ये जो इस उम्र में भी आपको ये चांस मिला हुआ, इसका मतलब वो काफी डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दी है. तो अगर ये, लेकिन ये इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता. देखिए इनको इस समय ये ऐसा लेवल है आपको कि इस लेवल पे आके आपको रन बनाने पड़ेंगे, और अभी वो इंडिया की जो बैटिंग है बीच में वो आप नंबर 5 पे खेल रही हैं. देखिए अगर वो परफॉर्म नहीं, अगर बीच के दो विकेट निकल जाती हैं तो उन पे बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है. इसमें
2: क्या स्ट्रैटेजी होगी मोना, जब आप टॉस हारने के बाद टीम इंडिया पहले बैटिंग के लिए जाएगी तो कोच हैं, कप्तान हैं, क्या सोच रहे होंगे? पहले पावर प्ले को किस तरीके से टैकल करें, क्या ब्रैकेट बनाया होगा, 40-50 रन बिना किसी विकेट खोए, या फिर आप तेज शुरुआत करना चाहेंगे? क्योंकि 8 से 15 ओवर के बीच हमने देखा है कि रन बहुत तेजी से नहीं बनते हैं.
1: लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो ओपनिंग स्पेल डालने आएंगी वो मारूफा अख्तर होंगी, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई जोखिम लेना चाहेंगे. वो विकेट बचाकर पावर प्ले पे खेलकर उसके बाद स्पीड अप करना चाहेंगे. मुझे लगता है मारूफा के ओवर्स को वो संभल कर खेलेंगे, क्योंकि वो लगातार ब्रेक थ्रू, आपको याद होगा श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने चामरी अट्टापट्टू को 1 रन पे आउट कर दिया था, जबकि वो कितनी शानदार बल्लेबाज है हम सभी को पता है. तो यहाँ पर हमें ऐसी किसी दुर्घटना से बचना होगा कि कहीं हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है, जो इनफॉर्म है, वो पावर प्ले के अंदर ना चले जाए.
2: दूसरी तरफ अगर टोटल की बात करें रविंद्र, तो जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 150 से ज्यादा टोटल दो ही बार बने हैं और दोनों बार टीम इंडिया ने बनाए हैं. क्या टोटल जहन में होगा जब आप सेमीफाइनल में पहले बैटिंग के लिए जा रहे हैं?
3: देखिए टोटल तो तब रहेगा जब आपके विकेट्स बची रहेंगी. आपके पास अगर ये विकेट्स निकलते हैं, बांग्लादेश, मैंने पहले बोला आपको बांग्लादेश की बॉलिंग काफी स्ट्रेंथ, उनकी बॉलिंग है इस समय बॉलिंग, मारूफा जो बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रही है, स्पिनर्स भी अच्छा बॉल डाल रहे हैं, अगर ये विकेट स्मृति और शेफाली के विकेट से निकाल सकते हैं तो हरमनप्रीत और जो आपके वो हैं वो उतने प्रेशर में नहीं है, ना उतने रन बना सकते हैं, तो इंडियन बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएंगे. इस समय स्मृति को और शेफाली को रन करने बहुत जरूरी है, और 150 तो होने चाहिए सेमीफाइनल में अगर आपको जीतना.
2: चलिए सेमीफाइनल है, दबाव है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, यानी फाइनल का टिकट. अब बातें खत्म हो चुकी हैं और शुरू होने वाला है मुकाबला. फर्स्ट बॉल 20 में इतना ही, आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ. नमस्कार.
4: फर्स्ट बॉल 20. मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
5: स्वागत आप सबका इस कवरेज के अंदर. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम से इस सेमीफाइनल के अंदर, पहला सेमीफाइनल इस वुमेन्स एशिया कप का, और दिलचस्प मुकाबला रहने की पूरी उम्मीद भारतीय टीम की. जब आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली टीम भारतीय महिला क्रिकेट टीम रही है वुमेन्स एशिया कप की.

0: वहीं बांग्लादेश, याद रखिए आज से 8 साल पहले जब ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था तब खिताब जीतने में कामयाब रही थी। तो दिलचस्प रहेगा ये कॉन्टेस्ट किस तरह से आज जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री इन दोनों टीम्स के बीच में जरूर है, लेकिन अगर आप फॉर्म पे जाएं तो टेबल टॉपर्स रही थी भारतीय टीम, और अब उनका सामना दूसरे ग्रुप की सेकंड प्लेस्ड टीम यानी बांग्लादेश से इस पहले सेमीफाइनल में, और उम्मीद ये कि फाइनल्स में अपना स्थान पक्का करने में कामयाबी मिलेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन भनोट, और मेरे साथ मौजूद अंग्रेजी में कमेंट्री करने के लिए नीलाद्री सेन, और साथ साथ हमारे स्कोरर भगवत सिंह रावत और हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार। स्वागत आपका नीलाद्री।
1: थैंक यू रमन, गुड इवनिंग रमन एंड गुड इवनिंग लिसनर्स। वेल, द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द वुमेन्स टी20 एशिया कप इज अबाउट टू स्टार्ट एंड इंडिया विल बी प्लेइंग बांग्लादेश। एंड वेल, इन ऑल फेयरनेस, इंडिया will be starting as overwhelming favorites. Well, Raman, what's your take on that?
0: इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जब आप रिकॉर्ड की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम जब आप वुमेन्स एशिया कप के पुराने आंकड़ों पर नजर डालते हैं, 7 बार खिताब जीता, बांग्लादेश केवल 1 बार टाइटल जीतने में कामयाब रही, और जो 9 संस्करण हुए हैं इस टूर्नामेंट के उसमें 7 बार भारतीय टीम टाइटल विजेता रही है, 1 बार बांग्लादेश ने खिताब जीता है, और जो पिछला एडिशन था 2024 का एडिशन उसमें श्रीलंका की महिला टीम खिताब जीतने में कामयाब रही थी, जहां पर उन्होंने भारत को ही फाइनल में हराया था। तो आंकड़े तो बिल्कुल भारत के हक में ही हैं इस सेमीफाइनल के अंदर भी जाते हुए नीलाद्री। दिलचस्प बात यह कि बांग्लादेश की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दुबई की स्टेडियम की जो सतह है, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा निर्णय शायद भारतीय टीम के हक में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने गेंदबाजी चुनी, भारतीय बैटर्स के पास ये मौका है, रन स्कोरबोर्ड पे अगर एक बड़े क्रंच मैच में डाल दें तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी उसके बाद बांग्लादेश के लिए चेस करने में। दिलचस्प रहेगा ये कॉन्टेस्ट।
1: एब्सोल्युटली, एंड रिमेंबर बांग्लादेश हैव नेवर बैटेड सेकंड इन दिस टूर्नामेंट सो फार, दे हैव ऑलवेज बैटेड फर्स्ट, दे हैव डिफीटेड इंडोनेशिया बैटिंग फर्स्ट बाय 71 रन्स, एंड देन दे लॉस्ट टू श्रीलंका एंड दैट वाज बाय 4 विकेट्स, and then they went on to beat UAE by 34 runs, and in that particular match UAE played quite well, particularly towards the beginning of the Bangladesh innings, and then Bangladesh steadied ship courtesy Shermin Akhtar's 38 of 31 and Nigar Sultana's 23 of 28. Otherwise, well, they would surely have been defeated by UAE the way UAE were playing. So this is the first time that Bangladesh will be chasing. And as you have said, well, India are overwhelmingly favorites in terms of not only, you know, the statistics, but also keeping in view the recent form. India routed their opponents in this tournament. So far, they defeated Thailand by 94 runs. They went on to defeat Hong Kong, China by 137 runs. And then they beat Pakistan by 7 wickets. Remember, Pakistan were all out 55. And the Indian team as a bowling unit has been extremely impressive. Well, if there was any blemish, if there has been some vulnerability shown, well, then it was in the batting, as we have seen a couple of mini collapses, one against Thailand and one against Pakistan. 3 wickets falling, and in against Thailand also there were a few wickets in the middle order. So that has been the only vulnerability shown by the Indians. Otherwise, well, it has been a clinical performance so far by Harmanpreet Kaur and company.
0: बिल्कुल, और उसी अनबीटन रन को इस एडिशन के अंदर जारी रखना चाहेगी ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वहीं आप जब बांग्लादेश की टीम की बात करते हैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर, तो उनकी कहानी किस प्रकार की रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुकाबला जो आपने खेला इंडोनेशिया के खिलाफ, उसके अंदर आपको जीत मिली 71 रनों से, लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका को खेले तो 4 विकेट से हार मिली थी, और उसके बाद आखिरी मुकाबला जब आपने यूएई की वुमेन्स टीम के खिलाफ खेला तो वहां पे बांग्लादेश को उस मैच में 34 रनों से जीत हासिल हुई थी। तो सेकेंड प्लेस टीम रहे थे ग्रुप बी के अंदर बांग्लादेश की टीम। श्रीलंका ने ग्रुप बी को टॉप किया था, इसलिए श्रीलंका का वो सेमीफाइनल मुकाबला होगा पाकिस्तान से, और वो मुकाबला है सेकंड सेमीफाइनल, क्योंकि वो सेकंड प्लेस टीम रही थी पाकिस्तान ग्रुप ए की, तो 1 प्लेस 2, और इसी वजह से ग्रुप ए की टॉप रैंक टीम भारत, उनका सामना आज बांग्लादेश की टीम के साथ हो रहा है इस मुकाबले के अंदर। मरूफा

0: अख्तर के हाथ में है गेंद। 50 मैचेस खेले उन्होंने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में, 43 विकेट उनके नाम है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का जो प्रदर्शन रहा है उनका, वो 3 विकेट 21 रन देकर उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है किसी मैच में, वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी। और ये शायद बांग्लादेश की टीम का मजबूत पक्ष है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करने की क्षमता रखती हैं, अगर शुरुआती विकेट्स निकालने में कामयाब रही तो शायद मुश्किल में डाल सकती हैं भारतीय बैटर्स को। पहली गेंद इस मुकाबले की, स्विंग मिलता हुआ और राइट आर्म ओवर द विकेट, मध्यम तेज गति की स्विंग गेंदबाज हैं मरूफा, और गेंद स्विंग करती हुई आई स्मृति मंदना की ओर, पुश किया स्मृति मंदना ने, मिड ऑफ की दिशा में सिंगल ले लिया है, तो खाता स्मृति मंदना का भी खुलता हुआ और भारतीय टीम का भी खुलता हुआ। पहली गेंद पर एक बिना नुकसान।
1: Yes, मरूफा has been the most successful bowler for Bangladesh. She has pace and she has variation. She has a swing as you've just referred to. Marufa Akhtar has taken 7 wickets so far and she is at number 3 in the wicket takers list.
0: अगली गेंद मरूफा की, इस बार शिफाली वर्मा जो कि दूसरी ओपनिंग बैटर हैं भारतीय टीम के लिए, ड्राइव किया उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में, रन नहीं आएगा, सीधा मिड ऑफ की फील्डर की ओर ये शॉट खेला, इसलिए रन लेने का वहां मौका था नहीं, सोच जरूर थी पर सिंगल मिला नहीं। पर अच्छा स्विंग प्राप्त करती हुई मरूफा नई गेंद के साथ।
1: Yes, absolutely. And she has undone most of the batters with that swing as well. मरूफा अख्तर,
0: जल्दी से आपको एक बात और बता दें कि दोनों ही टीम्स इस मुकाबले में अनचेंज्ड 11 के साथ उतरती हुई। अगली गेंद इस बीच मरूफा की, और इस बार गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश दाएं हाथ की बैटर के लिए, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची भी रही, इतना ज्यादा उछाल नहीं था और कीपर को मुश्किल हुई कलेक्ट करने में, सेकेंड बाउंस पे कीपर तक वो गेंद पहुंची है, पर हल्की सी सीम मूवमेंट, इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला।
1: The ball to swing quite consistently. Marufa Akhtar, she took two wickets in the first match, 3 in the second and 2 in the third against UAE.
0: Shefali strike par agli gain, ek in swinger andar ki taraf aati hui right-hander batter ke liye, isko turn karne ki koshish mid-wicket ki disha mein, fielder maujood aur ek aur dot delivery, to ab back-to-back 3 dot deliveries khel liye hai Shefali Verma ne, aur thoda sa dabaab kyunki power play chal raha hai, इस वजह से एक अटैकिंग आक्रामक खिलाड़ी हैं शिफाली वर्मा, बल्ला चला के खेलना पसंद करती हैं, थोड़ा सा दबाव इन पे बनेगा।
1: And in the last match, she started with a 6 against Pakistan.
0: रिलीज शॉट क्या आ रहा है, लग रहा है ऐसा बड़े शॉट की सोच होगी जरूर शिफाली की। अगली गेंद बाहरी किनारा, स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, थर्ड पे फील्डर जरूर, डाइव लगा के अपनी बाई और उन्होंने बाउंड्री तो बचाई है, लेकिन इस बीच बैटर्स के पास इतना समय जरूर कि वो दो रन पूरे कर सकें। शिफाली वर्मा का खाता खुल गया इन दो रनों के साथ और भारतीय टीम का स्कोर अब 3 बिना नुकसान 5 गेंदों के बाद।
1: So lucky runs there for Shefali Verma. The ball was about to race towards the boundary, but ultimately just inside the boundary, the third man fielder did well to stop the ball.
0: अच्छा ड्राइविंग एफर्ट था वो बाउंड्री रोप पे, वाइडिश थर्ड पे बाउंड्री राइडर तैनात। याद रखिए कि पावर प्ले चल रहा है पहले 6 ओवर्स, यानी केवल 2 खिलाड़ी उस 25 गज के घेरे में, विमेन्स क्रिकेट के अंदर मेंस क्रिकेट की तरह वो 30 गज का घेरा नहीं बल्कि 25 गज का घेरा होता है, तो 2 फील्डर्स बाउंड्री के ऊपर उस घेरे के बाहर। पैड लाइन पर अगली गेंद, शॉर्ट फाइन सर्कल के अंदर, बीट कर दिया उस फील्डर को, 4 रन मिलेंगे शफाली को, ये 4 रन भारत के खाते में जुड़ते हुए और इन 4 रनों के साथ पहले ओवर की हुई है समाप्ति, 7 बिना नुकसान पहले ओवर के बाद।
1: So that was not the best of deliveries from Marufa, straying down the leg side and asking for trouble, and Shefali Verma just pouncing on that and getting a boundary. So that's the first boundary for the Indian team, and that will release the pressure to some extent on the batters.
0: Yeah, 50th T20 antarashtriya mukabla khel rahi hai Marufa Akhtar, तो दिलचस्प रहेगा कि विकेट्स की लय जल्दी पकड़ लें तो बेहतर रहेगा उनके लिए भी और बांग्लादेश की टीम के लिए भी, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह कि 7 रन स्कोरबोर्ड पे पहले ओवर के बाद शिफाली और स्मृति मंदना के बल्ले से रन्स निकले, यही उम्मीद रहेगी इस सेमीफाइनल में जीत आए, पहले तो बड़ा स्कोर आए स्कोरबोर्ड पे, इसी की सोच रहने वाली है।
1: Now it's Sultana Khatun now,

0: Smriti Mandhana, and this time it was on the midland leg, and Smriti Mandhana flicks it towards square leg and gets an easy single. So first run and the first ball of the second over.
1: जी हाँ, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर निलाद्री क्रीज पर है ना, इसी वजह से आपने ये सोच रखी कि एक ऑफ स्पिनर को लगा दें उस लेफ्ट हैंडेड बैटर के सामने, सोच रहेगी कि गेंद टर्न करके बाहर निकलेगा, पर स्मृति मानदना बहुत समझबूझ के साथ वो सिंगल ले लिया है। अब शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर है, ये दिलचस्प मैचअप रहेगा।
0: Absolutely. This time just a bit short and Shefali rocking to the back foot but can't pierce the infield here. 1, 2, 3, 4, 5 fielders manning the offside, and it has been fielded by the point fielder over there, and no run for that. So Shefali will be eyeing for a big shot as Sultana comes in, and this time Shefali goes over the top, over the bowler's head. That's very high. Did she clear? No, she didn't. Oh my goodness, she has been dropped in the long on, just inside the boundary, and everything's happening here. So a first opportunity for Bangladesh goes a begging.
1: Sultana ne yahan pe lalchaya tha Shefali ko ek bada shot khelne ke liye, gend ki pitch tak nahi pahunchi, uthakar long on ke upar se khelne ki koshish, fielder maujood thi boundary pe aur Fahima के द्वारा ये कैच जो कि लिया जाना चाहिए था वो कैच छूटा है, और एक बाउंड्री चेक भी किया जाता हुआ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या गेंद कहीं उनके हाथों से जब छिटकी है तो कहीं बाउंड्री कुशन को तो नहीं छू गई। जिन्हें ऐसा हुआ नहीं, अंत में केवल सिंगल शेफाली के नाम आया, पर दिलचस्प मुकाबला। अगली गेंद डॉट बॉल स्मृति मानदना के खिलाफ, तो बहुत कुछ घटता हुआ पहली तीन चार गेंदों में इस ओवर की।
0: एब्सोल्युटली, सो इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट एंड नेक्स्ट डिलीवरी जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड स्मृति मंदाना प्लेज इट डिफेंसिवली टुवर्ड्स मिड ऑन एंड द बोलर विल फील्ड इन हर फॉलो थ्रू। सुल्ताना खातून मिस्ड द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडोनेशिया, गॉट वन विकेट अगेंस्ट श्रीलंका एंड अनदर वन अगेंस्ट यूएई। The next delivery, and Smriti Mandhana this time goes for a big one, but mistimes it completely, and this time she's taken in the mid-on region. So Smriti Mandhana goes, the first wicket for India falls, and Smriti Mandhana goes scoring only 2 runs. So both the Bangladeshi bowlers have been very tight with their length, and the Indians trying to accelerate. Shefali Verma is skipping, but this time Smriti Mandhana doesn't have the good luck. She has been caught. That was a well-judged catch in the mid-on area, and Smriti Mandhana's innings comes to an end.
1: जी हाँ, 2 रन बनाकर स्मृति मानदना कैच आउट हुई। शोरना ने लिया वो कैच मिड ऑन पे, और सुल्ताना के नाम सफलता उनके ओवर की आखिरी गेंद पर। स्मृति मानदना को 66 रन और चाहिए थे लीडिंग रन गेटर बनने के लिए T20 आई क्रिकेट के अंदर, सूजी बेट्स के नाम वो रिकॉर्ड है, लेकिन आज मौका था स्मृति मानदना के पास उस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का, लेकिन 2 रन बनाकर हो गए हैं आउट। ये आंकड़े जो हैं, दिलचस्प स्टैट्स जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं कर्टसी मनोज कुमार जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं आज के इस मुकाबले के लिए। फिलहाल तो वह किफायती ओवर अंत में बनता हुआ, केवल 2 रन दिए, एक सफलता भी अपने नाम रही वहां पर गेंदबाजी करते हुए सुल्ताना के नाम। हमारे इस मुकाबले के स्कोरर भगवत सिंह रावत ये सारे नंबर्स हम तक पहुंचाते हुए 2 ओवर के बाद 9 रन स्कोरबोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान पे। नई बैटर प्रतिका, लेकिन फिलहाल जो ओवर की शुरुआत हुई है स्ट्राइक पर शेफाली वर्मा, मरूफा अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। 4 रन आएंगे शेफाली वर्मा के नाम, कोई वहां पे संदेह नहीं था उस शॉट को खेलते हुए। लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ा, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस पे किया बड़ा प्रहार मिड विकेट के क्षेत्र में, 4 रन अपने नाम किए।
0: So immediately after a wicket falls, Shefali Verma goes for a pull shot. This is what confidence is, and she has made a lovely contact and gets 4 runs there.
1: ग्राउंड की सतह ऐसी है जहां पर थ्रू द लाइन शॉट खेलना कई बार इतना आसान होता नहीं है, वही करने की कोशिश यहां पे

0: शर्मा के द्वारा ड्राइव किया है हवा में। मिडऑन पे फील्डर मौजूद थी और एक और मौका हाथ से छिटकता हुआ, एक और चांस बन सकता था कैच का। मिडऑन पे फील्डर मौजूद थी, उस इन स्विंगिंग गेंद पे बड़ा प्रहार करने की कोशिश शेफाली वर्मा की। बैट का हैंडल थोड़ा सा हाथ में मुड़ा जरूर, और इसी वजह से कांटेक्ट बल्ले के साथ गेंद का इतना अच्छा हुआ नहीं, और मिडऑन पे जो कैच लिया जाना चाहिए था वो कैच फिर चिटका।
1: So शेफाली वर्मा is having fortunes in her favor today.
0: 13 रन एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक आई है शेफाली वर्मा और पुश कर दिया इस गेंद को कवर्स की दिशा में। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट आसानी से उन्हें एक रन देगा और अब स्ट्राइक पर ले आएगा प्रतिका रावल को, नई बैटर जो क्रीज पे आई है। केवल चौथा T20I मुकाबला खेलते हुए अपने करियर का, 36 रन इनके नाम, 109 का स्ट्राइक रेट। और आप जब एक दिवसीय क्रिकेट की बात करते हैं और पिछले एक दिवसीय महिला विश्व कप की बात करते हैं तो प्रतिका रावल के जो बल्ले की जो कमाल आपने देखे थे ना, उनको आप भुलाइएगा मत। जिस तरह से वो फॉर्म उस टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया था, T20 में उसी फॉर्म को रेप्लीकेट करना चाहेंगी। अगली गेंद पिच टॉप डिलीवरी, ड्राइव किया है इसे मिड ऑफ की फील्डर को बीट करती हुई प्रतिका रावल, 4 रन करेंगे अपने नाम। खाता खोला है अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए प्रतिका रावल ने इस चौके के साथ, और भारतीय टीम का स्कोर इस चौके के साथ अब 18 एक विकेट के नुकसान पर।
1: यस सर, प्रतिका रावल डिडंट कंट्रीब्यूट मच इन दिस टूर्नामेंट सो फार, स्कोर्ड 22 अगेंस्ट थाईलैंड, 10 अगेंस्ट हांगकांग एंड 4 अगेंस्ट पाकिस्तान। But she's technically sound as a batter.
0: Yeah, बिल्कुल। इस इनिंग्स के अंदर अब तक 3 चौके लग चुके हैं। अगली गेंद मारूफा की इन स्विंगिंग गेंद, पुश कर दिया इसे हाफ फ्रंट फुट पे आई थी यहाँ पे प्रतिका रावल, कवर्स की दिशा में गैप ढूंढने में कामयाब। पहला रन जब तेजी से पूरा किया और दूसरे रन के लिए वापसी करी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां दिखाती हुई प्रतिका रावल, 2 रन और भारतीय टीम के खाते में जुड़ते हुए स्कोर अब 20 एक विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर के बाद।
1: प्रतिका रावल इज टेक्निकली साउंड एंड सो हर सक्सेस इन ODIs हैव बीन मच बेटर, वी टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस बॉल।
0: आउट स्विंगर इस बार मारूफा के द्वारा, आखिरी गेंद इस ओवर की बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, लगभग 6 से 8 मीटर लेंथ पे टप्पा और फिर थोड़ी सी मूवमेंट अवे फ्रॉम द राइट हैंड कीपर ने उसे कलेक्ट किया, डॉट बॉल के साथ करी है ओवर की समाप्ति और स्कोर 20 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद भारतीय टीम का। याद रखिए टॉस जीता था बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है सेमीफाइनल में भारतीय टीम के खिलाफ। और एक विकेट जो गिरा है अब तक वो विकेट स्मृति मानदना का विकेट जो गिरा, स्मृति मानदना 2 रन बनाकर कैच आउट हुई, शौर्णा ने कैच पकड़ा था सुल्ताना की गेंदबाजी पर उसके बाद अब एक साझेदारी पनपती हुई, 11 रनों की ये साझेदारी शेफाली और प्रतिका रावल के बीच।
1: Yes, and that was Shorna's 26th catch in T20 international cricket. Next delivery, Shefali facing Sultana, and this time she plays it towards the cover, and she will get no run for that. So Shefali remains on 12 of 11 deliveries, and India is on 20 for 1. This is the fourth over in progress. Sultana Khatun. This time Shefali comes out of charge and she puts it towards mid-wicket. There is cover and that's well fielded in the end. So that will be only a single for Shefali. In fact, she's taken a couple of runs. So that's well run at the end by Shefali. She moves on to 14 of 12 deliveries. And India move on to 22 for the loss of one wicket. That's the wicket of Smriti Mandhana. Next delivery on the off stump, and Shefali Verma trying to cut the ball but couldn't make contact. The ball goes towards the cover and no possibility of any run on that occasion.
0: किफायती गेंदबाजी करी है सुल्ताना ने, अपना दूसरा ओवर डाल रही है, केवल 4 रन अब तक कंसीड किए हैं 9 गेंदों में।
1: Next delivery and Shefali dances down the crease. This time she makes contact and this time she will get the maximum over the bowler's head. That's a 6.
0: पहला 6 जी हाँ बिल्कुल, पहला 6 इस इनिंग्स का और वो शेफाली वर्मा के बल्ले से आया है।

0: And Shefali Verma, this time making no mistake, having a very good contact with the ball end of bat and timing it well to perfection. And the ball sailing over mid-wicket, rather over the bowler's head for a six. And next delivery once again. She goes for a big one. Will she go over the fence? Yes, she does. That's another six. So back-to-back sixes here for Shefali Verma. She moves on to 26 of 15. And this is what is needed in the power play of a T20 match. And Shefali Verma is an attacking player. She knows how to do that. So the complexion of the match has changed to a certain extent with these back-to-back over boundaries. Next delivery. Oh, and this time she gets turned. There's an appeal, half-hearted appeal. And that's the end of the fourth over. India are 34 for the loss of one wicket.
1: 14 run us over se aate hue Sultana ke, jisme wo do bade sixes shamil the. और क्या करारी ये बल्लेबाजी करी है शफाली वर्मा ने उस ओवर के अंदर. देखिए जो दो बैटर्स इस समय क्रीज पर हैं, चार ओवर डल चुके हैं, 34 रन भारतीय टीम के नाम स्कोरबोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पे. जो दो भारतीय बैटर्स इस समय क्रीज पे, प्रतिकर रावल और शफाली वर्मा, इन दोनों के बीच एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है जिसके बारे में मैं बातचीत करूंगा. और वो 2025 के 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करूंगा जहां भारतीय टीम विजयी रही थी. और उस टूर्नामेंट के अंदर प्रतिका रावल जबरदस्त फॉर्म में थी. उस टूर्नामेंट में 7 मैचेस में 308 रन बनाए थे, 122 हाईएस्ट था, 51.33 की उनकी एवरेज रही थी. और फिर इंजर हो गई थी, और आपको याद हो जब वो इंजर हुई तो शिफाली ने उनकी जगह ली थी. और फिर उनका प्रदर्शन उस फाइनल में आप बुला नहीं सकते. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी थी, रन बनाए थे और करारी ये बल्लेबाजी करी थी शिफाली वर्मा ने फाइनल के अंदर. वो 87 रनों की पारी खेली थी केवल 78 गेंदों में. कितनी अहम रही थी वो इनिंग्स उस फाइनल के अंदर.
0: यस, एंड प्रतिका आल्सो गॉट 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड. दैट वाज हर सेकंड 100 इन ओडीआई. सो शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ इन 50 ओवर फॉर्मेट. नाउ इट्स टाइम टू प्रूव हरसेल्फ इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट एज अ न्यू बॉलर नाउ इज इंट्रोड्यूस्ड. इट्स नाहिदा.
1: जी हाँ, दो ओवर डाले थे मरूफर अख्तर ने इस छोर से. तेज गेंदबाज की जगह अब एक और स्पिनर का इस्तेमाल, लेफ्ट आर्म स्पिन, क्योंकि दो राइट हैंडेड बैटर्स क्रीज पर हैं. इसलिए अब नाहिदा से गेंदबाजी कराई जाती हुई पहली गेंद बैक फुट पर जाके टर्न कर दिया इस गेंद को वाइड ऑफ मिड ऑन. एक आसान सा सिंगल आएगा पहली गेंद पर. 35 रन स्कोरबोर्ड पे एक विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर के बाद. प्रतिका रावल, बिल्कुल सही काम किया आपने, सिंगल लिया, मौका दिया. यहाँ पे एक नई गेंदबाज आई है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगेंस्ट द टर्न लेग साइड पे खेलने जाएंगी तो मुश्किल रहेगा. फील्ड की सजावट ये डीप मिड विकेट बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे आम. और अगली गेंद इसको ड्राइव करने की कोशिश रही है, मिड ऑन को बीट करने की सोच थी शफाली वर्मा की. अच्छी डाइविंग एफर्ट वहां पे फील्डर के द्वारा, गेंद को सर्कल के बाहर जाने से रोका, लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगी. एक रन और आएगा भारतीय टीम के नाम. 36 एक के नुकसान पर भारतीय टीम. इतना पहला ओवर डाल रही है अपने स्पेल का, इस पारी का पांचवा ओवर, यानी इस ओवर के बाद एक ओवर और पाप ले का बाकी. पुश ड्राइव कवर्स की दिशा में कोई रन नहीं प्रतिका रावल के नाम इस बार. एक डॉट डिलीवरी नाहिदा के द्वारा.
0: नाहिदा अख्तर has played 110 matches and has taken 138 wickets, it's very experienced.
1: यहां एक बार फिर वो आम नाहिदा अख्तर के द्वारा बैक फुट पर जाकर मिड ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश. सीधा बैक टू द बोलर खेला है इसको प्रतिका रावल ने. दो बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज इस ओवर के अंदर आती हुई. पांचवी गेंद लेफ्ट आर्म राउंड, इस बार हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया है वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में. और जब तक फील्डर आके गेंद को फील्ड करेंगी आसानी से एक रन और प्रतिका रावल अपने नाम करेंगी. प्रतिका रावल अब 8 पे पहुंच गई है सिंगल के साथ. और भारतीय टीम का स्कोर 37 एक विकेट के नुकसान पे. नाहिदा अख्तर, जब आप इनके T20 आई आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो 128 विकेट हैं इनके नाम. इस बार अगली गेंद स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश, शफाली वर्मा की लीडिंग एज लगाए, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकली है.

0: ग्लोब तक नहीं पहुंचेगी जब तक फील्डर गेंद को रोककर वापस थ्रो कर पाए। वहां पर दो रन और जुड़ते हुए और इसी के साथ हुई है पांचवें ओवर की समाप्ति। 39 एक विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम एक ओवर बचाए नीलाद्री पावर प्ले का, और कोशिश भारतीय टीम की यही दिखी है कि वो पावर प्ले में मैक्सिमम रन्स बटोर सके।
1: Absolutely, and to do that, Shefali Verma is on the crease. Smriti Mandhana is the only player out so far. So it has been a good battle between ball and bat, and the Bangladeshi bowlers started well, but then Shefali Verma hit a couple of sixes and just a bit changed the complexion of the power play to some extent and got it in favor of India. Now we have to see who will be bowling the last over of the power play. It will be Rabea Khatun. And Rabea Khatun, spinner, comes in and she hits the pad. There is an appeal for leg before. The umpire is unmoved. The ball was straying down the leg side, I reckon.
0: जी हाँ बिल्कुल, लेग स्टंप को मिस कर जाती गेंद। एक इनिशियल रिएक्शन अंपायर की तरफ से शायद सोच का था, पर फिर देखा कि बाकी मिडिल और ऑफ स्टंप साफ दिख रही थी जब कांटेक्ट पैड के साथ हुआ।
1: एंड दैट वाज जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड प्रतीका रॉक्ड बैक टू द बैक फुट बट कुडंट मेक अ गुड कांटेक्ट ऑफ द बॉल, कुडंट प्लेस द बॉल टू परफेक्शन। द बॉल इज फील्डेड बाय द कवर फील्डर एंड देयर इज नो रन। प्रतीका नाउ next delivery straying down to the leg side. Once again, Pratika unable to flick the ball. So this can be just a bit costly because one would reckon Shefali would have been a better bet to be on the striking end in this last over of the power play. Next delivery. And this time, Pratika comes out and she hits it over mid-wicket and that will go the distance. That's a six.
0: थोड़ा सा विपी आर्म एक्शन है रबिया का। प्रतिका रावल पहली दो तीन गेंदें लगी उसको थोड़ा सा उसकी यूज टू होने के लिए, लेकिन उसके बाद अगली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंची और उसके बाद वो बॉटम हैंड का प्रयोग, एलिवेशन ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उस शॉट में, और दूरी भी मिली पूरी यानी तीछे की मंजूरी, बहुत करारा प्रहार सिक्स के लिए।
1: एंड नेक्स्ट डिलीवरी जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड दिस टाइम प्रतिका रावल गेट्स द थिक आउटसाइड एज, wanted to play towards mid-wicket. The ball goes towards mid-off and the bowler feels in her follow-through. No run for that. So it's a good over except for that over boundary. Next delivery. Once again, short and she wanted to cut the ball. Once again, finds the fielder inside the circle. So that's the end of the over and five dot balls coming in that over. So that will make the Bangladesh captain happy. And Pratika Rawal only hitting 1-6.
0: तो चलिए, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 6 ओवर समाप्त और भारतीय टीम का स्कोर 45 एक विकेट के नुकसान पर। वो ओवर रबिया खान का 6 रन आए उस ओवर से, वो एक बड़ी हिट, वो एक सिक्स जो आपको देखने को मिला था। एक विपी आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करती हैं, लेग ब्रेक गेंदबाज हैं रबिया खान, पर उनके एक्शन को पिक कर पाना इतना आसान है नहीं कि कब वो लेग ब्रेक डाल रही हैं, कब गुगली का इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए शायद वो पहला ओवर थोड़ा सा भापने में निकल गया प्रतिका रावल के लिए। पर अब देखना यह है कि जब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खुलती हैं, अब आप चार फील्डर उस 25 यार्ड के घेरे के बाहर ले सकते हैं। वुमेन्स क्रिकेट में ये एक और बदलाव है मेंस क्रिकेट की तुलना में, जहां पे पावर प्ले के बाद मेंस क्रिकेट में आप पांच फील्डर्स ले सकते हैं उस 30 गज के दायरे के बाहर जो मेंस क्रिकेट में होता है। वुमेन्स क्रिकेट में वो 25 गज का घेरा इनर सर्कल, और उसके बाहर आप पहले 6 ओवर्स के बाद चार फील्डर्स ले सकते हैं। तो पांच फील्डर्स को सर्कल के अंदर रखना अनिवार्य, और अब यहां पे गैप्स खुल जाते हैं उन सिंगल्स और टूज के लिए। तो स्ट्राइक रोटेशन किस तरह से कर पाती है ये भारतीय टीम, वो दिलचस्प रहेगा देखना। करंट रन रेट 7.50 की। शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर, नाहिदा नए ओवर की शुरुआत करती हुई, इस बार बैकफुट पे गई और गेंद को खींच दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक आसान सा सिंगल आएगा शेफाली वर्मा के और भारत के नाम 46 स्कोरबोर्ड पे। तो एक नपीतुली शुरुआत रही है, रन रेट अच्छी है। सिर्फ एक विकेट नीलाद्री जो गिरा है वो स्मृति मानधना का विकेट, जो केवल 2 रन बनाकर आउट हुई।
1: Yes, of course, and the next delivery.

0: now in the deep, and she'll get a single for that.
1: जी आसान से सिंगल वहां पर रन बॉल, अब यही मैं बात कह रहा था, जैसे ही वो पावर प्ले समाप्त हुआ अब आपको गैप्स खुलते हुए देखेंगे फील्ड के अंदर और मौका बनेगा स्ट्राइक रोटेशन का, सिंगल्स को निकालने का, वो बाउंड्रीज लगाने का आपके पास अवसर पावर प्ले में था, अब मैक्सिमाइज कीजिए स्ट्राइक रोटेशन पे सिंगल्स को। लेकिन अगली गेंद नाहिदा की, इस बार ऑफ स्टंप लाइन पर, बैक फुट पे गई प्रतिका, डॉट बॉल, आसानी से इसको डिफेंसिवली वापस खेला गेंदबाज की तरफ, और ये थोड़ी सी मुश्किल का सबब बन सकता है जब आप डॉट बॉल्स इस फेज ऑफ द गेम में मध्य के ओवर्स में आप खेलना शुरू करें। यहां पे आपके पास स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल्स लेने का चांस है। अगली गेंद बैक फुट पे गई, अगेंस्ट द टर्न गेंद को मोड़ा है वाइडिश डीप मिड विकेट की तरफ, इस गेंद को खेला जब तक फील्डर बाउंड्री रोप से आकर फील्ड करेंगी, आसानी से एक रन और प्रतिका रावल के नाम, प्रतिका रावल पहुंच गई है 16 पर, रन अ बॉल पारी खेलती हुई प्रतिका रावल। वहीं शिफाली वर्मा अब स्ट्राइक पर 31 पे बैटिंग कर रही है, 20 गेंदों में केवल बनाए हुए ये 31 रन। अगली गेंद को पुश किया है कब पॉइंट की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं आएगा और डॉट बॉल के साथ होगी 7वें ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 49 एक विकेट के नुकसान पर।
0: Yes, and Shefali Verma is the key batter at the moment for India, and she can single-handedly change the entire complexion of a match. She's at number two in this tournament in terms of scoring runs. Before this match, she had scored 104, just behind Shruti Mandhana, who scored 152 before this match. Another two runs, 154 in all so far for Shruti Mandhana. Shefali has been quite successful, scoring 64 of 36 in the first match. As Rabia will continue, she's given 6 runs in the first over. This time she strays down the leg side and Pratika flicks. There is a bit of a misfielding there in the square leg area, and she will nonetheless get only a single for that. Jiraiya Firdaus was there, just misfielding, but you do not take an extra run and misfield is what the original order of the coaches say. They've only taken a single for that. A bit of a different type of a
1: देखिए इनका
0: बोलिंग एक्शन इजन इट।
1: जी हाँ, इनका जो एक्शन है ना थोड़ा सा मिस्ट्री एक्शन है, विपी आर्म एक्शन है रबिया का। अगली गेंद स्टंप लाइन पर पुश किया है कवर्स की दिशा में, इस बार कोई रन नहीं आएगा। शिफाली वर्मा डॉट बॉल खेलती हुई, इनके एक्शन अनलाइक जैसे लेग स्पिनर्स का एक्शन होता है थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन, इनका इतना राउंड आर्म एक्शन नहीं है, हाई आर्म एक्शन रखती है और इसलिए ज्यादातर गुगली का इस्तेमाल करती है ये।
0: एब्सोल्युटली, एंड दिस टाइम शिफाली कम्स आउट ऑफ चार्ज एंड सीइंग दैट द बॉलर जस्ट पिचिंग दैट शॉट, एंड शिफाली plays it towards a cover and she will get an easy single for that. So we have to wait and see how Shefali paces her innings. She's scored 32 of 23 already. Next delivery, Pratikani is now on strike way down the leg side, and that will be called a wide, I reckon. And that's a wide, the first wide of the match. Yes, the first wide of the match. Our scorer Bhagwat Singh Rawat confirms that it's the first wide of the match coming in the eighth over for Bangladesh. Short delivery, next one on the leg stump, and it has been played towards mid-wicket, and Pratika will get a single. So she moves on to 18 now, 18 of 18 deliveries. She did hit a six, but she played plenty of dot balls.
1: जी हाँ, 9 डॉट डिलीवरीज खेल चुकी हैं प्रतिका शिफाली, 10 डॉट डिलीवरीज खेल के बैटिंग करती हूँ फिलहाल। ये बैकफुट पंच, लेकिन सीधा एक्स्ट्रा कवर की फील्डर की ओर, इस बार कोई रन और नहीं आएगा, तो एक और डॉट डिलीवरी। 32 पर बल्लेबाजी कर रही है शिफाली वर्मा केवल 24 गेंदों में, तो स्ट्राइक रेट तो इनका जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं।
0: एब्सोल्युटली, एंड नाउ द लास्ट बॉल, दैट वाज अ गुगली, एंड शिफाली just adjusting her shot and plays it towards third man, and that will end the over. So 53 for 1 is the score of India after 8 overs.
1: अच्छी शुरुआत रही है शेफाली वर्मा के बल्ले से, 2 मैक्सिमम्स इस इनिंग में देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं अब, और कुल 90 सिक्सेस T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शेफाली वर्मा के नाम है। स्मृति मांदना ने 95 सिक्सेस लगाए, यानी उस सूची के ऊपर बिल्कुल टॉप ऑफ द पाइल, टॉप ऑफ द टेबल स्मृति मांदना 95 सिक्सेस के साथ, शेफाली वर्मा के नाम 90। मौका है अगर आज क्रीज

0: बनी रही, क्या पता उस आंकड़े को पार कर देंगे। ये स्टैट्स आपकी तरफ आते हुए हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार की सौजन्य से यही कहूंगा। पर चलिए फिलहाल तो करंट रन रेट जो है 6.63 की, और अगर इसी करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी करती रही भारतीय टीम तो उम्मीद ये रहेगी कि आप 133 के आसपास स्कोरबोर्ड पे डाल सकें, जो इस सतह पे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक अच्छा स्कोर रहेगा। फाहिमा अब नई गेंदबाज आई है गेंदबाजी करने के लिए, नाहिदा अख्तर की जगह पहली गेंद, डॉट बॉल, गेंद थोड़ा सा रुक कर आया इस सतह से, लेग स्पिनर है ये भी, गेंद काफी घुमाव मिलता हुआ उस गेंद को, लेकिन हल्का सा सतह से रुक कर गेंद आई, इसलिए शॉट को चेक करना पड़ा प्रतीक रावल को, कोई रन नहीं मिला उस पहली गेंद पर। अगली गेंद एक बार फिर थोड़ी सी फ्लाइट दी है, डिप भी मिलता हुआ उस गेंद पे, प्रतिका ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ड्राइव किया है वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन और आएगा उनके नाम, वो पहुंच गई है 19 पर, और ये साझेदारी अब प्रतिका रावल और शिफाली वर्मा के बीच 45 रनों की हो गई है।
1: Yes, and the spinners are getting significant turn. Once again, this ball straightening, and it has been played down the ground towards long on, and Shefali will get a single for that. 33 is Shefali's score at the moment. She scored it playing 26 deliveries. India are on 55 for one. This is the ninth over in progress.
0: अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आने की कोशिश प्रतिका रावल की, वो इनसाइड एज, गेंद गई है शॉर्ट पाइन की तरफ, एक सिंगल आएगा वहां पर प्रतिका रावल के नाम, और सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइकर्स एंड की ओर जाती हुई यहां पे प्रतिका 20 पे पहुंच गई है प्रतिका रावल, शिफाली 33 पर फिलहाल स्ट्राइक पे। अगली गेंद डाउन लेग, मुश्किल कीपर के लिए, और यहां पे रन आएंगे क्योंकि कीपर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई है, शॉर्ट फाइन की फील्ड जब तक दौड़कर उस गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगी। बैटर्स ने एक रन दौड़ लिया है और एक रन और वाइड का भी मिलेगा, यानी कुल दो रन जुड़ जाएंगे खाते में भारतीय टीम के, और इसका मतलब अब भारतीय टीम का स्कोर 58 एक विकेट के नुकसान पर, और ये साझेदारी अब 49 रनों की हो गई है, यानी 50 से केवल एक दूर इस पार्टनरशिप में। बैकफुट पर जाके कट करने की कोशिश अगली गेंद पे प्रतिका रावल की, लेकिन सीधा पॉइंट की फील्डर की ओर, कोई रन वहां आएगा नहीं उस गेंद पर। फाहिमा फिर तैयार अगली गेंद जान डालने के लिए। इस मुकाबले में काफी कुछ निर्भर रहेगा इनके ऊपर, जिस तरह का अनुभव इनके पास है। कट करने की कोशिश, ओ मिस हुई गेंद कीपर के ग्लव्स से, क्या बाहरी किनारा था, विकेट कीपर और गेंदबाज के रिएक्शन से तो शायद ऐसा लगा कि एक किनारा लगा था बल्ले का, पर ग्लव में गेंद फंसी नहीं और डॉट बॉल के साथ हुई है ओवर की समाप्ति 58 पर एक, उस 9वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर।
1: सो बांग्लादेश बॉलर्स आर एट टाइम्स ट्रबलिंग द इंडियन बैटर्स, बट एट द मोमेंट इंडिया वेल प्लेस्ड they have lost only one wicket, that of Smriti Mandhana, who went early, scoring a couple of runs only in this innings. Shefali Verma is the key player, and Rabia to continue. First ball just a bit short, and Shefali plays it towards extra cover, and it has been fielded just inside the boundary, and she will get one run for that. The 50 run partnership comes up with that single, 50 of 45 deliveries, so that's a good looking partnership. And this time Pratika comes out, dances down the crease, goes for a big one but can't clear the fielder, and she will be caught as well, so another wicket goes. She wanted to come out of the crease and play it over the bowler's head but couldn't time it at all. And the Bangladeshi fans are happy as they get the second wicket.
0: या कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंची थी वहां पर प्रतिका रावल, 23 गेंदें निकल गई है, बाउंड्री नहीं आई थी, इसी वजह से दबाव बन रहा था दोनों बैटर्स के ऊपर, वो बाउंड्री हिट की तलाश में कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए, गेंद की पिच तक पहुंची नहीं प्रतिका रावल, हवा में खेला उस शॉट को, दिलारा ने अच्छा कैच पकड़ा सेकेंड अटेम्प्ट पे, फर्स्ट अटेम्प्ट को जगल किया था दिलारा ने, लेकिन उसके बाद रिकवर किया, सेकेंड अटेम्प्ट पे कैच को अंजाम दिया, और रबिया खान के

0: नाम आई है वो सफलता। प्रतिका रावल वापस डगआउट लौटती हुई 20 रन बनाकर।
1: कैथून गेट्स अ विकेट एंड सक्सेस फॉर हर टीम एंड कैच एज ब्रह्मन वाज सेइंग वाज नॉट क्लीनली टेकन रिमेंबर देयर as many as three catches dropped today already, and Shefali Verma has been in the lucky.
2: Lucky end of it. A couple of catches of Shefali Verma has been dropped today. Shefali is still in the crease, and she will try to make the most of those lucky moments that she got in her innings. But Pratika Rawal is out, and well, now the captain will be coming in, I believe, Harmanpreet Kaur.
3: Yeah. दोनों टीमें अनचेंज्ड 11 के साथ उतरी हैं इस मुकाबले के अंदर, तो लाइनअप्स में कोई चेंज नहीं है। भारतीय बल्लेबाजी के क्रम में वो गहराई है, हरमनप्रीत कौर, भारतीय फुलमाली, ऋचा घोष जैसी बैटर इस लाइनअप के अंदर शामिल, दीप्ति शर्मा हैं, तो बल्लेबाजी में तो वो गहराई है, आपको मध्य क्रम के अंदर वो रन्स आसानी से मिल सकते हैं।
2: Yes, but the middle order of India is yet to be tested that way. We've seen quick wickets falling, but Harmanpreet Kaur did play a pretty good innings against Pakistan when a couple of wickets fell very quickly. She steadied the ship and she made 18 of 18 deliveries and steered her team home. So far, India have won all the matches quite comprehensively. And this is the semi-final, remember. And India have always played the finals of Asia Cup right from 2004. In 2004, there were only two teams, mind you, India and Sri Lanka. But since then, when multiple teams started competing in Asia Cup, India have always been in the finals. And out of 9 times, India won 7. And they were beaten only twice. Last time they were beaten by Sri Lanka, and in 2018 by the team they are playing against today, that is Bangladesh. So the captain is in the crease now, Harmanpreet Kaur, and she has to shoulder some responsibility now and steer her team to a good score. India at the moment are on 59 for 2. And the first delivery has been swept, and there is an appeal for a leg before, though. The umpire is unmoved. So that was quite a risky shot to play to start with.
3: Jiyan, bahut zarurat thi nahi shot ki, aur shayad review mang liya hai Bangladesh ki gendbaz ne us leg before ki appeal, jisko not out diya gaya hai, usko challenge kiya hai, DRS ka review mang liya hai wahan pe. और ये दिलचस्प रहेगा देखना, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति थी। आप स्टंप की लाइन में जो गेंद का टप्पा पड़ा उसको आपने स्वीप करने की कोशिश की और मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता। उसके बाद शिफाली वर्मा भी सिंगल के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर देख नहीं रही थी कि वो सिंगल है या नहीं, वो पीछे गेंद की तरफ देख रही थी। थ्रो आके लगा नॉन स्ट्राइकर्स एंड के ऊपर स्टंप्स पे, और शिफाली वर्मा क्या वापस पहुंच गई हैं क्रीज में, ये चेक करने की कोशिश हो रही है, और वो पहुंच गई है। तो वहां पे तो कोई यहाँ पे संदेह नहीं बचा है कि रनआउट के लिए कोई वहां पे अब रिस्क नहीं है आपका।
2: Yes, and in all fairness, it was quite a risky shot to play to start with for the Indian captain. Harmanpreet Kaur is the only woman cricketer who has played over 200 T20 internationals, 206 to be precise. And that is Manoj Kumar, our statistician, coming in with this bit of information. And meanwhile, that run out attempt is being checked by the third umpire again and again. The question is whether the bat was on the ground.
3: और देखिए अब तो रूल्स भी बदल गए ना, एक बार अगर आपने क्रीज के पीछे यानी क्रीज के अंदर आके एक बार बल्ले को जमीन पे लगा दिया है, उसके बाद भले बल्ला दोबारा उठ भी जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बैट एक बार क्रीज के पीछे ग्राउंड हो गया है स्टंप्स के बिखेरे जाने से पहले, तो आप नॉट आउट हैं। और शायद इसी बात की पुष्टि होनी बाकी है कि वो बैट ग्राउंड कर दिया था। अगर बैट ग्राउंड हो गया उसके बाद भले वो बैट उठ भी गया हो जब

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस

0: inspired our imagination. Today, it saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
0: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
0: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम

0: शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। 2 दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशु

0: पालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul, including a gold. And in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final.
3: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
4: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness,

0: And she will get a single, and finally she will settle in the non-striking end, as this time she was lucky enough. Ball fell much short of the mid-wicket fielder manning the boundary. Harmanpreet, this time it was very short, and Harmanpreet finding the square leg, and was it a catch? Drop once again, straight to the square leg fielder, and that was Juraya Firdosh.
1: देखिए मौका तो था, मौका तो ऐसा लग रहा है कि था, जिस तरह से स्विवल करके उस पुल शॉट को खेलने की कोशिश करी हरमनप्रीत कौर ने, फील्डर स्क्वायर लेग पर बिल्कुल अंपायर की बाई ओर खड़ी थी उस समय, और कैच का मौका बन सकता था। पर चलिए, 120 रन है स्कोरबोर्ड पर, और यहां से उम्मीद रखेंगे कि बची हुई जो अब 14 गेंदे हैं इस इनिंग्स में, उस पे आप कम से कम 20 रन और बटोर लीजिए, क्योंकि सर्वाधिक स्कोर जो अब तक इस टूर्नामेंट में देखा है वो आपने 160 का देखा है, वो भारतीय टीम ने ही हांगकांग के खिलाफ बनाया था।
0: Absolutely, and the next delivery way outside the off stump, and Richa Ghosh was asking, pleading for a wide, and finally, wide has been signalled by the umpire. So Shona will have to re-bowl it. Shona Akhtar is bowling her first over in this match, and Richa Ghosh at the moment is facing her. And she dances down the crease, goes inside out, and will get the maximum over covers. That will be a six. The 36th six of the Asia Cup 2026. Richa Ghosh hits another one, and that was very well timed. And she's a very strong player, attacking player, and she has been elevated in the batting order exactly to do that. So she gets another six. Next delivery, very short outside the off stump. Richa Ghosh goes for a cut shot, but finds the backward point fielder, and no run there. So the 18th over is over, and India are on 127 for the loss of 3 wickets.
1: बात कर रहे थे सर्वाधिक स्कोर की इस टूर्नामेंट में, इस एडिशन के अंदर 193 बनाए थे भारतीय महिला टीम ने, वो एक ही बार हुआ है कि 160 का आंकड़ा इस एडिशन में पार हुआ है, और वो 193 बनाए थे हांगकांग की टीम के खिलाफ, वो लीग स्टेज का मुकाबला था, 5 विकेट के नुकसान पे 193 बने थे। ये उस तरह की सतह है नहीं कि आपको 160 के ऊपर का स्कोर इतनी आसानी से दिखेगा या बनेगा, ये सतह 120-125 का औसतन स्कोर है जो आप पार स्कोर कहते हैं, तो अगर आप 140-142 तक चले जाती हैं तो वो आपके लिए एक अबव पार स्कोर स्कोरबोर्ड पे होगा, एक सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर एक बड़ी उपलब्धि होगी, और भारतीय टीम की कोशिश यही रहने वाली है। 19वां ओवर इस पारी का, और नाहिदा आई है गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद पे स्लॉग स्वीप की कोशिश हरमनप्रीत कौर की, संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में उस तरह का हुआ नहीं, एक डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत करी है। नाहिदा ने भी बहुत किफायती गेंदबाजी करी है, इससे पहले 3 ओवर डाले, उनमें केवल 15 रन दिए, और जो अभी मोमेंटम बना है भारतीय टीम के लिए उसको तोड़ने के अंदर इनका बड़ा योगदान रहेगा, अगर यहां पे एक विकेट निकाल लेती हैं तो इस ओवर में। पर अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड खेला है हरमनप्रीत ने, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, केवल सिंगल आएगा, और सिंगल के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब 128 3 विकेट के नुकसान पर।
0: Can Richa Ghosh hit a couple of sixes more? She's shy, too shy of 50 sixes in T20 cricket. And that's an information that we got from our statistician, Manoj Kumar.
1: फिलहाल अगली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल, बीट हुई है टर्न से, और फ्लाइट में स्टंपिंग का मौका, और विकेट आई है Richa Ghosh की, क्या स्टंप आउट हो गई है? एक अंपायर्स रिव्यू जरूर मांगा गया स्क्वेयर लेग अंपायर के द्वारा उस स्टंपिंग के लिए, क्योंकि डाइव करके क्रीज में वापस पहुंचने की कोशिश करी थी Richa Ghosh ने, जब फ्लाइट में बीट हुई, गेंद की पिच तक नहीं पहुंची, गेंद टप्पा खाने के बाद घुमाव लेती हुई बाहरी किनारे को बीट किया, कीपर ने गेंद को कलेक्ट करके जब बेल्स बिखेरी तो Richa Ghosh का बल्ला हवा में है, और इस बात की पुष्टि रीप्ले पे हो जाएगी, तो विकेट का पतन होगा एक और भारतीय खेमे के अंदर, चौथी विकेट का पतन 128 के टीम स्कोर पे, चौथी विकेट गिरी है Richa Ghosh, 21 रन बनाकर स्टंप

0: आउट हुई हैं निगर के द्वारा एक अच्छी स्टंपिंग और ऋचा घोष की एक आतिशी आक्रामक पारी एक कैमियो समाप्त हुआ है वो 21 रनों की इनिंग्स लेकिन स्टंप आउट हुई हैं अब ऋचा घोष.
1: वेल रमन ऋचा घोष मिस्ड हर 50th सिक्स ऑल राइट बट निगार सुल्ताना गॉट हर 50th स्टंपिंग बाय स्टंपिंग Richa Ghosh. So that's a record of sorts, isn't it?
0: Yes, one person's joy is another one's loss, isn't it? Niladri, बिल्कुल यही होता है ना
1: कि Absolutely.
0: जहाँ एक तरफ खुशी है वहीं वो पहलू और दो एंड्स उस पहलू के जरूर दिखते हैं. पहले सेमीफाइनल के अंदर वुमेन्स एशिया कप 2026 T20 फॉर्मेट में खेला जाता हुआ दीप्ति शर्मा नई बैटर क्रीज पे आई हैं और इनके नाम भी 1288 रन बहुत अनुभवी बैटर हैं. दो अच्छा तक इनके नाम 64 इनका भी सर्वाधिक स्कोर सिलेट में 2022 के अंदर वो 64 रनों की पारी खेली थी. स्ट्राइक रेट 107 का और यहां से आते ही बल्ला चलाना पड़ेगा. अगली गेंद अंदर की तरफ टर्न करती हुई लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए इसको पुल कर दिया है इस बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की दिशा में सिंगल दीप्ति के नाम. दीप्ति ने अपना खाता खोला है सिंगल के साथ.
1: Yes, Dipti also has a strike rate of over 100 and 106.79 has been her strike rate. She's played 152 matches so far, scored 1,288 runs before coming into the crease today.
0: अगली गेंद डालने के लिए तैयार यहाँ पे नाहिदा. इस बार हरमनप्रीत कौर ने इसको उठा के खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो ड्राइव और दूसरे रन के लिए वापसी करी जब तक थ्रो आता स्वीपर कवर की फील्डर के द्वारा दो रन और बटोरने में कामयाब ये भारतीय जोड़ी हरमनप्रीत और दीप्ति की और दो रन और भारतीय टीम के खाते में जुड़ते हुए स्कोर 131 चार विकेट के नुकसान पर यह बहुत अच्छा ओवर रहा है अब तक नाहिदा का. केवल चार रन आए हैं अब तक पांच गेंदों में और याद रखिए ये पारी का 19वां ओवर है तो ये बता रहा है किस कंट्रोल से गेंदबाजी करी है नाहिदा ने. अपने स्पेल में 3.5 ओवर डाले हैं अब तक नाहिदा ने केवल 19 रन दिए हैं एक विकेट भी उनके नाम जो ऋचा घोष का विकेट जो इसी ओवर में उन्होंने अपने नाम किया था जब स्टंप आउट किया था ऋचा घोष को. अपने स्पेल की अब आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार नाहिदा और इस बार फुल टॉस उस पे बड़ा प्रहार हरमनप्रीत कौर का ये बार 6 के लिए मिड विकेट के ऊपर से खराब गेंद लेकिन उसे बिल्कुल सही नसीहत दी है हरमनप्रीत कौर ने. 6 लगाया उस गेंद पे ओवर की समाप्ति 19 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 137 अब 4 विकेट के नुकसान पर.
1: सो नाउ द फाइनल ओवर विल बी बोल्ड एज नाहिदा completes her spell. And Nahira has conceded 25 runs in 4 overs, getting 1 wicket. And this happens to be her 6th wicket in this tournament so far. Nahira has got 3 wickets, 3 for 15 against Indonesia and 2 for 18 against UAE. Didn't get a wicket against Sri Lanka though, but she's already got one, that of Richa Ghosh, in this match. And Richa Ghosh has played her part in this particular match. And finally, Marufa, the key bowler for Bangladesh, is back for the final over. She had conceded 28 runs. Get a wicket. Was a bit unlucky not to get a wicket because Shefali Verma was dropped of her bowling. So, what is Marufa up to now? She sometimes bowls slower deliveries in the death, and she's come around the wicket to Deepti Sharma, and she plays it down the ground, but that's well fielded by the bowler in her own follow through. No run. So, the first ball of the last over is a dot delivery, dot ball. So, that's a good start from Marufa. So far, she has given 28 runs in the first 3 overs. Deepti Sharma is on 1 of 2 deliveries. This time, she makes room outside the leg stump, goes inside out, and she will find the point boundary. That will be 4 for Deepti, 4 for India. And the score for India moves on to 141. So the 141.

0: 40 is up, Raman, as we were discussing. 140 plus is really a decent score on this particular wicket.
1: अब तो उम्मीद होगी कि 150 रन भी स्कोर बोर्ड पे आ जाए, क्योंकि आप वहां से 9 रन दूर है केवल। ये दिल मांगे मोर यही सोच रहेगी ना भारतीय टीम की। अभी भी 4 गेंदें बची हैं, 4 गेंदों में 9 रन और 2 बाउंड्री हिट्स और आपका काम हो जाएगा।
0: काम हो जाएगा इज व्हाट रमन फील्स। सो कैन इंडिया बैट बांग्लादेश आउट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, वी हैव टू वेट एंड सी।
1: और बड़े मुकाबलों में यही चुनौती होती है, आपने टॉस जीता लेकिन आपने गेंदबाजी चुनी। एक क्रंच मैच में जहां पे रन्स ऑन द बोर्ड मैटर करते हैं, आपने वो मौका दे दिया भारतीय टीम को 150 रन स्कोरबोर्ड पे डालने का, और भारतीय टीम ने उस मौके को अब तक भुनाया है।
0: एब्सोल्युटली, एंड रिमेंबर बांग्लादेश हैव नेवर बैटेड सेकंड इन दिस टूर्नामेंट सो फार।

0: Absolutely. And remember, Bangladesh have never batted second in this tournament so far. They have always batted first. So this is the first time that they will be chasing a total. And this will be a good total to chase. Next delivery, once again, full length, and it has been dispatched over the long on boundary for another six. Dipti Sharma is on song at the moment. That's exactly what India needed in the final over. Marufa has been a very good bowler, but she's not getting her length right in the final over. She is surely under pressure at the moment. She's a young bowler, 21 years of age. And this is a big match for her. And she is bowling against a formidable batting lineup.
1: दीप्ति शर्मा, मैं आपको बता दूं कि T20 के आंकड़ों में आपको केवल दो अर्धशतक दिखते हैं, लेकिन ये वो बैटर हैं जिन्होंने वन डेज के अंदर 50 ओवर फॉर्मेट में 188 रनों की एक इनिंग्स खेली हुई है। 320 रन की एक पार्टनरशिप इनके और पूनम राउत के बीच रही है, तो अब इनको हल्के से मत आके बतौर बैटर।
0: Absolutely, this time she dances down the crease and she plays it towards long on. That's well fielded in the end by Shona Akhtar. And the bat will get a couple of runs. So that's a decent final over for India. Already 10, 11, 12, 13 runs have been scored. A couple of balls left. 149, as Raman was saying. Ye dil mange more. So 150 is on the cards.
1: दो गेंदें अभी भी बाकी है और यही बात थी ना, आपको एक और बाउंड्री हिट चाहिए थी, वो सिक्स मिला। अब दबाव गेंदबाज पे क्योंकि बड़ा ओवर बन चुका है।
0: Absolutely, and this time Dipti goes inside out. Can she clear the mid off? No, she can't. She has been caught there in the mid off region, and Dipti Sharma's cameo comes to an end. She scored 13 runs off 5 deliveries, and finally Marufa strikes, gets the first wicket in the match.
1: ये चतुर गेंदबाजी है क्योंकि आपने मिड ऑफ ऊपर रखा, ज्यादा गति दी नहीं लेफ्ट हैंडेड बैटर को बड़ा शॉट लगाने के लिए। वो इनसाइड आउट ओवर द टॉप खेलने की कोशिश दीप्ति शर्मा के द्वारा, रबिया ने अच्छा कैच पकड़ा और आखिरकार मरूफा के नाम आई है सफलता पर। अपना काम करके जाती हुई वापस दीप्ति शर्मा, 13 रनों की एक तेज तरार पारी खेली उन्होंने। केवल 7 गेंदों में बनाए थे वो 13 रन, और 6 गेंदों में माफ कीजिएगा उससे 13 रन बनाए। तेज तरार बैटिंग करके अब वापस डगआउट लौट चुकी है। एक गेंद बची है और स्ट्राइक पे भारती फुलमली भारत के लिए।
0: सो भारती फुलमली विल बी फेसिंग द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स एंड देयर इज नो चॉइस फॉर हर बट टू गो फॉर अ बिग शॉट, एंड शी goes for a big shot. She misses it completely and she goes for a quick run, and she'll be run out as well on the non-striking end. So that's the end of the Indian innings. A wicket in the last two balls, and in the last ball Bharti has been run out. So the Indian innings comes to an end on 149. So India after 20, 149 for the loss of 6 wickets.
1: समझ नहीं आया कि रुक के इंतजार किस बात का कर रही थी भारतीय फुलमली। गेंद को मिस किया, बड़ा शॉट खेलने जब गई, कैप्टन दौड़ रही थी स्ट्राइकर्स एंड की ओर। एक सिंगल बटोरी है, बाई का रन भी रन होगा, 150 रन आएंगे स्कोरबोर्ड पे अगर वो सिंगल होता पूरा। पर अंत में केवल 149 पर वो 20 ओवर समाप्त हुए, यानी लक्ष्य जीत का 150 रनों का रहेगा बांग्लादेश की टीम के सामने इस पहले सेमीफाइनल में इस वुमेन्स एशिया कप T20 2026 के कॉन्टेस्ट में।

0: अश्लील पत्रकार मोना पार्थ सारथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: शुक्रिया।
2: ओके मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं वेरी क्विकली। किस तरीके से आकेंगे इस पूरी भारतीय पारी को? 149 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स 20 ओवर में, गुड टोटल टू डिफेंड और वी वर 10 रन शॉर्ट पॉसिबल।
1: बिल्कुल 10-15 रन पीछे रह गए मुझे लगता है, क्योंकि 160 के आसपास का स्कोर होना चाहिए था। इतने मौके मिले, इतने जीवनदान मिले, खराब स्लॉपी फील्डिंग यहाँ बांग्लादेश के लिए, उसका भी फायदा नहीं उठा सके। और जो बार बार बात आती है स्ट्राइक रेट की, तो आज हरमनप्रीत कौर ने फिर निराश किया। मिडिल ऑर्डर की हम बार बार बात कर रहे थे, कैमियो एक दीप्ति शर्मा, वो एक अच्छा रहा कि आखिरी ओवर में स्ट्राइक उनके पास रही ज्यादा, जिसमें अच्छे रन बने और हम 149 के आसपास पहुंच पाए।
0: दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट में लगाया है शेफाली ने, 64 रन की पारी, 40 गेंद पर 7 चौके 3 छक्के। लेकिन वो जो कैच छूटा था जब वो 10 रन के अंदर थी बाउंड्री लाइन पे, वो कैच छूटा, अगर वो कैच हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
3: देखिए, इफ्स एंड बट्स तो क्रिकेट में होते नहीं, कैच होता नहीं, लेकिन बेटर ये है कि दो कैचे छूटे, एक कैच एक दो ओवर बाद में छूटा, लेकिन वो रन बता 150 रन बनाए हैं। 150 रन फाइटिंग टोटल कह सकते हो, क्योंकि पहले भी मुझे याद आ रहा है कि 2018 में शायद 142 रन करके इंडिया को हराया था बांग्लादेश ने उस समय भी, और एकमात्र जीत जो उनकी अभी तक रहती है। अच्छा फाइटिंग टोटल है, मुझे उनकी बैटिंग में जो खासकर हरमनप्रीत के साथ जो बोल रहे कि उनकी थोड़ा सा पहले शुरू में स्लो खेली, लेकिन बाद में उन्होंने कवर किया और दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने थोड़ा करा के 150 बन गया। हमें एक टाइम पे 130-135 तक भी मुश्किल स्कोर लग रहा था
2: जी। और अगर हम बात करें कि आज तक बांग्लादेश का हाईएस्ट चेस क्या रहा है T20 क्रिकेट के अंदर, तो वो है 146 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये इन्होंने बताया था अगेंस्ट श्रीलंकन विमेन ऑफ कोर्स 9 मई 2023 को एट द SSC ग्राउंड इन कोलंबो। और अब वापस आते हैं मैच के अंदर भी, तो मोना बहुत जगह आज बांग्लादेश के खिलाड़ियों के पास ये मौके थे कि वो भारत को इससे भी कम टोटल के नीचे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, बट बहुत ही निराशाजनक उनकी आज फील्डिंग रही है। आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, पावर प्ले के अंदर ही हमने देखा कि कैच छूटे, रन आउट का मौका छूटा, और फील्ड में भी शुरुआत में कहीं ना कहीं गैप्स नजर आए, तो वो एक निराशा रही। लेकिन यहाँ पर जो बार बार हम बात कर रहे थे मारूफा अख्तर की और उनके गेंदबाजों की, तो उनको आज बेनूर साबित किया भारत ने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगी कि रही, लेकिन उसके बावजूद बात यही आती है कि हम जो हैं वो 10 रन और पीछे रह गए। थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन हो सकता था कि जीवन दान तो हमें मिले, फील्डिंग भी स्लॉपी रही, लेकिन क्या हम उसका फायदा उठा सके? तो नहीं। एक शेफाली वर्मा की इनिंग को अगर आप इसमें से निकाल दें और जो कैमियो था उसको आप निकाल दें, तो आप स्ट्राइक रेट देखिए। प्रतिका रावल 24 गेंद में 20 रन, ये T20 का स्ट्राइक रेट है। हरमनप्रीत 28 गेंद में 24 रन, क्या ये T20 का स्ट्राइक रेट है? और ऋचा घोष, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो ताबड़तोड़ आकर फिनिशर के रूप में एक अच्छा स्कोर देके जाएंगी, वो भी आज खुलकर खेल नहीं, वो लगातार नहीं खेल पाई है इस टूर्नामेंट में खुलकर। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर टीम फाइनल में पहुंचती है तो ये जो वीकर लिंक्स हैं इन पर अमोल मजूमदार को काम करना पड़ेगा।
0: जी हाँ, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं और मंच होता है एशिया कप का, तो इतिहास के पन्ने जरूर पलटे जाते हैं। वो 2018 का फाइनल, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वहां 112 रन बनाए थे 9 विकेट पर, और आखिरी गेंद तक चले उस संघर्ष में बांग्लादेश ने 3 विकेट से न सिर्फ मैच जीता था, टूर्नामेंट जीता था और एक स्ट्रांग स्टेटमेंट भी दिया था। प्रतिका का जिक्र कर रही थी, स्टार्ट मिल रहा है इस टूर्नामेंट में उनको, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रही है।
3: बिल्कुल, टच में लग रही थी आज, जिस तरह से बैटिंग कर रही थी आज टच में लग रही थी, लग रहा था कि आज इस फॉर्म कैरी करेंगे। लेकिन देखिए, T20 में ऐसे ही होता है कि आप कभी भी एक शफाली के कैच ही छूट गए, उसको कैसे यूटिलाइज करती चली गई, प्रतिका बीच में आउट हो गई, ये एक दिन की बात होती है। लेकिन जिस हिसाब से आज वो बैटिंग कर रही थी, बहुत इंप्रेस किया उन्होंने, और मुझे लग रहा है कि जल्द ही अगले मैचों में एक अच्छी इनिंग देखने को मिलेगी आपको।
2: ओके मोना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चलिए भारतीय टीम किसी तरीके से 149 के स्कोर पे पहुंच गई, 150 है इस समय उनके पास बांग्लादेश को जीतने के लिए बनाने, हरमनप्रीत की जो इनिंग्स रही है 18 गेंदों में 6 रन और उसके बाद अगले 10 में आपने 18 बनाए। पहले उनका स्ट्राइक रेट था 33.33, उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट 180 का हो गया। आप इस तरह की इनिंग्स को, पेसिंग को कैसे आंकती हैं?
1: देखिए, ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट 85 के आसपास है, जो मुझे नहीं लगता कि आप कप्तान भी हैं, सीनियर मोस्ट प्लेयर भी हैं, और आपकी जो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है वो सस्ते में आउट हो गई, जल्दी आउट हो गई, पावर प्ले के अंदर ही

फ्री हिट 20 में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। 150 का लक्ष्य दिया है टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को, और हम बात करेंगे कि कैसी रही भारतीय बैटिंग, शेफाली वर्मा का वो शानदार अर्धशतक, बांग्लादेश से कहां हुई चूक, मारूफा अख्तर का नहीं था आज दिन, इन सब पर चर्चा होगी। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी को एंकर साक्षी मांडवाल, साथ ही हैं बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और

0: तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप एक्सिलरेट भी करें, एंकर की भूमिका भी निभाएं और रन भी बनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इस मोर्चे पर हरमनप्रीत आज नाकाम रही हैं। उनमें वो इंटेंट जो होता है वो नजर नहीं आ रहा था उनकी पारी में। वो रिस्क लेकर शॉट्स खेलने के लिए भी तैयार नहीं थी। जिस तरीके का जज्बा चाहिए था, जिस तरीके से उनको लास्ट के ओवरों में खेलना चाहिए था, वो कहीं उनकी पारी में नजर नहीं आया।
1: बहुत चर्चा मारूफा अख्तर की हमने की प्री मैच शो में, और बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट जा रहा था, लेकिन आज क्या लगा रविंद्र आपको? स्विंग तो उन्हें मिल रहा था, गेंद अंदर भी आ रही थी, आउट स्विंग भी मिला, बल्ले का बाहरी किनारा भी लगा, विकेट कीपर से भी एक मिस चांस हुआ, लेकिन क्या दबाव उन पर था?
2: नहीं, दबाव तो खैर इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो होगा ही, प्लस लेकिन उनकी बॉल पे कैच भी छूटा, शेफाली ने जो मारने की कोशिश की, अच्छा स्विंग, बहुत अच्छा स्विंग हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियंस थोड़े से उस होमवर्क भी करके आए हुए थे, उनको पता दिख रहा था कि ये इन स्विंग भी हो रहा है थोड़ा सा उसको, तो वो उसके लिए तैयार थे, और एक कैच भी छूट गया। लेकिन जो असली काम जो वो तैयारी करके आए हुए थे कि मारूफा की, लेकिन असली काम करके रबिया नाहिदा और नुफाइमा ने, जिन्होंने चार चार ओवर में अपने बहुत अच्छे निकाले। एक अगर उनको छोड़ मारूफा को छोड़ दिया जाए और सुल्ताना जो मीडियम पेसर्स थे, सुल्ताना सुल्ताना तो के स्पिनर हैं, बाकियों ने अच्छा बॉल किया, और मरुफा के लगे मुझे लग रहा था कि इंडियंस पहले ही उसके लिए तैयारी होकर के आए थे कि इसको पावर प्ले में अटैक करना है।
3: जी, क्योंकि हम यहाँ पर सीम और स्पिन की बात कर रहे हैं, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश की बॉलिंग किस प्रकार से आज गई है। सीम के खिलाफ जो भारतीय खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, उसमें सीमर्स ने चार ओवर में 40 रन देके सिर्फ एक विकेट निकाला है, यानी 10 रन की इकॉनमी रेट रही है। भाई स्पिनर्स को 16 ओवर में 108 रन देके उन्होंने 4 विकेट निकाले एट एन इकॉनमी ऑफ 6.75। तो अब मोना आपके पास आती होगी कि अब भारतीय टीम उतरेगी गेंदबाजी करने। क्लियरली ये आंकड़े बताते हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पर स्पिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए कितनी मददगार साबित होने वाली है, और पावर प्ले में खासतौर से किस तरह से भारतीय टीम का अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा सा बताएं उसके ऊपर।
0: देखिए, मुझे लगता है कि क्रांति से यहाँ जरूर उम्मीद होगी कि वो इनिशियल ब्रेक थ्रू नई गेंद से दिलाए, और अगर वो करने में कामयाब होती तो बीच के ओवरों के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दीप्ति है, श्रीचरणी है, श्रीचरणी की हम बार बार बात भी कर रहे थे, और स्कोर बोर्ड पे हालांकि रन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे स्पिनरों पे आज बहुत कुछ दारोमदार होगा कि वो किस तरीके से बांग्लादेश की, जैसे हमने पहले बात की कि जो ताकत है वो उसकी गेंदबाजी थी, बल्लेबाजी बांग्लादेश की ताकत नहीं है, तो वो उस का फायदा उठाकर भारतीय गेंदबाज जो है वो शुरुआत से ही अगर दबाव बनाए, पावर प्ले में ही 1-2 विकेट निकल आए, तो फिर मुझे लगता है कि कोलैप्स होने में देर नहीं लगेगी।
1: बैटिंग की बात की तो बांग्लादेश के लिए शोभना मोस्तारी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, 3 मैच में 86.52 की स्ट्राइक रेट से 77 रन उनके नाम हैं। उनकी कप्तान निगर सुल्ताना भी बढ़िया फॉर्म में हैं, साथ ही साथ लोअर ऑर्डर की बात करें तो शोरना अख्तर भी कुछ बड़े हिट्स लगा सकती हैं। हमने बात की इंडियन बॉलिंग की क्या स्ट्रैटेजी होगी, रविंदर बांग्लादेश इस टारगेट को चेज करने के लिए आएगा तो फेजेस में किस तरीके से प्लान आउट करके आएगा?
2: देखिए, ओपनिंग बैटर शर्मिन अख्तर ने बीच में अच्छी बैटिंग करी, मोसुहाना ने, शोभना ने काफी बीच में 2 मैचेस में बैटिंग करी, लेकिन पहले 6 ओवर बड़े क्रुशियल रहते हैं। जब भी आप T20 ओवर मैच में चेज करते हैं, वो 6 ओवर आपके मैच को ऑलमोस्ट डिसाइड कर देते हैं कि मैच किस तरह करवट बदलने वाला है। 20 ओवर में 150 रन है, अगर ये 6 ओवर का अच्छा स्टार्ट मिल जाए, 40-45 रन का स्टार्ट मिल जाए, आप एक आध विकेट लूज भी कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया मैच, रोमांच मैच आप देखने को मिल सकता है।
3: राइट, बट अगर बात करें यहाँ पर मोना फ्रॉम द एंगल की बांग्लादेश इसको चेस करना चाहता है, तो उनके लिए भी ये एक रिकॉर्ड चेस होने वाला है, बिकॉज आज तक बांग्लादेश ने T20 आईज के अंदर कभी भी इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं किया है। फॉरगेट एशिया कप इन इटसेल्फ, आपको लगता है दिस स्टैंड्स इज पॉसिबिलिटी वर देयर?
0: देखिए, T20 में आप किसी भी पॉसिबिलिटी को नकार तो नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वही है जैसे सर ने कहा कि इसके लिए उन्हें शुरुआत बहुत अच्छी चाहिए होगी, और वो जो टोन सेट होती है वो पावर प्ले में होती है, तो पावर प्ले काफी क्रूशियल रहने वाला है दोनों टीमों के लिए, बांग्लादेश के लिए बल्लेबाजी के परिप्रेक्ष्य में, और इंडिया को उसमें 2 विकेट कम से कम निकालने होंगे ताकि जो है दबाव बनाया जा सके।
1: एक बार फिर भारत के लिए दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ट्रंप कार्ड होने वाले हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि ये स्पिनर आप देखिए, उनकी बांग्लादेश ने 5 स्पिनर्स खिलाए हैं अपने, एक मीडियम पेसर के साथ चले हैं, यहाँ पे 3 स्पिनर्स हमारे पास हैं, और ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को पहले 6 ओवर में आपको अब 6 ओवर में अच्छी रन लेने पड़ेंगे आपको, अगर आप 6 ओवर में रन नहीं ले पाए तो स्पिनर्स के ऊपर रन निकालने आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे।
3: राइट, बट यहाँ पर एक सवाल जरूर मेरे पास ये है कि चलिए बांग्लादेश के ओपनर से एक बार को हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो बांग्लादेश को

0: एक गुड स्टार्ट दे दे, वो अपने आप में बहुत भारी चीज है. इट्स अ स्टेटमेंट दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज चेजिंग 149, आपको गुड स्टार्ट चाहिए. बट क्या बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर के अंदर आप वो डेडिकेशन और खास तौर से आप वो इस समय करेज एंड गेम स्किल देखती हैं कि दे कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ विक्ट्री, द मिडिल ऑर्डर? हाउ डू यू असेस देम?
1: देखिए, अभी तक हार्ड टेस्ट कुछ हुआ नहीं है. जितने पहले मैच हुए हैं, एक श्रीलंका के खिलाफ मैच था जो बहुत, जिसमें 100 रन से ज्यादा बने और बांग्लादेश करीब से हार गया उसको. लेकिन उसके अलावा जो मैच हुए हैं 70 के भी कम रन, तो ये जो टेस्ट होता है हार्ड टेस्ट, वो आज होने वाला है इनका, कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं प्रेशर सिचुएशन में. और यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि टॉस जीतकर चेज करना इन्होंने चुना है, तो वो दिमाग में रखते हुए, क्योंकि अब उनके पास एक सेट टारगेट है कि हमें इतने रन बनाने हैं और उसकी उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. यहां पर अगेन उनके लिए अच्छी स्टार्ट बहुत जरूरी है. बीच के ओवरों में उन्हें भी पता है कि भारतीय स्पिनरों के सामने रन बनाना मुश्किल होगा, खासतौर पर श्रीचरणी, जो पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद आत्मविश्वास से भरी होंगी, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की है. तो यहां बांग्लादेश को शुरू से ही अच्छे रन बनाने की रणनीति, बाद के लिए कुछ छोड़ नहीं सकते.
2: अब पॉसिबल अगर हम देखें रविंद्र, तो भारत यहां पर काफी एडवांटेज में नजर आ रहा है. लेकिन जैसा कि मोना ने कहा कि T20 में कुछ भी हो सकता है, गेंदबाजी में किस तरीके के रोटेशंस आप उम्मीद कर रहे हैं?
3: देखिए, मेरे हिसाब से जो बांग्लादेश ने सोच रखा था, ऑलमोस्ट उन्होंने सोचा होगा कि इंडियंस 140-150 रन बनाएंगे. अगर हम उसके अंदर उनके ऊपर ये प्लान होगा उनका, और ये मेरे हिसाब से उनके प्लान के हिसाब से हुआ होगा कि 140-150 रन में रोक भी लिया इन्होंने. थोड़ा सा और अच्छी फील्डिंग करते, कैचेस पकड़ लेते तो 10-15 रन और भी और रोक सकते थे. इस समय तो यही है, तीन स्पिनर्स आपके पास हैं, आपको उनको पहले छोर में जितना रोक सकेंगे उतना बेटर है, क्योंकि स्पिनर्स आने के बाद मुझे लगता है कि मैच आपके होल्ड में आ सकता है. लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप, बांग्लादेश के लिए बेटर रहेगा कि 6 ओवर में जितना बना सकें, और भारतीयों के लिए रहेगा कि जितने कम से कम लेके उनकी 2-3 विकेट निकाल सकें, तो मैच उनके पक्ष में जा सकता है.
2: जी हाँ, मैच उनके पक्ष में जा सकता है, और उम्मीद यही होगी कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा, भारतीय बोलर्स इस मुकाबले में अपनी काबिलियत और प्रतिभा के दम पर बांग्लादेश के बैटर्स को परेशान करते रहेंगे. फ्री हिट 20 में इतना ही. मोना और रविंद्र, आप दोनों का बहुत आभार अपने एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए. आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ, चूंकि ब्रेक के बाद कॉमेंट्री आ रही है आपके लिए.

मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। स्वागत आपका एक बार फिर। सेमीफाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम्स के बीच इस T20 वुमेन्स एशिया कप 2026 का। पहली गेंद रन चेस के अंदर क्रांति गौर ने गेंदबाजी की कमान संभाली है और पहली गेंद पर वो पुश ड्राइव दिलारा के द्वारा सीधा मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा। 150 का लक्ष्य रखा है बांग्लादेश की टीम के सामने। भारतीय टीम ने 149 रन बनाए थे अपने 20 ओवर्स में और 150 का लक्ष्य इन परिस्थितियों में, इन कंडीशंस में इतना आसान रहने वाला है नहीं। क्रांति गौड़ अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस बार सीम पे टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, दिलारा वो अंदरूनी किनारा बल्ले का लगा और उसके बाद गेंद उनके शरीर पे टकराई है, थोड़ी सी मुश्किल में दिखती हुई वहां पे, क्योंकि कई बार जब तेज गेंदबाज की गेंद एज पे लग के अंदर निकलती है वो कई बार और ज्यादा मुश्किलें पैदा करती है बैटर के लिए। तो कुछ थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में दिखती हुई वहां पे दिलारा, जिन्होंने पारी की शुरुआत की है। दिलारा अख्तर और जुरैया फिरदौस दो ओपनिंग बैटर्स। अगली गेंद क्रांति गौड़ की, इस बार स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश दिलारा अख्तर की, सीधा एक टप्पे के बाद कब पॉइंट की फील्डर की ओर जाती हुई, कोई रन वहां पे नहीं आएगा दिलारा के नाम। हेड टू हेड विमेन्स T20 आईज के अंदर एशिया कप में 5 बार ये दोनों टीमें आमने सामने रही हैं। जब आप हेड टू हेड मुकाबले विमेन्स T20 आईज एशिया कप की बात करते हैं, उसमें से 3 मुकाबलों में जीत भारतीय टीम के नाम आई है, 2 बांग्लादेश के नाम, जिसमें से एक जीत वो याद रहेगी 2018 की फाइनल में। इस बार अगली गेंद और स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश दिलारा की, कैच का मौका कवर पॉइंट पे, बुना नहीं पाई है भारतीय टीम। प्रतिकर रावल के हाथ

0: पे गेंद लगी और छिटक गई, तो एक कैच का जो मौका बन रहा था और एक विकेट का जो मौका बन रहा था भारतीय टीम के लिए, वो हाथ से फिसलता हुआ। आसान कैच नहीं था बिल्कुल, वो 25 गज के घेरे के एज पे खड़ी थी प्रतिका रावल। ऊंची उछाल छलांग लगाई जरूर, लेकिन हाथों में गेंद फंसी नहीं और सिंगल मिल गया दिलारा को। उसी के साथ खाता खुला दिलारा अख्तर का और बांग्लादेश का भी। अगली गेंद जुराया के लिए, बीट हुई है ऑफ स्टंप के बाहर। क्रांति गौर अच्छी लेंथ हिट करती हुई अपने पहले ही ओवर के अंदर बीट किया ओपनिंग बैटर को जुराया फिरदौस को। पहली गेंद का उन्होंने सामना किया था, कोई रन उनके नाम नहीं। वहीं एक रन चार गेंदों में दिलारा अख्तर के नाम। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन भनोट, मेरे साथ निराद्री सेन मौजूद अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए, भगवत सिंह रावत हमारे स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार मौजूद हमारे साथ। अगली गेंद क्रांति गौर की, इस बार जुराया ने इसको उठा के खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री रोप के पार चार रनों के लिए। आखिरी गेंद थी उस पहले ओवर की और उस पे एक करारा प्रहार जुराया फिरदौस के द्वारा, उनका पहला चौका, इस पारी का पहला चौका आता हुआ बांग्लादेश के लिए। और पहले ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर अब 5 बिना किसी विकेट के नुकसान के।
1: Well, Raman, so an eventful first over. One catch dropped and one boundary to end it. As Jhuraya Firdaus hitting that boundary. And we were talking about 50s. Well, this happens to be her 46th boundary in T20 international cricket. So she is four shy of her 50th boundary. Let's see whether she can hit it today itself.
0: एक दिलचस्प आंकड़ा सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा जो मनोज कुमार हमारे स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने प्रोवाइड किया है कि इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा सिक्सेस किस टीम ने लगाए हैं, 25 भारत के नाम और वहीं केवल 2 सिक्सेस बांग्लादेश की बैटिंग यूनिट के नाम। तो ये मुश्किल रहेगी अगर बड़ा स्कोर चेज कर रहे
1: हैं तो। She will get only a single for that. So one run in the first delivery of the second over. And before that, in the last ball of the first over, Jiraya hit a brilliant four, one bounce into the fence. So that was how the first over ended. That was Kranti Gourde. And now it's Nandini Sharma. Once again, overpitch delivery, and it has been driven straight to mid-on though. No runs this time. Straight to the fielder. And the target for Bangladesh is 150 runs. Jiraya at the moment is on 4 of 3 deliveries. Dilara on the non-striking end has scored 2 runs of 5 deliveries. Bangladesh need to have a good start if they want to get to that target of 150. It's not an easy target in this particular wicket, and runs are difficult to come. And this time she goes for a big one. She's beaten completely, and there was a bit of movement there off the seam, and Richa Ghosh collects it. And that was an attempted slog, and completely beaten over there was the batter. Jiraya. Nandini Sharma has taken 3 wickets in the first match against Hong Kong, against Thailand, I beg your pardon. 3 for 18 in 4 overs, then got a couple of wickets against Hong Kong, 2 for 6. The next delivery has been played, pushed in fact, towards mid-off by Jiraya, and that will go straight to the fielder. No possibility of any run. Jiraya remains on 4 of 5 deliveries, and the score of Bangladesh in the second over is 6 without loss. Now, how will they pace the innings in the first 6 overs? That's very important. Now, Jiraya. Nandini comes. That was a slower delivery, and Jiraya reading it quite well, hitting it over mid-on. That will reach the fence. That's another 4. So the second 4 of the innings, this time Jiraya hitting her second 4 as well. That was

0: a slower delivery, and the batter got that slower delivery very early, read that very early, and hit it to perfection, got the placement right, and found the boundary. Nandini Sharma is playing her 10th match, and she has 12 wickets to boast of. Jewaria now facing Nandini. She's bowling over the wicket, right arm. This time the ball is outside the off stump and it moves farther away, and the Jewaria is beaten. She goes for a big shot, but no contact whatsoever. So the second over comes to an end, and Bangladesh are on 10 for no loss.
1: जिस तरह की आपको आक्रामक शुरुआत चाहिए, वो आक्रामक शुरुआत की कोशिश तो हुई है. 10 रन स्कोरबोर्ड पे पहले दो ओवर्स में. बाउंड्री हिट्स की थोड़ी सी और तलाश रहेगी, क्योंकि एक आंकड़ा जो कुछ देर पहले मनोज कुमार ने हमें प्रोवाइड किया था कि बांग्लादेश के बैटर्स ने केवल 2 सिक्सेस लगाए हैं इस टूर्नामेंट में. अब आप 150 के टोटल का पीछा कर रहे हैं 20 ओवर में, यानी आपके पास जो रिक्वायर्ड रन रेट है पहली गेंद से वो 7.5 रन प्रति ओवर की है. यानी आपको हर ओवर में, हर 6 गेंदों में 7.5 रन आपको चाहिए. यानी एक बाउंड्री हिट तो चाहिए ही चाहिए, शायद 2. पावरप्ले को मैक्सिमाइज अगर आप कर पाए तो शायद वो अच्छा एक आंकड़ा रहेगा इस बांग्लादेश की चेज के अंदर. दिलारा होंगी स्ट्राइक पे, क्रांति गौर के हाथ में गेंद, और तीसरे ओवर की शुरुआत. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इसको पुल कर दिया है, दिशा दिखाई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 4 रन आएंगे. उस गति का इस्तेमाल करती हुई यहां पे दिलारा अख्तर, समझ बूझ की बल्लेबाजी. ये एक बहुत ही संभली हुई शुरुआत है, बहुत बड़ा शॉट लगाने की कोशिश नहीं करी. जानती थी कि गेंद में गति है, और स्क्वायर लेग की जो बाउंड्री राइडर थी वो काफी स्ट्रेट थी, इसलिए फाइन खेला और 4 रन अपने नाम किए. ये अच्छी शुरुआत दिलारा दिलाती हुई बांग्लादेश को इस रन चेज के अंदर.
0: And by this time, India lost one wicket, that of Smriti Mandhana. So that way, Bangladesh are just a bit ahead in comparison. 14 without loss. This is the third over in progress.
1: Yeah, agli game, Kranti Gaur. इस बार ऑफ स्टंप और ऑफ और मिडिल को टारगेट करना चाहेंगी. जी हाँ, वही सोच. अगली गेंद गुड लेंथ एरिया पे टप्पा, थोड़ा किसी सीम मूवमेंट अंदर की तरफ आई. दिलारा के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद उनके पैड से छिटकी है, और बहुत भाग्यशाली है यहाँ पे दिलारा की वो गेंद स्टंप्स पर नहीं गई, एक डॉट डिलीवरी. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दोनों छोर से तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है शुरुआती ओवर्स में. अगली गेंद इस बार स्टीयर करने की कोशिश दिलारा की, लेकिन कोई संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में था नहीं, कदमों का कोई इस्तेमाल नहीं. दिलारा ऐसा लगा कि जैसे अपनी क्रीज पे खड़ी सी रह गई. गेंद ने हल्की सी दिशा बदली, हल्का कोण बदलती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली, और इसको स्टीयर करने की कोशिश में बीट हुई है दिलारा. पर वापस जाता हूं जिस बात को छेड़ा है कि ये दो तेज गेंदबाजों के साथ शुरुआत भारतीय कप्तान के द्वारा एक ऐसी सतह पे जहां पे स्पिनर्स के लिए काफी फायदेमंद ये सतह साबित हुई. अगली गेंद कवर ड्राइव सीधा फील्डर की ओर, प्रतीक रावल मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा दिलारा को, तो सोचने पे मजबूर ये करेगा. क्योंकि क्या आप ये पावर प्ले के अंदर ही तेज गेंदबाजों से तेज गेंदबाजी कराना चाह रही हैं, और उसके बाद जो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स है या मध्य ओवर्स और बैक एंड, वहां पे अपने स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे. 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स हैं आपके पास, और उसके बाद चाहे तो शिफाली वर्मा भी स्पिन गेंदबाजी कर सकती है, तो आपके पास पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग के विकल्प हैं इस लाइनअप के अंदर. अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल कर दिया इसे 4 रन के लिए. स्क्वायर लेग की फील्डर थोड़ी सी और ज्यादा फाइन गई थी उस पिछले चौके के बाद, और उसका फायदा दिलारा ने इस बार उठाया. इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेला हुआ ये पुल शॉट उन्हें 4 रन और देता हुआ.
0: Yes, and in the last match, when spin was introduced, India got the first success. That was against Pakistan. And maybe in the next over itself, we'll see a spinner in action. So this is interesting to see both the fast bowlers starting proceedings for India. And in fact, Bangladesh are going quite comfortably at the moment.
1: अगली गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद, लीडिंग एज कवर पॉइंट की फील्डर की ओर, पहले टप्पे पे गेंद पहुंची है. जब तक प्रतीक रावल उस गेंद को फील्ड करे

0: इनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में गेंदबाजी के लिए अब कप्तान ने उनकी तरफ रुख किया है। पहली गेंद शेफाली की और बीट किया बैटर को, ऋचा घोष ने बेल्स बिखेर दिए। स्टंपिंग की एक अपील है भारतीय टीम के द्वारा और एक अंपायर्स रिव्यू लिया जाएगा ये देखने के लिए कि क्या दिलारा का जो दाया पांव था, क्या उन्होंने उस दाए पांव को कहीं क्रीज के बाहर तो नहीं खींच लिया जो बड़ा शॉट खेलने के लिए गई आगे। जब ऋचा घोष ने बेल्स बिखेरी हैं तो क्या वो पांव क्रीज में वापस समय पे आया है या नहीं, उसकी पुष्टि करेंगी हुमायरा फरा जो कि टीवी अंपायर है इस मुकाबले की। और शायद रिप्ले को थोड़ा सा और धीमे करके करीब से देखना पड़ेगा कि पांव या जूते का कुछ हिस्सा क्या उस लाइन के पीछे जरूर आया जब तक वो बेल्स डिसलॉज करी गई, बेल्स ग्रूव से निकाली गई। और जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे जूते का कुछ हिस्सा, पांव का कुछ हिस्सा क्रीज के पीछे था, तो नॉट आउट का संकेत आता हुआ टीवी अंपायर का। पर बाल बाल बची है यहाँ पे दिलारा अख्तर जो सलामी बैटर है, और देखिए किसके खिलाफ, उस पार्ट टाइम स्पिनर के खिलाफ।
1: एब्सोल्युटली, एंड शी इज वेरी इफेक्टिव शेफाली वर्मा, एन ऑल राउंड प्लेयर फॉर द इंडियन टीम।
0: चलिए अब सोच क्या रहेगी, दिलारा 10 रन 12 गेंदों में, वहीं जोएरिया 12 रन 13 गेंदों में, उनके नाम भी है लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। अगली गेंद शेफाली वर्मा की, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कट करने की कोशिश लेकिन गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं आ दिलारा अख्तर को, सीधा पॉइंट की फील्डर की तरफ इस गेंद को खेला, डॉट बॉल। और एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस करी है आपने, शायद यही इनके जहन में भी चल रहा होगा क्योंकि हाफ ट्रैकर गेंद थी, मौका था कट शॉट खेल के 4 रन बटोरने का, आपने वो मौका गवाया है। अब फील्ड में भी बदलाव, शॉर्ट थर्ड सर्कल के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर, कवर पॉइंट उस 25 गज के सर्कल के अंदर, लेकिन अगली गेंद पे खेली है स्लॉग स्वीप लेग साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद श्रीचरणी है बाउंड्री रोप पर, स्क्वेयर लेग पे केवल सिंगल आएगा दिलारा के नाम उस स्लॉग स्वीप के चलते। तो पहले रन इस ओवर में और वो आए केवल तीसरी गेंद पर जाकर, और अब स्ट्राइक पर है जोरिया फिरदौस, ये ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने वाली बैटर हैं, इनकी सोच रहती है वो आक्रामक शॉट खेलने की। और ये मैचअप दिलचस्प है क्योंकि आपके पास केवल दो ही बाउंड्री राइडर हैं बाहर उस 25 गज के घेरे के। पुल शॉट की कोशिश, मिस फील्ड मिड विकेट पे, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन की फील्ड उस एंगल को कवर करते हुए, केवल सिंगल जोरिया फिरदौस के नाम, और स्कोर बांग्लादेश की टीम का अब 24 बिना नुकसान।
1: Dilara is an important batter. She has scored 53 runs so far in the three matches that Bangladesh played in the group stage.
0: अगली गेंद शेफाली की, कट करने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, ऋचा घोष के ग्लव्स के काफी करीब से गेंद निकल कर गई है शॉर्ट थर्ड तक, सिंगल आएगा दिलारा के नाम। जिस तरह से वो शॉट खेलने की इन्होंने कोशिश की थी, थोड़ी असमंजस की स्थिति में लगी थी, पहले सोचा डाउन द ट्रैक आके बड़ा शॉट खेलें, फिर चेक किया अपने शॉट को, लेट कट खेलने की कोशिश की, पर अंत में एक सिंगल अपने नाम किया है। तो 12 पर अब दिलारा लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, जोरडिया फिरदौस स्ट्राइक पर, अगली गेंद को पुल कर दिया उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ, खेला हुआ वो शॉट सिंगल ही आएगा, यानी केवल 4 रन इस ओवर से। शेफाली वर्मा का एक किफायती ओवर समाप्त होता हुआ पावर प्ले के दौरान, और 5 ओवर के बाद बांग्लादेश की टीम का स्कोर 26 बिना किसी विकेट के नुकसान के।
1: Well, as far as Asia Cup is concerned, India have qualified in every final. And this is a semi-final that they are up against Bangladesh. And India have a terrific record against Bangladesh in T20 internationals. Played 24 matches so far. And India have won 21 of them. Bangladesh have won only 3. One of them, of course, was in the 2018 Asia Cup final. Sricharani continues. The next delivery on the pads, just hurried it through. Then there was a half-hearted appeal though. But the ball was going down the leg side for sure. Jaria is now on strike. Sri Charuni has conceded 4.

0: runs in the first over. Jewelria is on 14 of 16 deliveries, and Sricharani now comes in, and this time it's an edge. Oh dear, the ball falling just short of the short third man fielder. That was Nandini, who came running for that catch, but just falling well short of her.
1: Ji again turn kari thi. Is bar wo leading edge fielder ke kareeb girta hua.
0: And once again goes for a sweep shot, this slog sweep this time, the ball balloons over, and Richard Ghosh runs and takes a comfortable catch. So that's the first wicket for Bangladesh, and Bangladesh lose their first wicket, and Sricharani gets her first wicket of the match.
1: Yeah, ye unki 50th wicket Mahila T20 Antarrashtriya Cricket ke andar. तो ये यादगार लम्हा रहेगा श्रीचरणी के लिए. अच्छा कैच ऋचा घोष ने पकड़ा. कई बार ये जब टॉप एजेस लगते हैं, गेंद काफी देर तक लहराती है हवा में, और कोई गलती नहीं करी ऋचा घोष ने. जुआरिया फिरदौस 14 रन बनाकर हुई हैं आउट, और बांग्लादेश की टीम का स्कोर अब 26 एक विकेट के नुकसान पर. और यही मुश्किल रहती है. अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ वो स्वीप शॉट खेलना, जब तक आप गेंद की पिच तक ना पहुंचे, वो अगेंस्ट द टर्न स्वीप शॉट खेलना बहुत जोखिम भरा एक लम्हा रहता है. और वही हुआ, आप गेंद की पिच तक नहीं पहुंची, वो गेंद के जो टर्न और बाउंस था उसको कवर नहीं कर पाए उस स्वीप को खेलने की कोशिश में, इसीलिए वो लीडिंग एज, वो टॉप एज, और अच्छा कैच ऋचा घोष के द्वारा.
0: सो Sricharani गेट्स हर 50th विकेट इन T20 इंटरनेशनल्स. एट द सेम टाइम शी गेट्स हर 8th विकेट इन एशिया कप एज वेल. सो Sricharani got 2 wickets against Thailand, 2 wickets against Hong Kong, and 3 wickets against Pakistan. And she, in fact, routed the Pakistani middle order with that spell. Can she repeat herself today? Sricharani, once again, a slip is in place. The new batter is Shobhana. The ball turns, and this time Shobhana plays it towards third man, and the ball goes towards a backward point fielder, and no run for that. So Shobhana Mustari is the new batter, and this time another turn, vicious turn, the ball pitches on the leg stump, and the batter is beaten outside the off stump. So a very good turn, and she's also generating some bounce at the same time. So very good ball, almost unplayable for Shobhana, who is the highest scorer of Bangladesh in this tournament so far. Once again she's beaten outside the off stump. What a lovely over this has been. A wicket maiden. And after 6 overs, Bangladesh are on 26 for the loss of 1 wicket.
1: वो विकेट मेडन ओवर जो डाला है श्रीचरणी ने, वो पावर प्ले के अंदर डाला है, वो उस ओवर को और भी ज्यादा खास बनाता हुआ. पावर प्ले समाप्त हो गया है 6 ओवर के बाद. 26 रन एक विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम का स्कोर. और क्या शानदार गेंदबाजी करती हुई श्रीचरणी. 2 ओवर्स डाले हैं, केवल 4 रन दिए उन 2 ओवर्स में, एक सफलता भी उनके नाम. पिछला ओवर वो विकेट मेडन उनके द्वारा. 50 विकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के अंदर केवल अपना 29वां मुकाबला खेलती हुई. तो आप उनकी विकेट टेकिंग एवरेज पर भी जब नजर डालेंगे तो यही कहानी है कि लगभग 2 विकेट पर मैच निकाल के आपको दे रहे हैं. प्रेमा रावत अब गेंदबाजी में बदलाव. शेफाली वर्मा की जगह अब प्रेमा रावत को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए. एक लेग स्पिनर है, और उनको कप्तान गेंदबाजी के लिए तब लाई है जब वो 4 बाउंड्री राइडर 25 गज के घेरे के बाहर ले सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो गया है. तो लेग स्पिनर का सही समय पे इस्तेमाल. अब पहली गेंद, इस बार वो लेग ब्रेक जो टर्न करती हुई दाएं हाथ की बैटर के लिए दिलारा, उसको अंतिम समय पे कट करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन सीधा पॉइंट की फील्डर की तरफ खेला है. कोई रन उनके नाम आएगा नहीं. इस सतह पे देखा है कि स्पिनर्स के लिए काफी मदद है, घुमाव मिल रहा है, खासतौर पर रिस्ट स्पिनर्स को काफी ज्यादा टर्न और बाउंस भी मिला है. इस बीच अगली गेंद फिर कट करने की कोशिश, और सीधा फील्डर की ओर, फिर कोई रन नहीं. ये 32वीं बार है कि देखिए 29

0: मुकाबले में 50 विकेट है, और ये केवल तीसरी बार है कि श्री चरणी ने एक मेडन ओवर डाला है, अपने विकेट मेडन डाला है अपने करियर के अंदर 29 मैच में। तीसरी बार कि एक विकेट मेडन ओवर श्री चरणी ने डाला हो T20 क्रिकेट में अपने करियर में। इस बीच अगली गेंद टर्न करती हुई दिलारा को बीट किया। याद रखिए ये आंकड़े आपकी ओर आ रहे हैं मनोज कुमार की तरफ से, जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है इस मुकाबले के लिए। पर बात कर रहे थे जो टर्न और बाउंस मिल रहा है खासतौर पे रिस्ट स्पिनर्स को इस सतह से, वो अब यहां पे दिखता हुआ। अगली गेंद इस बार प्रेमा रावत की गेंद पैड लाइन पर, खराब लाइन, और इसे पैडल स्वीप कर दिया है दिलारा ने 4 रनों के लिए। 4 रन दिलारा अख्तर के नाम आते हुए, और ये चौका 23 गेंदों के बाद आया है, बहुत अरसे के बाद आखिरकार एक बाउंड्री हिट। वो दबाव जो पिछले 4 ओवर से लगभग बन रहा था, वो दबाव आखिरकार हटा इस चौके के साथ।
1: Well, although India lost an early wicket, Raman after the power play, we'll come to that after this delivery. Well, once again, a turn and Dilara is beaten outside the off stump. Well, in the power play, India scored 45 for 1 and Bangladesh 26 for 1.
0: जी हाँ बिल्कुल, वो नंबर्स हमारे स्कोरर भगवत सिंह रावत प्रोवाइड करते हुए तुलनात्मक स्कोर्स मिल गए पाप प्ले के। पैडल स्वीप सिंगल आएगा और डायरेक्ट हिट, और शायद ओवरथ्रोज के रूप में रन लेने की सोच थी वहां पे दिलारा की, लेकिन शोभाना ने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई वजह नहीं है उस ओवरथ्रो के लिए जाने की, सिंगल से संतोष कीजिए। 7 ओवर समाप्त, 31 एक विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश का स्कोर। जी हाँ, वो पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी भारतीय टीम ने, 45 रन स्कोरबोर्ड पे आए थे, क्योंकि एक छोर से शिफाली वर्मा वो बाउंड्री हिट्स लगाने में कामयाब हो रही थी। यहां पे बांग्लादेश के लिए हमने जैसे बात करी कि लगभग 23 गेंदों तक एक बाउंड्री नहीं आई, पावर प्ले के दौरान आपके पहले 6 ओवर्स में अगर लगभग 4.25 ओवर तक एक बाउंड्री हिट ना आए, तो मतलब आपने पावर प्ले का वो भरपूर इस्तेमाल नहीं किया।
1: Absolutely, and we have to give credit to the Indian spinners as well. They are bowling exceptionally well. So most wickets for India in women's T20. Just for Sri Charani, and this time Dipti Sharma will be starting proceedings. A fresh over. Over the wicket, and Dilara comes out of charge and she hits it inside out. The ball beats the super cover. Into the fence she goes for 4. So welcome boundary for Bangladesh. Dilara gets that boundary. She dances down the crease and gets a good contact, finds the gap and places it to perfection. Finds a boundary, a welcome boundary as well for Bangladesh. Dilara moves on to 21 of 22. Bangladesh are on 35 for 1. They need more of these boundaries. Next delivery on the pads, and there's an appeal for leg before. So she went, she wanted to go across the line.
0: Yeah, across the line खेलने की कोशिश थी, पर गेंद भी क्योंकि अंदर की तरफ घूम रही थी ना, इसलिए मौका था कि आप विद द टर्न खेल देते, इसलिए वो कांटेक्ट बनानी, इसलिए नहीं निराश थी क्योंकि ऑफ स्पिन डाल रही है ना यहाँ पे गेंदबाज दीप्ति। अगली गेंद एक बार फिर अंदर की तरफ घूमती हुई, इस बार फिर पैडल स्वीप की कोशिश, दिलारा की कामयाबी उन्हें मिली नहीं है। हम इस ओवर के बाद चर्चा करेंगे जो एक चांस बांग्लादेश के पास था पावर प्ले को और मैक्सिमाइज करने का, इस ओवर के बाद करेंगे बातचीत।
1: दीप्ति On the off stump this time, and Dilara rocks back to the back foot, goes for a cut shot, but finds a point fielder inside the circle, so no possibility of any run. And Dilara Akhtar scored 27 in the first match, 27 of 21, 26 of 26 in the second match. The next delivery, she goes over mid wicket, and she will find the fielder, and Dilara goes. Another wicket goes for Bangladesh. So just when Dilara wanted to accelerate, she found the fielder in the deep, and that was

0: Antigor taking a very good catch, running a few meters in front, and that will be another success for India. So Dilawakta goes 21 of 26 deliveries, and India are back in the match and are very much back in the match. They were already in the match right from the word go, and at the moment they are well on the driver's seat.
1: 35-2 बांग्लादेश की टीम का स्कोर, और ये अनुभव है दीप्ति शर्मा का, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी, और एक बड़ा फर्क आपको दोनों टीम्स के बीच में साफ पता चलेगा, और वो है फील्डिंग और कैचिंग का स्तर। जिस तरह से कैचेस पकड़े जा रहे हैं भारतीय टीम के द्वारा, वो बहुत बेहतर दिख रहा है बांग्लादेश की टीम की तुलना में। और वो यहां पे एक बार फिर दिखा, क्रांति गौर का लाजवाब कैच था, लगभग 10 से 12 यार्ड अपने आगे की तरफ दौड़ना पड़ा बाउंड्री रोप से 25 गज के घेरे की ओर। गेंद डिप कर रही थी, फिर भी डाइव लगाई, उस कैच को अंजाम दिया, और ये फर्क दिखाए दोनों टीम्स के बीच। अब निगार सुल्ताना, नई बल्लेबाज जो आई हैं मैदान पे, काफी अनुभवी बैटर, 2690 रन उनके नाम, 13 अर्धशतक और एक शतक लगा चुकी हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो एक अहम बैटर है इस लाइनअप में बांग्लादेश के लिए।
0: And the first delivery for Nigar Sultana, she plays it defensively towards mid-wicket, and there is no run, so that's the end of the 8th over. Bangladesh are 35 for 2.
1: हम बात कर रहे थे पावर प्ले के तुलनात्मक स्कोर्स की, 45 बनाए थे भारत ने पावर प्ले के अंदर पहले 6 ओवर्स में, वहीं 26 रन आए थे केवल जब बांग्लादेश के स्कोर पे नजर डालते हैं। 3 चौके और 3 सिक्सेस लगे थे भारतीय पावर प्ले के दौरान जब भारतीय बैटर्स क्रीज पे थे, और उसका फर्क क्या होता है, 3 सिक्सेस का मतलब 18 रन। बांग्लादेश की इनिंग्स में अब तक आप देखें तो पावर प्ले में कोई सिक्स नहीं था, तो वो 18 रन का फर्क तो सिर्फ आपको सीधा 3 गेंदों में मिल गया ना। जब आप पावर प्ले पे नजर डालते हैं 45 भारत के 26, यानी फर्क आपको वहां पे 19 रनों का दिख रहा है, उसमें से 18 रन का फर्क तो वो 3 ओवर बाउंड्री सिक्सेस का है ना। और ये फर्क दिखेगा आपको, वो पावर हिटिंग भारतीय बैटर्स की अलग लय की है, अलग लेवल की है बांग्लादेश के बैटर्स की तुलना में।
0: एब्सोल्युटली, and that's a good mathematical calculation from Ravant.
1: देखिए आजकल T20 में बड़ा सिंपल है, अगली गेंद पे बड़ा प्रहार करने की कोशिश थी, कोई रन आएगा नहीं निराद्री। T20 क्रिकेट बाउंड्री हिट्स मैक्सिमाइज करने की गेम है, अगली गेंद पे स्वीप करने की कोशिश, अपील लेग बिफोर की विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन गेंदबाज ने कुछ ज्यादा उसमें दिलचस्पी दिखाई नहीं उस अपील के अंदर। अंत में बैटर्स निकल पड़ी है सिंगल के लिए, और एक रन और जोड़ता हुआ बांग्लादेश के खाते में उस गेंद के बाद। 8.2 ओवर्स डल चुके हैं, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। T20 क्रिकेट में कोचिंग स्टाफ इसी बारे में चर्चा करता है कि आप बाउंड्री हिट्स क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो ओवर बाउंड्री हिट्स, और आपके स्कोर की तुलना और कैलकुलेशन उसी प्रकार से की जाती है। अगली गेंद इसको पैडल कर दिया है लेग साइड पे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक और सिंगल आएगा। शिफाली वर्मा डाल रही है अपना दूसरा ओवर, और पारी का 9वां ओवर है ये, तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया है, रोटेशन बोलिंग में दिखती हुई। शिफाली वर्मा अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने की कोशिश, अच्छा स्टॉप बैकवर्ड पॉइंट पे। गेंद थोड़ी देर तक हवा में जरूर थी, और दिलचस्प होगा इस रिप्ले को देखना कि क्या ये कैच का मौका बन सकता था प्रतिका रावल के लिए, क्योंकि कट जब किया था गेंद हवा में थी, और जी हाँ, एक कैच का मौका था जो भुनाया नहीं गया है भारतीय टीम के द्वारा, एक मौका जरूर था विकेट का। पर अगली गेंद इस बार फिर हल्के हाथों से गेंद को पुश कर दिया है कवर्स की दिशा में, कवर पॉइंट की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, सिंगल देकर जाएगा शोभना को, और स्कोर पहुंच जाएगा 38 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ये 3 विकेट हो सकती थी अगर 2 गेंदें पहले प्रतिका रावल वो कैच पकड़ लेती शिफाली की गेंदबाजी पे।
0: And this is the second time that she's dropped a catch.
1: जहाँ पहले तेज गेंदबाजी जब हो रही थी तो क्रांति गौर के ओवर में एक कट शॉट खेला गया था उनकी तरफ, जहाँ पे कैच नहीं पकड़ पाई थी। पर चलिए आखिरी गेंद 9वें ओवर की, रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10 के ऊपर पहुंच गई है पहली बार इस मैच में, तो यानी अगले 11 ओवर तक 10 रन प्रति ओवर की औसत से बांग्लादेश को रन बनाने पड़ेंगे, जिस तरह से वो रन रेट बढ़ रही है। अगली गेंद पे फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, डीप मिड विकेट पे मौजूद है फील्डर श्रीचरणी, 1 रन लेकर दूसरे रन के लिए वापसी करती हुई दोनों ही बैटर्स, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 9 ओवर समाप्त, 2 रन आते हुए उस 9वें ओवर की आखिरी गेंद पे, और स्कोर बांग्लादेश का 40 2 विकेट के नुकसान पर।
0: Well, as far as the-

के लिए और पेचीदा होता चला जा रहा है। पहले 10 ओवर्स में जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी तो उन्होंने 32 डॉट डिलीवरी खेली थी, वहीं बांग्लादेश की टीम ने 38 डॉट डिलीवरीज खेली है, यानी 6.2 ओवर 10 ओवर्स में से पहले 10 ओवर्स में आपने डॉट डिलीवरीज खेली हैं। बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है जो भगवत सिंह रावत हमारे जो स्कोरर है उन्होंने हमको प्रोवाइड किया, क्योंकि जब ये डॉट डिलीवरीज आप पहली हाफ ऑफ द इनिंग्स में इतनी ज्यादा खेल लेंगे ना तो दबाव आपके पास वो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में आखिरी 10 में आएगा ही, क्योंकि चेज में अभी रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर आपको दिख रही है, लगभग 10.5 के आसपास। एक दिलचस्प आंकड़ा और वो दिलचस्प आंकड़ा ये है कि भारतीय इनिंग्स में 9 चौके दिखे थे, केवल 9 चौके थे भारतीय इनिंग्स में, लेकिन 9 सिक्सेस भी थे, और वो 9 सिक्सेस की जब आप तुलना करते हैं तो 9 गेंदों में आपने 54 रन

0: नौ सिक्सेस भी थे, और वो नौ सिक्सेस की जब आप तुलना करते हैं तो नौ गेंदों में आपने 54 रन बटोर लिए थे,
1: एब्सोल्युटली।
0: और अभी तक बांग्लादेश की इनिंग्स में एक भी सिक्स देखने को नहीं मिला है। आप फोर्स की बात कर ले तो इस इनिंग में अब तक बांग्लादेश बैटर्स की तरफ से 7 चौके आ चुके हैं पर एक भी सिक्स नहीं है, इसलिए वो आप पिछड़ रहे हैं उस रिक्वायर्ड रन रेट से क्योंकि आपको ओवर बाउंड्री हिट्स नहीं मिल रही।
1: Absolutely, and the current run rate is only 4.60. That is disappointing from the point of view of Bangladesh, because this is T20 cricket and they're chasing 150 runs. They have only scored 46 in the first 10 overs. So they have 10 overs left and they have to score at a required rate of 10.4. To win, they need 104 runs more. 10 overs. So 60 balls, 104 needed.
0: जी हाँ, और अब वो ड्रिंक्स ब्रेक जिस जो अंतराल था वो समाप्त हो गया है। 11वें ओवर की शुरुआत अब प्रेमा रावत गेंदबाजी के लिए वापस लाई गई हैं। लेग स्पिनर, पहली गेंद पुल कर दिया उसको डीप मिड विकेट की क्षेत्र में, सिंगल आया है, हल्का सा मिसफील्ड लेकिन उस मिसफील्ड का ज्यादा फायदा बैटर्स ने उठाया नहीं, वो एक रन से ही संतोष किया निगार सुल्ताना ने। शोभना वापस अब स्ट्राइक पर, और इनको स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा क्योंकि शोभना 9 गेंदों का सामना कर चुकी हैं, केवल 3 रन बनाए हैं। अब यहां से बाउंड्री इनके बल्ले से चाहिए। अच्छी लेग ब्रेक गेंदबाजी, प्रेमा रावत बीट करती हुई राइट हैंडेड बैटर को, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद घूमी, स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और बीट किया पूरी तरह से शोभना अस्तरी को। एक बार फिर अगली गेंद, इस बार बैक फुट पे जाके कट करने की कोशिश शोभना की, स्वीपर कवर पे फील्डर मौजूद भारती फुलमली, वहां पे बाउंड्री रोप पे मशक्कत करती हुई केवल 1 रन पे रोका बैटर्स को। 48 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 10.3 ओवर के बाद पिछली 30 गेंदों में केवल 22 रन आए हैं, 1 विकेट भी गिरा है बांग्लादेश की टीम का, तो वो मोमेंटम वो तेजी स्कोरिंग में बिल्कुल लाने में सक्षम नहीं हो पा रही है बांग्लादेश की बैटर्स। अगली गेंद हल्के हाथों से पुश किया है इसे सिंगल के लिए कवर्स की दिशा में, और वो सिंगल पूरा करेंगी निगार सुल्ताना। कीपर बैट उन पे बहुत कुछ निर्भर है। देखिए, आपने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का निर्णय कर लिया, दूसरी टीम को 150 रन के करीब स्कोरबोर्ड पे डालते हुए देखा है, अब दबाव है आप पे। अगली गेंद प्रेमा रावत की, फिर लेग ब्रेक, टर्न करती हुई बीट किया बैटर को, बेल्स बिखेर दिए हैं वहां पे, ऋचा घोष ने अपील स्टंपिंग की है, और क्या शोभना का वो दाया पांव ग्राउंडेड था क्रीज के पीछे, इसकी पुष्टि स्क्वेयर लेग अंपायर करती हुई। जी हां, नॉट आउट का निर्णय, तो डॉट डिलीवरी और केवल 3 रन 5 गेंदों में इस ओवर की अब तक प्रेमा रावत के द्वारा। अच्छी नपीतुली गेंदबाजी, इस बार अगली गेंद पे ड्राइव करने की कोशिश, लीडिंग एज बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से निकली है गेंद लेकिन बाउंड्री रोप तक नहीं पहुंचेगी। अच्छी फील्डिंग, एक रीले थ्रो आता हुआ बाउंड्री रोप से और बैटर्स को रोका 2 रनों पे। अच्छा एफर्ट वहां पे नंदिनी के द्वारा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और 50 का आंकड़ा पार बांग्लादेश की टीम के द्वारा। 11 ओवर के बाद 2 रन जोड़ के स्कोर अब 51 2 विकेट के नुकसान पर। पहले 50 रन बांग्लादेश के 66 गेंदों में आए हैं, भारतीय 50 जो था वो 43 गेंदों में आया था, तो वो पिछड़ रही है स्कोरिंग रेट में बांग्लादेश की टीम इस समय।
1: यस ऑफ कोर्स, एंड बांग्लादेश नीड समथिंग ड्रामेटिक एंड a very good innings from one of these batters. Shobhana Mustari is stuck in the crease at the moment. She, remember, is the most successful batter in this tournament for Bangladesh. She scored 77 runs. And fresh over. Shefali is starting the fresh over. The first ball has been played towards cover and there is no run for that. So Shefali is bowling some important overs in between. She is a part-time bowler, but very effective as well. Shobhana is on strike. She tried to steer it, and this time she will find the gap, and the ball is going to a third man, but it will not reach the fence. It has been fielded by Sri Charani inside the boundary, and before she

0: He throws the ball back to the wicket keeper. The batter gets a couple of runs. So that'll just a bit ease the pressure on Shobhana. If not to boundaries, she at least needs to score off every ball. She's on 8 at the moment of 14 deliveries. 40 dot balls have been seen in this innings. 40 dot balls is a big amount, isn't it, Raman?
1: 68 गेंदों में 40 डॉट बॉल यानी आपने केवल 28 गेंदों पर रन बनाए हैं अब तक इस पूरी इनिंग के अंदर एक T20 गेम में
0: Yes, and another dot ball has been added as Shobhana plays it towards point and the ball goes straight to the point fielder inside the bound, inside a circle. So, no possibility of any run. This time, Shobhana dances down the crease, goes inside out. Will the ball reach the fence? No, it has been fielded in the boundary, in the cover boundary. And Shobhana once again will get a couple of runs. So, the Bangladesh total moves to 56 for the loss of 2 wickets. Wickets are in hand, but time is running away. Overs are running away. Shobhana is running for runs, but she needs to have some big shots. Next delivery outside the half stump. She goes for a cut shot, but she is beaten outside the half stump, and Richa Ghosh collects it cleanly. So another dot ball there. That was quite away from the off stump. Next delivery has been pulled, and once again, the fielder in the deep will field. And that is Kranti Gaur, who fields it in the mid-wicket, just inside the mid-wicket boundary. And that's the end of another over. So, Bangladesh at the moment are on 57 for the loss of 2 wickets. The required run rate now is going further up. It's 11.63. The current run rate is 4.75. And the partnership is 22. But the batters need to accelerate. And after 12 overs, India were 75 for 2 and Bangladesh 57 for 2.
1: यानी आप 18 रन पीछे हैं इस स्टेज पे और दूसरी बात ये कि आपके लिए वो बड़े हिटर्स कौन होंगे जो वो बड़े बाउंड्री हिट्स या ओवर बाउंड्री सिक्सेस लगा के आपको ये रिक्वायर्ड रन रेट को मीट करा दें दिलचस्प बात 12 ओवर यानी 72 गेंदे 72 गेंदों में से आपने 42 गेंदे यानी 7 ओवर डॉट बॉल खेले मतलब 7 ओवर में कोई रन नहीं बनाया आपने अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं नए ओवर की हुई है शुरुआत प्रेमा रावत पहली गेंद शोभाना इस बार कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड खेला इसे वाइड डिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए आखिरकार एक बाउंड्री हिट आती हुई काफी अरसे के बाद और इस बाउंड्री हिट की तलाश थी आठवीं बाउंड्री है ये आठवां चौका है ये इस बांग्लादेश की इनिंग्स के अंदर और ये चौका स्कोर को ले जाएगा 61 पर बांग्लादेश के यहां पे 12.1 ओवर के बाद 61 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पे शोभाना पहुंची 15 पर पिछली 12 गेंदों में 14 रन देखिए आपको अब तेजी चाहिए और ये बाउंड्री आपको मदद करेगी शोभाना 15 19 गेंदों में इनको भी स्ट्राइक रेट सुधारने की जरूरत इस बार वो लेग ब्रेक गेंद प्रेमा रावत की अगेंस्ट द टर्न गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की तरफ सिंगल आएगा और सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा आपको 62 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल भारतीय कप्तान के द्वारा अब तक हरमनप्रीत कौर ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है क्रांति गौर के 2 ओवर नंदिनी शर्मा ने 1 ओवर डाला जो 2 पेसर्स हैं उनके अब तक आपने कुल मिलाकर 3 ओवर देखे हैं अगली गेंद बैक फुट पे गई टर्न कर दिया सिंगल के लिए और सिंगल पूरा करेंगे काफी आसानी से इस बार निगर और स्कोर पहुंच जाएगा 63 पर
0: well, and statistician Manoj Kumar comes up with another interesting stats so Charuni becomes the youngest bowler to get 50 wickets in T20 internationals.
1: इस बीच अगली गेंद टर्न करने की कोशिश थी लेग साइड पर बैट से लग की गेंद छिटकी है लेकिन कीपर कलेक्ट करती हुई गेंद को सेकंड बाउंस पे कोई रन नहीं एक और डॉट डिलीवरी 6 रन इस ओवर से आ चुके हैं 4 गेंदों में 2 गेंदों का आना बाकी ये वो ओवर है जो बांग्लादेश टारगेट कर सकती है एक बड़ा ओवर बनाने की कोशिश रहनी चाहिए इस ओवर में लेट कट की कोशिश अगली गेंद पे बीट किया शॉर्ट थर्ड की फील्डर को जब तक वो रिकवरी और थ्रो आएगा 2 रन और लेने का

0: चौका, पिकअप और थ्रू फील्डर के द्वारा जब तक आया, दो रन और शोभाना मस्तरी ने अपने नाम जोड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पे वो तीव्रता दिखाई उस एक रन को दो में बदलने के लिए, और यही चाहिए आपको, ये इंटेंट चाहिए। आखिरी गेंद, 13वें ओवर की आनी बाकी, 85 चाहिए 43 गेंदों में। एक बार फिर कट करने की कोशिश, सीधा पॉइंट की फील्डर की तरफ, इस बार कोई रन नहीं शोभना के नाम, और 13 ओवर की हो गई है समाप्ति। बांग्लादेश की टीम का स्कोर 65 दो विकेट के नुकसान के बाद।
1: Well, just a bit of correction. Sri Chetty becomes the fourth youngest player to get 50 wickets in T20 internationals, and second youngest Indian after Radha Jadhav. And Sri Chetty is 22 years, 37 days old. So, a lot of records being made, a lot of records being broken as well.
0: आपने राधा यादव की बात करी, चलिए एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का रिकॉर्ड एक और लेफ्ट आर्मर ने तोड़ा है। राधा यादव बहुत शानदार क्रिकेटर रही हैं, गन फील्डर हैं, स्क्वाड का भी हिस्सा है, पर चलिए उनका रिकॉर्ड अब श्री चरणी के नाम, या उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के नक्शे कदम पर चल गई हैं। जिस तरह से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर वो यंगेस्ट टू 50, वहीं एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर उस खाते में अपना नाम, उस सूची में अपना नाम जोड़ती हैं। चलिए 14वें ओवर की शुरुआत।
1: So Dipti will continue. She has conceded 10 runs and she's got one wicket so far in the couple of overs that she bowled. And the first delivery has been swept by Nigar Sultana. And there was a chance of a run out. There was a quick throw back to the wicket keeper. And Nigar Sultana wanted a run but was sent back. And that could easily have been a run-out opportunity. But that was not to be. So, misunderstanding between the two batters. There wasn't a run, really. So, 85 now needed of 41 deliveries as Dipti comes in. Stringing down the leg side this time. And Nigar plays it towards the fine leg. And it has been fielded. And she will get a single for that. Nigar Sultana is on 13 of 13 deliveries. Shubhana, now on strike, is on 18 of 23. And Bangladesh are on 66 for the loss of two wickets. This is the 14th over in progress. The asking rate is going up every ball. Dipti comes in and she has bowled him. She has bowled her. Shubhana is bowled. Clean bowled by Dipti. She wanted to play across the line. And that was another wicket. So another wicket goes. 66 for 3 now, Bangladesh.
0: यहाँ पे back foot पे चली गई इस गेंद को खेलने के लिए, और थोड़ी सी तेज गति से गेंद डाली थी दीप्ति शर्मा ने, back foot पे जाके इस गेंद को against the line, जो अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में शोभाना मोस्तरी अपनी विकेट गवाती हुई 18 रन बनाकर हुई है बोल्ड। 24 गेंदों में बनाए थे वो 18 रन, तीसरी विकेट का पतन हो गया है बांग्लादेश की टीम की, 66 रन स्कोर बोर्ड पे। और ये साझेदारी जो टूटी है, ये टूटी इस वजह से क्योंकि दबाव बन रहा था उस रिक्वायर्ड रन रेट का, जो अब 12.92 तक पहुंच गई है वो रिक्वायर्ड रन रेट, और हर डॉट डिलीवरी जो निकलेगी और अतिरिक्त दबाव जो बैटर्स क्रीज पर हैं उन पर डालती रहेगी।
1: एब्सोल्युटली, एंड नाउ बांग्लादेश डेफिनेटली अंडर प्रेशर। 66 फॉर 3, दिस इज द 14th ओवर इन प्रोग्रेस। 3 मोर डिलीवरीज लेफ्ट इन दिस ओवर, एंड शोना अख्तर नाउ कम्स इन। शोना अख्तर हु हैज प्लेड 57 T20 matches so far is now facing Dipti. She plays it towards mid-wicket and takes a quick run. They have to hurry, but finally they complete it safely. So another run added to the Bangladesh totals. 67 for 3 now, Bangladesh. Shona Akhtar has scored 31 of 18 in the match against Indonesia. They went on to make 9 of 14 against Sri Lanka.